ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज बुधवार है, शक संवत 1948, भद्रा माह की तिथि 4, तदनुसार 26 अगस्त ईस्वी सन 2026।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय

0: सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसुआ फिलिप शोपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Seva Tirth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that the speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power.

इस प्रकार सुशोभित हैं। जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची तथा पुत्र जयंत के साथ अमरावती में सुखपूर्वक निवास करते हैं, किंतु उधर अयोध्या पर आसन्न शोक का आभास पशु पक्षियों की उस व्याकुलता से मिलता है जो निषाद राज गुह ने वापस आकर देखा। रथ के साथ सुमंत्र को आकुल देखकर निषाद राज गुह को अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज को अकेले लौट आया देख सुमंत्र हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जुते अश्व दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर उन्होंने राम को जाते देखा था जैसे करुण हिन हिनाहट में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चारा पानी छोड़ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र को पंडित और ज्ञानी संबोधित करके समझाया, अब विषाद छोड़ विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। रथ पर बिठाए जाने के बाद भी शोक से शिथिल हुए सुमंत्र से रथ हांका नहीं जाता। घोड़ों को शोकातुर देख निषाद राज भी विह्वल हो गए। उन्होंने अपने चार सेवक सारथी के साथ कर दिए जो रथ को अयोध्या की ओर ले चले।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:20 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण।
1: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। अब से कुछ देर में आपको सुनवाएंगे आज का कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे आज के कलाकार होंगे सतीश के शर्मा। 7 बजे हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम जोहार चाईबासा। 8 बजे का वक्त समाचार प्रभात का होगा। 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 8:30 से आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से रिले करेंगे। 8:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे बंगला लोकगीत।

9 बजे का वक्त कार्यक्रम विविधा का होगा। इस कार्यक्रम में हम करेंगे चर्चा मदर टेरेसा के बारे में, साथ ही आपको सुनवाएंगे नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट यानी नेत्रदान पखवाड़ा, इस विषय पर भी करेंगे हम चर्चा। 9:30 का वक्त कार्यक्रम रसरंजन का होगा और 10 बजे से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इसके प्रायोजक हैं NCERT। 10:30 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

संध्या के 5 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार। 5:02 पर संध्या का कार्यक्रम विवरण हम आप तक पहुंचाएंगे श्रोताओं, और 5:05 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ही गायिका के गाए गाने।

5:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार। 6:02 का वक्त कार्यक्रम हुआ खड़ा का होगा। 6:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम मनोरमा के साथ हम हाजिर होंगे। 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी रांची और सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार। उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले में आजकल। 7:15 का वक्त होगा कार्यक्रम आपकी पसंद का। 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या का होगा। 9:00 से आप सुनेंगे News@9 अंग्रेजी में समाचार। 9:15 से आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी रांची और आपका मनोरंजन करेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों से। 10:00 का वक्त कार्यक्रम महफिल का होगा। 10:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुरों के रंग। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 का वक्त होगा अंग्रेजी समाचारों का। 11:10 पर हमारी आज की सभा हम समाप्त करेंगे।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:45 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे आज के कलाकार सतीश के शर्मा थे। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। बिना वक्त ज़ाया किए अब हम आरंभ कर रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा। इस कार्यक्रम का सबसे पहला गाना आपके लिए लाए हैं फिल्म कोई मिल गया से। आवाज़ें हैं शान और कविता कृष्णमूर्ति की।

आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जुहार चायबासा। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना सपने फिल्म का गाना, आवाज़ें थी हेमा सरदेसाई और मलसाई वासुदेव की। इस कार्यक्रम का सिलसिला बढ़ा रहे हैं आगे और आपको सुनवा रहे हैं सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना, आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।

जोहार, चाय भाषा में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार का गाया फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का ये गाना। इस कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की ही आवाज़ में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा। इस कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है प्रेम रोग।

मुकेश का गाया फिल्म पूरब और पश्चिम का गाना अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चाईबासा में। खून जमाती ठंड में भी सीना ताने खड़े हुए, बदन जलाती गर्मी में भी सीमाओं पर अड़े हुए, बांध शहादत का सहारा मृत्यु से ब्याह रचाते हैं, देश के वीर सिपाही देखो माँ का कर्ज चुकाते हैं। बर्फीली वायु हो चाहे तूफानों ने दी हो चुनौती, चाहे दुश्मन के खेमे से गोली की बौछारें होती, चाहे हो कैसी भी विपदा पर ये ना घबराते हैं, देश के वीर सिपाही देखो माँ का कर्ज चुकाते हैं। माँ पत्नी बच्चों से दूर राष्ट्र धर्म में रमे हुए, दिल में कितना दर्द ये पाले पर सीमा पर डटे हुए, अपनी जान गंवाकर भी दुश्मन को धूल चटाते हैं, देश के वीर सिपाही देखो माँ का कर्ज चुकाते हैं। धरती माँ के सच्चे बेटे सर पर कफन बांध कर बैठे, नींद नहीं उनकी आँखों में ताकि हम सब चैन से लेटे, देश की रक्षा के खातिर वे वीरगति को पाते हैं, देश के वीर सिपाही देखो माँ का कर्ज चुकाते हैं। कुर्बानी वीरों की जीवन कितनों को दे जाती है, उनके रक्त से संचिती धरती धन्य धन्य हो जाती है। मौत भी क्या मारेगी उनको, जो मरकर भी जी जाते हैं, देश के वीर सिपाही देखो माँ का कर्ज चुकाते हैं। कार्यक्रम जोहार चाईबासा में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं हमारे वीर सैनिकों को संबोधित करते हुए, आइए सुनते हैं चक दे इंडिया फिल्म का ये गाना।

मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म प्यार किए जा का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। और कार्यक्रम जोहार चार पासा के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म मैंने प्यार किया का ये गाना। आवाज़ें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की हैं।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ हम आज का कार्यक्रम जो है चाईबासा यही समाप्त कर रहे हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। अब से कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।

0: प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा

0: की हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
2: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप

0: अपने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमेरिका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है, साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में

0: भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। NSA अजीत डोभाल और चीन विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, NCR में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद ए मिलाद उन नबी की रौनक, केरलम वासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at Pragati meeting. Union Home Minister Amit Shah sets 1-year deadline for 100% implementation of 3 new criminal laws. Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agree to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad-un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today, Keralites across the globe celebrating Tiruvonam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. More from our correspondent.
3: The Prime Minister called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The Prime Minister further emphasized that delays in infrastructure projects have consequences beyond cost escalation, as they also postpone the benefits intended for citizens, businesses and the economy. He said that infrastructure projects should be viewed and monitored as an integrated whole rather than isolated sections.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड कैबिनेट ने 100 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की दी मंजूरी। चिकित्सकों की सेवानिवृत्त आयु 67 से घटाकर 65 वर्ष करने का फैसला। इन्फ्लुएंजा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, मौसमी इन्फ्लुएंजा को लेकर सरकार सतर्क, निगरानी नेटवर्क से रखी जा रही नजर। हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा ईद मिलाद उन नबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। राज्य के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर के अंतिम चरण के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मंत्रिपरिषद ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैठक में राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 7,21,43,25,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साथ ही झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्त आयु 67 से घटाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट सचिव ने बताया कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई।
1: आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत पूर्व से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की स्वीकृति एवं इस हेतु 7,21,43,25,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
0: सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर निगरानी रख रही है। ISMR के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा कि वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस सामान्य मौसमी पैटर्न

0: मापन के अनुरूप है और किसी नए खतरे के संकेत नहीं मिले हैं। इन्फ्लुएंजा के सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान और कमजोरी शामिल है। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के हजारीबाग पहुंचने पर छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निर्दोष छात्रों पर FIR करना बंद किया जाए। महतो ने कहा कि छात्रों को डराने धमकाने की बजाय भर्ती व्यवस्था में सुधार और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
1: सरकार छात्रों पर FIR करना बंद करे। अगर FIR करना है तो देवेंद्रनाथ महतो के ऊपर करो। छात्रों को डराने का प्रयास न करे कि संवैधानिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और हम सरकार को कह देते हैं कि किसी तरीके से इस बार आश्वासन से युवा समझने वाले नहीं है, इस बार ठोस निर्णय चाहिए।
0: रांची में भाजपा झारखंड प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात और छात्रों के खिलाफ सरकार के रवैये पर चिंता जताई गई। प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसमें जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी।
2: जिस प्रकार से छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर भी इस कोर कमेटी ने चिंता व्यक्त किया है। साथ ही हमारे कई कार्यक्रम आगामी दिनों में तय हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देशव्यापी हर वर्ग के लोगों के लिए जो योजनाएं चली है उसको भी लेकर के अब जन जन तक जाने वाले।
0: ई श्रम पोर्टल के शुभारंभ के आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इसे शुरू किया था। पोर्टल पर अब तक 31 करोड़ 89 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। यह 15 सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को एक मंच पर उपलब्ध कराता है। मतदाता सूची पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के तहत कल 59 मतदान केंद्रों पर नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई हुई। इस दौरान मतदाताओं के दावों और प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। सुनवाई में 12 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक के जरिए पात्रता प्रमाणित करने का अवसर दिया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज राज्य सहित देश के विभिन्न विभागों में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसे लेकर राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सरायकेला खरसावां जिले में UPI रोजमर्रा के लेन देन का अहम माध्यम बन गया है। बाजारों में सब्जी, चाय और अन्य सामान की खरीदारी से लेकर बड़े भुगतान तक लोग UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे दुकानदार भी QR कोड से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार UPI से लेन देन आसान, तेज और सुरक्षित हुआ है तथा नगदी और खुले पैसों की समस्या कम हुई है।
3: UPI चालू होने से बहुत ज्यादा ही लाभ है, क्योंकि कभी कभी कैश का प्रॉब्लम होता था, वो सब सभी समस्या खत्म हो गई है। तुरंत हमारे अकाउंट में पैसा जाता है, हमें भी जिनको पेमेंट करना रहता है आसानी से उसको कर पाते हैं। इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सुविधा अब गाँव गाँव तक पहुँच गया है, जो अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट जा रहा है, बहुत ही सेफ है।
0: साहिबगंज के तलझारी वन क्षेत्र अंतर्गत केदम्बरिया गांव में वृक्ष रक्षा बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को वृक्षों के महत्व के प्रति जागरूक करना और वन संरक्षण का सामूहिक संकल्प दिलाना था। प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमन प्रसाद और वन क्षेत्र पदाधिकारी पंचम दुबे ने ग्रामीणों को वृक्षों के महत्व की जानकारी दी। अधिकारियों ने पर्यावरण संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की।
4: पेड़ ही एक परमार्थ चीज है, जो कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं रहता, जब ही

0: रहता है, तो अन्य जीवों के स्वार्थ के लिए रहता है। धरती धन करे पुकार, पुत्र एक और वृक्ष हजार, हजारों वृक्ष लगाए खाली जगह पर, यही संदेश ग्रामीणों को देते हैं।
1: चतरा में नाबालिग से कथित बाल मजदूरी और मारपीट के मामले में महिला थाना प्रभारी फिरदौस नाज और एसआई पति टीपू अंसारी को निलंबित कर दिया गया है। एसपी अनिमेश नैथानी ने सीडब्ल्यूसी की शिकायत और एसटीपीओ की रिपोर्ट पर कार्रवाई की। दोनों के खिलाफ एफआईआर और विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया है। आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और खूंटी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं कल रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, चतरा और गिरिडीह में भारी बारिश की संभावना है। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर के अंतिम चरण के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। प्रज्ञानंदा ने रैपिड के दोनों मुकाबले और ब्लिट्स का पहला मुकाबला जीता। फाइनल में उनका सामना अमेरिका के मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने कैबिनेट की बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने लिखा है, गुरुजी क्रेडिट योजना में बदलाव, जमा फीस का भी मिलेगा रिफंड। दैनिक जागरण ने लिखा है, खुलेंगे 100 और उत्कृष्ट विद्यालय, बीबी रामजी योजना को भी मिली स्वीकृति। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खनन एक्ट पर शीर्ष कोर्ट जाएगी सरकार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड कैबिनेट ने 100 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की दी मंजूरी। चिकित्सकों की सेवानिवृत्त आयु 67 से घटकर 65 वर्ष करने का फैसला। इन्फ्लुएंजा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, मौसमी इन्फ्लुएंजा को लेकर सरकार सतर्क, निगरानी नेटवर्क से रखी जा रही नजर। हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा ईद ए मिलाद उन नबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। राज्य के कई जिलों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर के अंतिम चरण के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान

पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे बंगला लोकगीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बंगला लोकगीत।

श्रोताओं, इन्हीं बंगला लोक गीतों के साथ हम आज का कार्यक्रम माटी की महक यही समाप्त कर रहे हैं। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम विविधा का। सबसे पहले आपको दे दें इस कार्यक्रम की रूपरेखा और आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या क्या जानकारियां लाए हैं। सबसे पहले हम करेंगे चर्चा मदर टेरेसा के बारे में, फिर हम करेंगे थोड़ी और चर्चा नेशनल आई डोनेशन फॉर्टनाइट यानी नेत्रदान पखवाड़ा इस विषय पर। आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता नेत्रदान महादान इस विषय पर। हमारी आज की भेंट वार्ताकार होंगी डॉक्टर कावेरी मलिक और उनसे बातें कर रहे हैं अनिल कुमार। साथ ही आपका करेंगे मनोरंजन कुछ देशभक्ति गीतों के साथ। तो आइए श्रोताओं, आरंभ करते हैं कार्यक्रम विविधा और सबसे पहले बात करते हैं मदर टेरेसा के बारे में कि वह कौन थी, उनका जन्म कब हुआ और उन्होंने क्या क्या अच्छे कर्म अपने जीवन में किए। इस विषय पर हम आपको देंगे थोड़ी सी जानकारी। श्रोताओं, मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोपजे, जिसे अब उत्तर मैसेडोनिया कहा जाता है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। ये एक महान रोमन कैथोलिक नन थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत और दुनिया भर के गरीबों, अनाथों और बीमारों की सेवा को समर्पित कर दिया। इनका वास्तविक नाम एग्नेस गोंगसा बोजाक्सिहू था। यह वर्ष 1929 को कोलकाता आई और अध्यापन कार्य शुरू किया। उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना की, गरीबों और लावारिस बीमारों की सेवा के लिए निर्मल हृदय आश्रम की भी शुरुआत मदर टेरेसा ने की थी। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था।

माता की असाधारण सेवा के लिए इन्हें 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में हुआ। वर्ष 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च ने उन्हें कलकत्ता की संत तेरेसा के रूप में मान्यता दी।

अब आइए करते हैं थोड़ी बातचीत। नेत्रदान पखवाड़ा, नेशनल आई डोनेशन फॉर्टनाइट। श्रोताओं, ये हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। लोगों को मरने के बाद आंखें दान करने के लिए प्रेरित करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जिसे हम पोस्ट ह्यूमस आई डोनेशन कहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, किसी की भी आंखें उनके मरने के बाद ही ली जाती है, इसलिए इसे पोस्ट ह्यूमस आई डोनेशन कहा जाता है। कॉर्निया की खराबी से होने वाले अंधेपन को दूर करने के लिए नेत्रदान के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करना। श्रोताओं, अगर आप भी अपने नेत्र दान करना चाहते हैं तो आपको पहले ही अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच अंधेपन को लेकर जो गलत फहमियाँ फैली हैं उन्हें दूर करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ सके, समाज को यह समझाना कि नेत्रदान से किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी लौटाई जा सकती है। जी हाँ श्रोताओं, किसी के मरने के बाद भी कोई और उनके आंखों से दुनिया देख सकता है। अब इसमें जो कुछ मुख्य बातें आपको जाननी है वो ये हैं कि मृत्यु के 6 घंटे के भीतर कॉर्निया निकाल लिया जाता है। कॉर्निया हमारी आंखों का एक बहुत ही मुख्य हिस्सा है और किसी भी इंसान की मृत्यु के 6 घंटे के अंदर को कॉर्निया निकाल लिया जाता है, जिसे हॉस्पिटल से आकर लोग लेकर जाते हैं। यह एक निशुल्क प्रक्रिया है। इस पखवाड़े के दौरान अस्पतालों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा शिविर लगाकर लोगों को नेत्रदान का संकल्प पत्र भरवाया जाता है। अब ये नेत्रदान का संकल्प आप कैसे ले सकते हैं? संकल्प यानी कि प्लेज, श्रोताओं, फॉर्म भरें। आप नज़दीकी नेत्र बैंक या किसी बड़े अस्पताल में जाकर नेत्रदान का संकल्प फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण आप सरकारी स्वास्थ्य वेबसाइट या एम्स जैसी संस्थाओं के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। पंजीकरण पूरा होने के बाद आपको एक नेत्रदाता कार्ड मिलता है। अपने इस फैसले की जानकारी अपने परिवार वालों को ज़रूर दें, क्योंकि आपकी मृत्यु के बाद उनके सहयोग से ही नेत्रदान की प्रतिक्रिया पूरी होती है। जी हाँ श्रोताओं, आपके घर पर इस बात का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान नेत्रदान कर रहा होता है उसकी मृत्यु के बाद उनके घर वालों के सहयोग से ही नेत्रदान हो सकता है। मृत्यु के बाद नेत्रदान की प्रतिक्रिया क्या होती है, इस विषय पर आइए करते हैं थोड़ी सी चर्चा। किसी अपने की मृत्यु होने पर तुरंत नजदीकी नेत्र बैंक को फोन करके इसकी सूचना दें। मृत्यु के 6 से 8 घंटे के भीतर कॉर्निया को निकाल लिया जाना चाहिए। शव की देखरेख, यदि आपने अपने अपनी आंखें दान देने का सोचा है तो शव की देखरेख भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें पंखा बंद करें ताकि आंखें सूखे नहीं, मृतक की पलकें बंद कर दें, सिर के नीचे तकिया रखकर सिर को थोड़ा ऊंचा उठाएं। आंख निकालने की प्रतिक्रिया में केवल 15 से 20 मिनट लगते हैं।

0: और इससे शरीर पर कोई विरूपण नहीं होता है। पूरा आँख का गोला नहीं निकाला जाता, केवल सामने का पारदर्शी हिस्सा जिसे हम कॉर्निया कहते हैं वही निकाला जाता है। तो श्रोताओं, ये तो हमने की चर्चा, अब आइए सुनते हैं भेंट वार्ता इसी विषय पर, नेत्रदान महादान। आपको जानकारी दे रही हैं डॉक्टर कावेरी मलिक।
1: नेत्रदान महादान, इस विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कावेरी मलिक। डॉक्टर मलिक, हमारे श्रोताओं को कृपया ये बताएं, नेत्रदान क्या है और इसका उपयोग क्या है?
2: नेत्रदान का अर्थ है मृत्यु के बाद अपनी आँखें दे देना। इसके लिए व्यक्ति या तो जीवित अवस्था में ही इसकी घोषणा कर सकता है, जिसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके संबंधी डॉक्टर से संपर्क कर नेत्रदान करा सकते हैं। इसके दो उपयोग हैं। जिस व्यक्ति के आँख में सामने वाला भाग या कॉर्निया सफ़ेद हो जाता है और उसे दिखाई नहीं देता, उसे बदला जा सकता है। इसे नेत्र प्रत्यारोपण कहते हैं। इसे मरीज को पुनः दिखाई देने लगता है। इसके अलावा कॉर्निया के रोगों का भी इलाज इस प्रक्रिया से संभव है। दूसरा उपयोग इसका है कि इसका जिस तरह से मिली आँख का उपयोग वैज्ञानिक शोध के कार्यों में भी होता है।
1: अच्छा, नेत्रदान में दो भाग हुए, एक वो व्यक्ति जिन्होंने दान किया और एक वो व्यक्ति जिन्हें वो आँख लगाई गई।
2: जी हाँ।
1: तो नेत्रदान कैसे लोग कर सकते हैं?
2: नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, पर साधारणतः अधिक उम्र में आँख की कॉर्निया जो है कुछ खराब होने लगती है। ऐसी भी अवस्था में नेत्रदान किया जा सकता है, पर उसको लगाने से पहले कॉर्निया की जाँच कर ली जाती है। और यदि कोई व्यक्ति किसी खास रोग से पीड़ित है जिसमें कॉर्निया अफेक्टेड रहती है, जैसे कोई वायरस वाली बीमारियां हैं या कोई जहर से पेशेंट की मृत्यु हुई है, जैसे सांप काटने से या किसी तरह की पॉइजनिंग से, या आजकल जैसे बीमारियां हैं एड्स निकली हुई है, इस सब में आँख की जो टिश्यूज़ हैं उस पर भी असर पड़ता है। ऐसी आँख लगाई नहीं जा सकती है दूसरे व्यक्ति को, इसलिए ये व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो ऐसे लोग नेत्रदान नहीं कर सकते हैं?
2: जी हाँ, जैसे किसी को कैंसर हो और उसका आँख पर असर पड़ा हो, उनका भी हम नेत्रदान नहीं करवा सकते हैं।
1: मतलब उनकी आँख अगर दूसरों को लगाई जाए तो उनको फायदा नहीं होगा,
2: वह बीमारी दूसरे व्यक्ति में जा सकती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ भ्रांतियाँ हैं नेत्रदान के साथ कि इससे जो एक मृत शरीर है और पूरी आँख निकाल ली जाती है तो उस पूरे शरीर को बहुत एक भद्दा बना देता है?
2: जी नहीं, इस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आँख जब निकाली जाती है किसी मृत व्यक्ति की, उसके बाद आँख की जगह पे कॉटन या गॉज पीस भर दिया जाता है और आँख की पलक नहीं निकाली जाती, उसे पुनः अपनी जगह पर बंद करके सिल दिया जाता है, जिससे बाहर से ऐसा पता चलता है कि व्यक्ति सो रहा है। किसी को यह नहीं समझ में आता है कि आँखें निकाली जा चुकी है।
1: अच्छा, ये जो एक जैसे ब्लड बैंक है, वैसे एक कोई नेत्र बैंक भी है क्या? क्योंकि कुछ ऐसी बात है कि नेत्रदान के कुछ निश्चित समय के बाद ही उसे लगा देना है।
2: जी हाँ, ऐसे आई बैंक जमशेदपुर में एक रोशनी करके संस्था है, उन लोगों ने टाटा मेन हॉस्पिटल में एक ऑफिस रखा है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। साधारणतः निकाली गई आँख का उपयोग 24 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए, लेकिन आजकल कुछ ऐसे सॉल्यूशंस या द्रव निकले हैं जिसके अंदर आँख को रखने से 1 महीने या 2 महीने तक भी उसका उपयोग किया जा सकता है।
1: अच्छा, तो इस नेत्रदान की प्रक्रिया में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए?
2: सावधानियों से पहले मैं एक और भ्रांति के बारे में बताना चाहूंगी। लोगों की यह धारणा है कि पूरी आँख बदली जाती है, ऐसा नहीं होता है। आँख का सामने वाला पारदर्शी भाग जो कॉर्निया है, उसमें कोई खराबी होने पर सिर्फ उसी पोर्शन को बदला जाता है, पूरी आँख कभी भी बदली नहीं जाती। और इसलिए इस पोर्शन के अलावा आँख के अन्य किसी भाग में खराबी के कारण अगर पेशेंट को दिखाई नहीं देता है तो इसका इलाज नेत्र प्रत्यारोपण से संभव नहीं है।
1: और अब सावधानियों के विषय में?
2: और सावधानियाँ इसमें कई बरतनी चाहती हैं। पहली बात यह है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी आँखें किसी गीले कपड़े या रुई से ढक देना चाहिए। यदि कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप्स उपलब्ध हैं तो उसे आँखों में डालना चाहिए। कॉर्निया सूखनी नहीं चाहिए, आँखों को बंद करके रखना चाहिए। जल्दी से जल्दी नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आँखों को 3 घंटे के अंदर निकाल लेना जरूरी है, इसके बाद कॉर्निया खराब होने लगती है।
1: और ऐसे व्यक्ति जिन्हें नेत्रदान मिला हो, जिन्हें नेत्र लगाया गया हो,

0: ये जो नेत्र प्रत्यारोपण किया गया हो उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: उन्हें अपनी आंखों को धूल धुए तथा बाहर के पदार्थों से बचा के रखना चाहिए। आंखों को सीधे चोट से भी बचाना चाहिए, क्योंकि पूरा गोलाई में कॉर्निया काट के फिर उसको सिला जाता है उसकी जगह दूसरी कॉर्निया को, तो यह भाग थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए डायरेक्ट चोट लगने पर उसमें खराबी आ सकती है।
0: डॉक्टर मल्लिक, नेत्रदान महादान कहा जाता है, इस विषय में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि शरीर के साथ आंखें नष्ट हो जाती हैं, या तो उसे जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, जो किसी भी व्यक्ति के काम नहीं आता। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप अपना नेत्रदान कर लें, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को रोशनी मिल सके, या किसी दवाई या अन्य किसी चीज के प्रयोग के लिए इसका उपयोग किया जा सके।
0: धन्यवाद डॉक्टर मल्लिक।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता नेत्रदान महादान इस विषय पर, आपको जानकारी दे रही थी डॉक्टर कावेरी मलिक। अब आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

अभी आप सुन रहे थे कैलाश खेर का संदेश और भारतीय सेना के नाम ये गाना। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हमने बात की नेत्रदान महादान के बारे में, तो अब आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। आशा भोसले की आवाज़ में।

तो श्रोताओं, इन्हीं जानकारियों और मनोरंजन के साथ कार्यक्रम विविधा हम यही समाप्त कर रहे हैं। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। अब से कुछ ही देर में आप आनंद उठाएंगे कार्यक्रम रस रंजन का।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आरंभ करते हैं कार्यक्रम रस रंजन का। इस कार्यक्रम का सबसे पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंश से। आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं।

0: कुणाल गांजावाला और साथियों की आवाज़ों में फिल्म धूम का गाना अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रस रंजन में। अब आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध, क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
6: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
8: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24

0: Helpline number 947113669. Toll free number 14499 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिंपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस रंजन। इस कार्यक्रम का अगला गाना हम लाए हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में फिल्म दिल मांगे मोर से।

अभी आप सुन रहे थे दिल तो पागल है फिल्म का गाना, आवाज़ आशा भोसले की थी। अब आपको सुनवा रहे हैं एक पहेली लीला, फिल्म का ये गाना, आवाज़ तुलसी कुमार की है।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ हम आज का कार्यक्रम रस रंजन यही समाप्त कर रहे हैं। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
0: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जाने में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
0: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने ना जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह स्तर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं। और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
0: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
0: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गांव है
2: जी।
0: लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ ना शोर है, ना ऊंची ऊंची इमारतें और ना शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
2: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गांव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
0: लेकिन एक

0: बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है। मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
1: अजी जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गांवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है। यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
0: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ, विशेषकर हंदले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है।
1: जी
0: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
1: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
0: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हंदले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
1: जी अजीत जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
1: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
1: जी,
0: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
1: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं, हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों अजीत जी, अब समापन किया जाए?
0: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
1: जी,
0: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं, लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
1: जी,
0: हंदले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है। बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
1: श्रोताओं, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हनले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
0: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
1: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूँ सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं। क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री

0: डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
2: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
2: आह, क्या बात है
4: मैम।
2: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
2: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
2: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
2: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
2: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
2: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
2: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
2: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे। तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
5: जी मैम।
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है।
2: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
7: हाँ, जी मैम।
4: यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
2: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
6: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
2: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
2: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
2: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
2: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
7: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
7: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
7: धन्यवाद सर।
4: धन्यवाद मैम।
8: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
8: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीष शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी दो ना, बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
6: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
5: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
7: ग्राम सभा?
6: ठीक है।
7: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है,
5: समझे। और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
8: हाँ हाँ, हम तैयार है, ठीक है।
5: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
9: जी हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
10: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।

0: तो श्रोताओ, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT। FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये छायबासा केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 10:30 हो रहे हैं, वक्त है मनोरंजन जानकारी और हमारी और आपकी बातों से सजे कार्यक्रम जोहार रांची का। कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूँ सुप्रीता और मेरे साथ हैं
1: विनोद। नमस्कार, जोहार। कितनी बड़ी बात है ना, कुछ लोग शोर मचाकर अपनी पहचान बनाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और कुछ लोग अपनी मेहनत, अपने धैर्य और अपने समय का इंतजार करके इतिहास लिखते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे कहते हैं ना, आज की सुबह हमें यही सीख देती है विनोद जी कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ आज के जोहार रांची कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वैसे कहा भी जाता है ना कि अगर आप सही हैं तो ईश्वर भी हमेशा आपके साथ रहते हैं।
1: बिल्कुल।

0: जो हाँ रांची में अब बातें करते हैं आज के खास दिन की। तो श्रोताओं आपको बताएं कि आज हम मना रहे हैं महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन्स इक्वालिटी डे।
1: बिल्कुल, हर साल आज के ही दिन इस दिवस को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के 19वें संशोधन की याद में मनाया जाता है।
0: इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के अधिकार और उनकी बराबरी को दिखाना।
1: महिलाओं को समान मताधिकार देने के लिए 1920 ईस्वी में इसे पारित किया गया था और इस वर्ष के महिला समानता दिवस की थीम की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष की तरह ही है। पिछले वर्ष की थीम थी हार्ड वन, जो सार्वभौमिक मताधिकार पर केंद्रित थी। इस साल की एक थीम है हार्ड वन नॉट डन।
0: वेरी गुड। और अगर हम कहें तो वैसे देखा जाए विनोद जी, तो महिलाएं अब किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं है। जमीन से लेकर आसमान अब सभी उनके पास हैं।

0: सुप्रीता, हम बता दें कि अभी हमने बहुत सारी बातें की और बहुत सारी बातें भी करनी हैं, और जो आज हम दिवस विशेष की बात कर रहे हैं तो आज का जो दिन है ओणम पर्व भी आज मना रहे हैं, मना रहा है जो संबंधित खासकर जो क्षेत्र है उनका।
1: बिल्कुल
0: ठीक है ना। ओणम केरल का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय फसल उत्सव है। मलयालम में अगर हम ये बात करें तो महिलाएं जो हैं चिंगम, जो कि ये कहते हैं के दौरान 10 दिनों तक मनाया जाता है।
1: हाँ।
0: यह त्योहार राजा महावती के स्वागत और भगवान वामन की जयंती की खुशी में मनाया जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने विनोद जी, और यह उत्सव लगातार 10 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत अथम नक्षत्र से होती है। लोग अपने घरों के आंगन में ताजे फूलों से सुंदर रंगोली जैसे सजावट करते हैं, जिसे पूकलम भी कहा जाता है। वैसे 10वें और आखिरी दिन जो कि आज है थिरु ओणम पर एक बहुत बड़ा और खास भोज का आयोजन होता है, जिसे ओण सांध्या कहते हैं, जिसमें कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं। और आपको पता है इस दौरान पारंपरिक नौका दौड़, हाथी जुलूस और लोक नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। कुल मिलाकर लोग बहुत खुशी से
0: बिल्कुल, और खासकर जो नौका दौड़ की बात हम लोग कहते हैं तो बहुत ही रोमांचक होता है।
1: बिल्कुल, और लोग खुशी खुशी इस त्योहार को मनाते हैं।

0: जो है रांची में। अब बातें आज के इतिहास की, तो आपको श्रोताओं बताएं कि आज ही के दिन 1303 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था।
1: और आज के ही दिन 1920 ईस्वी में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला 19वां संशोधन लागू किया गया था।
0: बिल्कुल। और अगर आज की बात करें तो 1914 ईस्वी में बंगाल क्रांतिकारियों ने कोलकाता में ब्रिटिश बेड़े पर हमला कर भारी मात्रा में हथियार और गोलियां लोगों से ले ली थी।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: और अब बात कर लें मौसम की, तो सुप्रीता देख ही रही होगी, अगर पिछले अगर एक आध हफ्ते की बात करें तो मौसम में जो उतार चढ़ाव का क्रम में जारी है, बारिश भी हो रही है, धूप भी खिल रही है, बादल भी छा रहे हैं। और अगर आज की बात करें तो रांची और इसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे, जैसा कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है।
3: बिल्कुल,
2: कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है।
3: और अगर विनोद जी तापमान की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।
2: बिल्कुल, यानी कि मौसम रहेगा सुहाना, लेकिन बारिश की वजह से कहीं कहीं ट्रैफिक की परेशानी हो सकती है।
3: आप अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं श्रोताओं, तो छाता और रेनकोट रखना बिल्कुल ना भूलें। अगर धूप रहेगी तो आप छाता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बारिश हुई तो भी आप छाता का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी सावन का जो मौसम होता है ना, वो इतना अच्छा होता है कि हर ओर हरियाली छाई रहती है।

0: सुप्रीता, खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं होता है। कई बार शांत रहने वाले लोग ही सही समय आने पर सबसे बड़ा जवाब देते हैं।
1: तो श्रोता, चलते चलते बस इतना है कि आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के जोहार रांची के पन्नों को अब यहीं समेटते हैं और आज के इस अंक से सुप्रीता
0: और विनोद को दीजिए इजाजत। नमस्कार,
1: जोहार।

अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुनेंगे भेंटवार्ता संध्या रानी मेहता डीआईजी बजट से सिंधु मिश्रा की बातचीत। प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डीआईजी बजट श्रीमती संध्या रानी मेहता मैम। मैम का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार। जय हिंद
0: मैम। आज इस कार्यक्रम में हम आपके बारे में विशेष तौर से जानना चाहेंगे। आपकी जन्मस्थली कहाँ रही और बचपन आपका कहाँ बीता?
1: वैसे मैं रहने वाली तो हूँ रांची की ही। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो सोनाहतु के गांव में है,
0: जी।
1: लेकिन मेरे पिताजी की चूंकि बिहार सरकार में नौकरी थी, वो लेबर डिपार्टमेंट में डिप्टी लेबर कमिश्नर होकर रिटायर किए हैं, तो उनकी पोस्टिंग ऑल ओवर बिहार, उस समय तो यूनिफाइड था,
0: जी।
1: बिहार झारखंड में हुआ करती थी। तो मेरा जन्म हुआ है वैसे पूर्णिया में, और मेरी शिक्षा दीक्षा भी उधर से ही, कटिहार, पूर्णिया, फिर बोकारो, जमशेदपुर और लास्ट में रांची में मेरी पूरी शिक्षा हुई। मैंने मास्टर्स किया है हिस्ट्री में,
0: जी।
1: जो कि उत्कल यूनिवर्सिटी, वहाँ कटक से मैंने अपना पीजी की पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद फिर चूंकि कंपटीशन बड़ा डाइसी सा होता है,
0: जी।
1: आप प्रिपेयर करते हैं हमेशा, ज़रूरी नहीं है कि तुरंत आपको सफलता मिल ही जाती है। तो मैंने एक स्कूल भी ज्वाइन किया था, उसमें डीएवी हेहल पहले था, फिर डीएवी शामली उस समय जो जेवीएम है, तो वहाँ भी मैंने प्लस टू तक पढ़ाया है, 2 साल पढ़ाया है। और उसके बाद जब मैं पढ़ा रही थी उसी वक्त मैंने बीपीएससी की जो 40वीं बैच थी उसमें मैं क्वालिफाई की, और 97 में मैंने अपना ट्रेनिंग ज्वाइन किया था। उसके बाद प्रोबेशन मेरा बिहार में हुआ, बिहार शरीफ में। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग चाईबासा हुई, फिर चाईबासा के बाद देवघर गई मैं, देवघर के बाद फिर स्पेशल ब्रांच में आई, जो कि हमारा आसूचना विभाग होता है। फिर स्पेशल ब्रांच के बाद मैं बोकारो गई, फिर एक बार फिर स्पेशल ब्रांच में आई, फिर महिला बटालियन में रही कमांडेंट के तौर पर। उसके बाद सीआईडी में मेरी पोस्टिंग हुई, और सीआईडी के बाद ये मेरी डीआईजी बजट के रूप में ये मेरी पोस्टिंग, अभी फिलहाल मैं वहीं।
0: एक तरह से देखा जाए तो बिहार और झारखंड दोनों को आपने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से उसको देखा है, और साथ ही साथ अपनी बातों में आपने एक बात और बताई कि आप शिक्षिका के रूप में भी कार्यरत रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगी, आज की जो पीढ़ी है हमारी वो अपनी पढ़ाई को लेके काफी संघर्ष कर रही है, एक शिक्षिका होने के नाते उस दृष्टिकोण से आप क्या कहेंगी आज के बच्चों को?
1: उनकी जो भी जो उन चाहे उनकी पढ़ाई हो या उनका जो एकेडमिक्स बोलते हैं कि एकेडमिक्स के लिए वो पढ़ रहे हों या किसी प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, अगर हम शिक्षा का माहौल प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक अगर हम उन्हें सही माहौल नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एज अ समाज हमें खुद से प्रश्न करना चाहिए कि बच्चे या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी जो हैं, उनकी क्या मांग है, उनकी डिमांड्स क्या है, क्योंकि समय के अनुसार बहुत कुछ, अब एआई का रोल जो अब आज के समय में इतना ज़्यादा बढ़ गया है
0: जी।
1: हम इतना ज़्यादा हाईटेक हो रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी का रोल इतना बढ़ा हुआ है, तो उसके अनुसार भी मुझे लगता है कि शिक्षा की पद्धति में हमारा, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके अनुसार बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। ट्रांजिशन फेज होता है, जो हमारी मांग है और जो समाज, जो सिस्टम उन विद्यार्थी को दे रहा है, उसमें अगर कहीं गैप है तो फिर तो वो तो उस गैप को तो पाटना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उनमें फ्रस्ट्रेशन ना हो, क्योंकि आज का युवा ही हमारा भविष्य है, वही हमें लीडरशिप देने वाले हैं।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: अगर वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, अगर वो उदासीन रहेगा अपनी पढ़ाई को लेके, अपने भविष्य को लेके, तो फिर ये तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, सुखद स्थिति नहीं होगी हमारे भविष्य के लिए। तो हमें ज़रूर उस तरफ तो ध्यान देना ही चाहिए, पूरे सिस्टम को। लेकिन आज के समय में मैं देख रही हूँ कि निजी क्षेत्र में भी इतना शिक्षा में निजी क्षेत्र का भी इतनी ज्यादा भूमिका बढ़ गई है, तो उनकी तरफ से भी मुझे लगता है कि पहल हो रही है आज के समय में, तो वहाँ भी वो उस गैप को शायद पाटने में उनका उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
0: बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी जीवन आपका कैसा रहा मैडम, ये हम जानना चाहेंगे।
1: उस समय मेरी जो रुचि बढ़ी इधर कॉम्पिटिशन्स को लेके, उसमें बहुत बड़ा रोल जो था वो मुझे न्यूज़पेपर मैगजीन्स, उस जमाने में बहुत अच्छे अच्छे मैगजीन्स आया करते थे, मुझे याद है इलस्ट्रेटेड वीकली, टुडे, धर्मयोग, बचपन में मुझे याद है कि पराग और चंपक और नंदन, ये सब इतनी इतनी बढ़िया मैगजीन हुआ करती थी, तो उससे पढ़ने का शौक बहुत हुआ, और जो डेली नेशनल डेलीज जो न्यूज़पेपर्स थे वो भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था मुझे, इंटरनेशनल बर्निंग इश्यूज पर डिबेट करना या उस पर कुछ पढ़ना, तो उस शौक को देखते हुए पहले तो मुझे याद है कि मैं इतना मैगजीन और इतनी बुक्स और सब कुछ पढ़ती थी कि मुझे लगने लगा था कि मैं भी एक जर्नलिस्ट बनूंगी, पत्रकार बनूंगी
0: जी।
1: फिर वो तो बचपन का होता है, फिर 10th आते आते फिर थोड़ा सा गोल मेरा क्लियर हुआ कि नहीं, फिर पिता का भी गाइडेंस रहा, तो उनको बहुत शौक था कि बेटियों में से एक कोई एडमिनिस्ट्रेशन में आए, पुलिस के बारे में नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, उस समय मैं बहुत मतलब वजन बहुत कम हुआ करता था मेरा, तो पुलिस ज्वाइन करने के बारे में बहुत ही उस समय तक नहीं सोचा था। इंटरव्यू में जाके अब उसके बाद जब रिजल्ट आया तभी देखा कि मुझे पुलिस सेवा में मेरा चयन किया गया है, अदरवाइज मैंने सोच के रखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊंगी। पढ़ाई मेरी ग्रेजुएशन मेरा रांची वुमेन्स कॉलेज से है। अमूमन क्या होता है कि इस तरह की जो इंटरेस्ट होता है कंपटीशन में उनका एक ग्रुप बन जाता है
0: जी,
1: तो मेरा भी एक अच्छा ग्रुप था जहाँ हम नोट्स शेयर करते थे और सारे कॉम्पिटिशन्स हम साथ में जाके दिया करते थे ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली जो यूपी एमपी या फिर यूपीएससी दिया या बीपीएससी दिया तो सब साथ दिया करते थे। ग्रुप हमारा ऐसा था कि सबको पढ़ाई लिखाई वाला शौक था, उसमें से मैक्सिमम लोग लेक्चरशिप ही ज्वाइन किए, एक मैं थी जो पुलिस सेवा में मैं आई हूँ। हिस्ट्री में ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो इंटरनेशनल रिलेशन और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था
0: जी। तो मैडम यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने मोड़ना चाहूँगी बातों को और महिलाओं की बातें करूँगी। आजकल देखा जाता है कि हमारी महिलाएं चाहे वो एक होम मेकर के रूप में हो या फिर कार्य क्षेत्रों में अपने अपने कार्यों में लगी हुई हों, एक घर का बजट निर्धारित करने का जब अवसर आता है तो महिलाओं को इसमें माहिर समझा जाता है, और आप अभी DIG बजट के रूप में कार्यरत हैं, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं?
1: हाँ, तो चूंकि सर्विस का लंबा अनुभव हो गया था और हमें भी अक्सर, जैसे मैं कमांडेंट थी किसी यूनिट की या SP रही हूँ किसी भी डिपार्टमेंट में भी, तो हमें डिपार्टमेंट चलाने के लिए, बटालियन चलाने के लिए हमें जो फंड मिलते थे, जो पैसे अलॉटमेंट मिलते थे
0: जी,
1: तो वो बड़ा सोच समझ के मतलब पहले हमें प्लान करना पड़ता था कि भाई जो हम डिमांड करने जा रहे हैं उसको किस तरह से हम खर्च करेंगे, तो उसकी बड़ी रस्सा कसी होती थी, इतने सारे ऑफिसर्स हैं, इतना जिला है, इतना यूनिट्स है, इतने ऑफिसर्स हैं, उनको उस छोटे से फंड को सबको हिस्सा मिलना है, तो उसमें हम अपना हिस्सा कैसे डिमांड करें और कैसे अपनी प्लानिंग सीनियर्स को बताएं कि हमें क्यों इतनी ज़रूरत है, तो वो उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और घर चलाने, जैसे गृहिणी जो घर चलाती हैं तो वो एक्सपीरियंस तो काम आता ही है कि एक लिमिटेड जो आपका पैसा आपकी सैलरी है उसी सैलरी में बच्चे की पढ़ाई देखनी है, उसी सैलरी में किचन चलना है, उसी सैलरी में एक दो साल में आपको बच्चे को घुमाने भी ले जाना है बाहर भी, और बाकी आपके जो फैमिली लाइबिलिटीज हैं, आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स इन लॉ हैं, उनका भी खर्च है, तो वो कैसे हर क्षेत्र में बंटता है, उस 1 महीने के अंत में जो सैलरी आपकी मिलती है, तो वो एक्सपीरियंस तो यहाँ भी वही है कि डिफरेंट यूनिट्स और डिफरेंट ऑफिसेज हैं, उनका कहाँ खर्च हो रहा है, कितना उनको, उनकी प्रायोरिटी क्या है, कि अगर बैरक्स बनाना है कि कॉन्स्टेबल्स के लिए, या फिर एक हॉल बनाना है पुलिस लाइन में,
0: जी
1: छोटे छोटे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, वॉशरूम की समस्या है, या कहीं पर शेड बनाना है, गैराज का शेड बनाना है, तो वो जो अपना प्रपोजल देते हैं, अपना प्रस्ताव देते हैं, तो उसी के अनुसार फिर उन पैसों को भी बांटा जाता है। हम अपने फाइल में प्रस्ताव बढ़ाते हैं, उसके बाद सीनियर ऑफिसर उसका अनुमोदन करते हैं, तब
0: जी
1: फिर उनको पैसे दिए जाते हैं। तो लिमिटेड पैसे को कैसे खर्च करना है, घर
0: जी
1: जब आप चलाते हैं, जब किचन
0: बिल्कुल
1: चलाते
0: सही बात
1: हैं,
0: है।
1: घर चलाते हैं, तो वो समझ तो आ ही जाती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएं कहाँ कहाँ हैं, जहाँ पे खर्च होना चाहिए, वहाँ कितने पैसे जाने चाहिए।
0: आज मैडम महिला सशक्तिकरण को हम किस तरह से देख सकते हैं? और कई बार ये भी देखा जाता है कि जब हम कोई नारे सुन रहे होते हैं या फिर किसी का भाषण सुन रहे होते हैं, तो उसमें नारी को नारायणी की संज्ञा भी दी जाती है। तो कहाँ तक अभी के समाज में ये देखा जा रहा है कि ये संज्ञा आज महिलाओं पे लागू हो चुकी है?
1: इसको मेरा क्रिटिसिज्म कह लीजिए या कुछ कह लीजिए,
0: जी
1: कि नारी के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं हमारे समाज ने, और बड़ा विचारों में तो बहुत स्थान देते हैं, लेकिन हम अपने आसपास जब देखेंगे, अपने आसपास समाज में, अपने घर बाहर में, अपने गांव में, अपने शहरों में, पब्लिक स्पेस में अगर हम देखेंगे, तो महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। जो बेसिक जो उसके राइट्स हैं कि कहीं आने जाने की कितनी आज़ादी है,
0: जी
1: भाई या पिता उसको स्कूल कॉलेज छोड़ने जा रहा है, तभी परिवार ये महसूस करता है कि हाँ उनकी बेटियां तभी सुरक्षित रहेंगी।
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो वो पब्लिक स्पेस में जो सुरक्षा महिलाओं को जैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए, वैसी वो सुरक्षित वो नज़र नहीं आती हैं। आए दिन कुछ ना कुछ हम सुनते रहते हैं कि मिसहैप्स होते रहते हैं, तो ये तो हमें खुद सोचना होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, उसमें परिवार का रोल बहुत ही अहम होता है, कि अपने लड़कों को, अपने बेटों को वो ऐसी शिक्षा दें
0: जी
1: कि कैसे, अगर अपनी बहन दोस्त नहीं समझ रहे हैं, तो कम से कम उसको इंसान समझिए,
0: बिल्कुल
1: और उसको उतने मान सम्मान का, या एक इंसान की तरह उसको ट्रीट करने का आपको उतनी शिक्षा देनी चाहिए एक परिवार को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को। तो खैर, उनको बराबरी का दर्जा मिलना ही चाहिए, इसमें
0: जी
1: तो कहीं कोई शक नहीं, लेकिन बेटों को भी ये शिक्षा होनी चाहिए कि जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो भी बराबरी के हकदार हैं, और वो भी आपके मान सम्मान, आपके जो घर के बाहर की लड़कियां हैं, वो भी उतने ही मान सम्मान के हकदार हैं जितने आपके घर के अंदर की
0: बिल्कुल
1: महिलाएं हैं।
0: सही बात है।
1: तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, परिवार का रोल बहुत ज़रूरी होता है, कि ये लड़कों को भी वो शिक्षा दी जाए कि कैसे उनका मान सम्मान करें महिलाओं
0: बिल्कुल
1: का।
0: सही बात है। और मुझे लगता है मैम

0: कि आज अभिभावकों को इस बात की जरूरत है कि लैंगिक भेदभाव से ऊपर उठकर उन्हें शिक्षा और संस्कार दोनों दिया जाए तो समाज की छवि बहुत हद तक बदल सकती है। मैडम
1: एक
0: अब
1: थोड़ा सा मैं इसमें पर्सनल टच देना
0: जी
1: चाहूंगी।
0: जरूर।
1: मेरा घर जो है, मेरा परिवार, वो महिला प्रधान है। मतलब हम सारी बहनें ही हैं परिवार में, तो हमें कभी भी ये तो खैर वो कंपटीशन जो भाई से कंपटीशन है, या वो कभी हमने महसूस ही नहीं किया। बचपन से ही, जन्म से ही, विशेष करके पिता का जो, वो हमेशा हम सबों को मोटिवेट करते रहे। सबसे मेरी जो बड़ी बहन है वो अमेरिका में डॉक्टर है, तो
0: जी
1: उन्होंने, उनका रोल और मेरे पिता का रोल, हम सबको, बाकी जो छोटी बहनों को आगे लाने में, उनका एक अच्छा करियर, एक स्ट्रांग करियर बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। तो हमने परिवार में कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन झेला नहीं, लेकिन जहाँ परिवार से बाहर गए तो फिर बड़ा अजीब लगा कि उतने हम लोगों ने खुद महसूस किया। अभी भी हमेशा ये महसूस होता है कि चूंकि मैं महिला हूँ, शायद बहुत सारी चीज़ें जो हैं, पुलिस ऑफिसर हूँ लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पहुँच से बाहर रखी गई।
0: जी
1: या तो हमें पैट्रोनाइज किया जाता है
0: जी
1: या तो फिर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो
0: यानी अगर हम अपनी सकारात्मक और स्वस्थ सोच के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि महिलाओं को भी वो स्थान आज प्राप्त हो सकता है जो उसकी हकदार हैं। मैडम यहाँ पे अब आपसे हम आपकी रुचि की बातें करना चाहेंगे। जब आपकी व्यस्ततम जिंदगी से आपको सुकून के पल जब आपको मिलते हैं तो क्या आप गीत संगीत सुनने का शौक रखती हैं?
1: मुझे लगता है कि संगीत ही है, कला ही एक चीज ऐसी होती है, विशेष करके संगीत ही ऐसा होता है कि आपको, मतलब वो महसूस कराता है कि आप जीवित
0: जी
1: हैं, कि दिमाग या दिल या सबको जो फिर से तरोताजा करता है।
0: तो यहाँ पर कोई ऐसा गीत आप जो सुनना चाहें?
1: जरूर, हम दोनों का अभी ना जाओ छोड़कर।
0: तो फिर चलिए आपकी पसंद का ये गीत हमारे श्रोताओं के साथ हम भी सुनते हैं।
2: अभी न जाओ छोड़ कर,

0: इस गीत के बाद पुनः स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। आज हमारे साथ कार्यक्रम में है डीआईजी बजट श्रीमती संध्या रानी मेहता मैम। मैडम, अब कार्यक्रम में चलते चलते आपसे एक और विषय पर बात करना चाहूंगी। जब हम गीत के पहले आपसे बात करे थे महिलाओं की, तो आज सजगता और सुरक्षा के मायने बहुत बदल चुके हैं। तकनीकी क्षेत्र में भी हमने काफी विकास किया है, तो देखा जा रहा है कि साइबर क्राइम जैसी चीजें भी महिलाओं के साथ होती हैं और उसकी भुक्तभोगी वो हो जाती हैं, जाने अनजाने कैसे भी उसकी चपेट में आ जाती हैं। क्या कहेंगी सजगता और सुरक्षा के लिए?
1: ये तो बड़ा, ये जो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, विशेष करके जो बच्चों को जो टारगेट किया जा रहा है ऑनलाइन, मतलब जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनका एक्सपोजर इतना अर्ली हो जा रहा है कि अब चूंकि बीच में कोविड के कारण हमारी ऑनलाइन जो स्कूल ऑनलाइन चल रहे थे, क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, तो हमें एक्सेस, बच्चों को एक्सेस देना पड़ा मोबाइल में, सोशल मीडिया में उनको एक्सेस देना पड़ा। सोशल मीडिया का अच्छा यूज भी है, लेकिन ओवर एक्सपोजर जो है आज के समय में हम जो देख रहे हैं, विशेष करके बच्चों को, उनको बचाना बहुत ही जरूरी है। एक तो मैं बात करूंगी सबसे पहले जो साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, तो आप अपना स्ट्रांग सिक्योरिटी जरूर रखिए और टू स्टेप ऑथेंटिसिटी, जो दो स्टेप पर चाहे किसी भी तरह का ऐप हो, वो टू स्टेप वाला आप अपना सिक्योरिटी जरूर रखिएगा। दूसरा, हर कुछ सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिए कि आज मैं यहाँ गई, आज मैं वहाँ गई, मैं इससे मिली। आप अपना लोकेशन शेयर मत कीजिए, बाद में आप शेयर कर दीजिए कि हाँ आप कश्मीर से घूम के वापस आई, जो भी हुआ। ये जो लाइव लोकेशन लोग शेयर करते हैं और एक एक पल की जानकारी जो देते हैं, वो बड़ा डेंजरस हो जाता है।

0: वो आपका सबसे बड़ा वेलविशर है उस बच्चे को। अच्छा, वो टीनेज वाला टाइम भी ऐसा होता है कि हमें लगने लगता है कि परिवार तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: जी।
0: या फिर हम बाहर के लोग ही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। तो ऑनलाइन जो दोस्ती होती है तो फिर वो भी इस चीज़ को एक्सप्लॉयट करते हैं टीनेजर्स को, और फिर उनकी ग्रूमिंग करना शुरू करते हैं कि हम तो तुम्हारा भला ही कर रहे हैं, तुम ये करो। वो जैसा जैसा फिर बोलता जाता है, फिर वो धीरे धीरे धीरे वो बच्चे भी वैसे ही करते जाते हैं और पूरी तरह से उनके कंट्रोल में, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। और फिर तब फिर जो उनका हर तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरह का
1: जी
0: एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। तो उससे मैं चाहूंगी कि बच्चों को बिल्कुल दूर रखना चाहिए, उनको दूर रहना चाहिए। जो हर चीज़ ऑनलाइन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही है।
1: बिल्कुल
0: जो जैसा दिख रहा है ऑनलाइन वही वो सही हो, वो अच्छा हो, वो ज़रूरी नहीं है।
1: बिल्कुल
0: आपको
1: सही बात।
0: पिक करना होता है, आपको अपना चूज करना है कि क्या क्या हम अपने अंदर उसको इंटरनलाइज करें, कौन सी चीज़ें ग्रहण करें, कौन सी चीज़ें रिजेक्ट करें।
1: बिल्कुल
0: तो वो समझ जब तक नहीं हो, तब तक मुझे नहीं लगता है कि लोगों को सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव होना चाहिए। बुलिंग होती है कि कैसे बच्चों को बुली किया जा रहा है, बच्चे क्या, एडल्ट्स को भी बुली किया जाता है कि कैसे हरास किया जाता है ऑनलाइन। तो ये सब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है।
1: बेहद महत्वपूर्ण बातें आपने बताई मैडम। चलते चलते अब हमारी देश की महत्वपूर्ण कड़ी जिसे हम मानते हैं वो है हमारे युवा। तो हमारे युवाओं के लिए आप संदेश के तौर पे क्या कहना चाहेंगे?
0: सपने देखना बंद मत कीजिए,
1: बिल्कुल
0: सपने देखिए। वो जो बोलते हैं, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। एक अच्छे भविष्य के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए हमेशा सपने देखना बहुत ज़रूरी होता है। सपने ही आपके भविष्य की नींव होते हैं। और मैंने ये देखा है कि अगर बीच में थोड़ी सी अड़चन आ रही है, किसी तरह कोई एडवर्स सिचुएशन आ रहा है, तो उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
1: जी
0: बिल्कुल मत घबराएं कठिनाइयों से और बाधाओं से। नेवर से डाई, कभी नहीं हार मानना है। हार तो मानना ही नहीं है, आप लगे रहें अपने ध्येय में, अपने लक्ष्य में। ठीक है, जैसे मेरा भी लक्ष्य था यूपीएससी का,
1: जी
0: लेकिन मैं बीपीएससी, यूपीएससी नहीं हुआ तो फिर बीपीएससी मैं क्वालिफाई की। तो उसी के लिए ये दो चीज़ें हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपने ध्येय में लगे रहना चाहिए और सपने देखना बंद मत कीजिए। बाकी जो जद्दोजहद चल रही है आपके आसपास, वो ट्रांजिशन फेज है, उससे कैसे बाहर निकलना है और उसे कैसे अच्छी चीज़ें उससे सीखना है, वो बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ क्रिटिसाइज करने से नहीं होता है, अपना भी कंट्रीब्यूशन देना है। अपने अपने घर में, अपने आसपास के समाज में एक छोटी सी चीज़ है, सफाई ही होती है। तो वो न सिर्फ हमें खुद साफ रहना चाहिए, अपने आसपास साफ रखना चाहिए, बल्कि जब अवसर मिले, जब मौका मिले, तो आसपास भी लोगों को साफ सुथरा रहने और सफाई की प्रेरणा दी जानी चाहिए, मुझे
1: बिल्कुल
0: लगता
1: सही
0: है।
1: बात
0: क्योंकि
1: है।
0: अभी हमारे जो शहरों की स्थिति होती है तो बड़ा बुरा लगता है देख के।
1: बिल्कुल सही बात है। मैडम, आपकी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी बातों के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो आई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच। जय हिंद।

अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। संध्या रानी मेहता डीआईजी बजट से सिंधु मिश्रा की बातचीत हम सुन रहे थे। प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

549 किलो हर्ट्ज पर। और साथ ही साथ श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी को कार्यक्रम में हम सफर सुप्रीता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली फरमाइश लेते हैं जो आई है धुरवा रांची बस स्टैंड से। ये हैं सुषमा, ममता, नीलांचल आदि और गीत। इन्होंने सुनना चाहा है आरजू फिल्म का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की, जिसकी धुन बनाई है अनु मलिक ने। तो आप सबकी पसंद का सुनते हैं आरजू फिल्म से ये गाना।

आई श्रोताओं, सुनते हैं जख फिल्म का ये गाना। आवाजें हैं अलका याग्निक की और इस गाने के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। इस गाने की धुन बनाई है MM कीरावाणी ने। इस गाने को पसंद करने वाली हैं काके से इंशा, उनकी मम्मी नरगिस और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं जख फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना।

0: कार्यक्रम आपकी पसंद में लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: कार्यक्रम आपकी पसंद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है. श्रोताओं, अब जो गाना हमने लिया है ये गाना है फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से. आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की. शब्द रचना है मजहूर सुल्तानपुरी के और इस गाने की धुन बनाई है आरडी वर्मन ने. इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सब. सिंगमोर रांची से नीलू जी, मनोज कुमार, मनन और मनीषा.

आइए सुनते हैं जलेबी फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की खूबसूरत आवाजें। प्रशांत की शब्द रचना है और संगीत है जावेद मोहसिन का। इस गाने को पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सब। डोरंडा रांची से हैं आप, मोनिका अग्रवाल, ग्रेस कुजूर, जॉली तिवारी, अनुपमा महतो, जीआरके नायर। तो आइए सुनते हैं जलेबी फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना।

कार्यक्रम में चलते चलते अब आइए सुनते हैं फिल्म सनम रे से ये गाना। आवाज है अरिजीत सिंह की। इस गाने के बोल लिखे हैं रश्मि विरागनी और संगीत है मिथुन का। इस गाने को पसंद करने वाले श्रोता हैं महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर।

अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। वक्त है हमारी बहनों के कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं आपकी सखी खुशबू। प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

0: उम्मीदों की किरण से हर सवेरा खास होता है। उम्मीदों की किरण से हर सवेरा खास होता है, हौसलों से ही हर सपना साकार होता है। नारी जब अपने हुनर को पहचान लेती है तो उसके कदमों से बदलाव का आगाज होता है, और जिसकी आवाज में विश्वास हो उसकी बात तो दुनिया तक जरूर पहुंचती है। नमस्कार सखियों, गृहलक्ष्मी के इस कार्यक्रम में आप सभी सखियों का मैं आपकी रेडियो सखी खुशबू तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगी और अपने परिवार के साथ खुश होंगी। सखियों, गृहलक्ष्मी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहाँ एक अनदेखे रिश्ते में हम अपने मन की बातें साझा करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सोचते हैं, अब सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरे की आवाज बनते हैं। सखियों, आज हम आपसे मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, यानी कि रेडियो, और यही मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी बन चुका है। सुबह की शुरुआत अखबार से हो या रेडियो की आवाज से, दिन में टेलीविजन की खबरें हो या मोबाइल पर डिजिटल मीडिया, मीडिया लगातार हमारे साथ रहता है। और इस पूरे बदलते मीडिया संसार में महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। सखियों, अगर हम कुछ समय पीछे मुड़कर देखें तो मीडिया के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या सीमित थी। महिलाओं को मुख्य रूप से कुछ निश्चित भूमिकाओं तक ही सीमित समझा जाता था, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। महिलाएं पत्रकारिता से लेकर रेडियो, टेलीविजन, विज्ञापन, फिल्म, जनसंपर्क, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक अपनी पहचान बना रही हैं। आपसे बातें और भी होंगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है
4: ब्रो? ये फटा है, सुन, फटे फटे है पुराने नोट को
5: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। वैसे सखियों, आवाज आप तक पहुंच रही है और वो भी मीडिया के माध्यम से। जैसे आज हम आपसे बातें भी कर रही हैं कि मीडिया के क्षेत्र में महिलाओं का क्या भविष्य है, तो आज महिला केवल समाचार पढ़ने वाली आवाज नहीं बल्कि खबरों को खोजने, लिखने, विश्लेषण करने और मीडिया संस्थानों का नेतृत्व करने वाली महत्वपूर्ण भूमिका में भी दिखाई दे रही है। और सखियों, यही बदलाव हमारे समाज की बदलती सोच को भी बतलाता है। याद कीजिए सखियों, यदि रेडियो की बातें करें तो यह माध्यम महिलाओं के लिए हमेशा से विशेष रहा। यदि रेडियो की सबसे खूबसूरती यही है कि यहाँ पे चेहरा दिखाई नहीं देता लेकिन आवाज दिल तक पहुंचती है। सच सखियों, यह हमारा आपसे एक आत्मीय रिश्ता बन जाता है। यहाँ पर महिलाओं से जुड़े विषयों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवार, समाज की बातें आप तक पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन सखियों, आज मीडिया केवल रेडियो, अखबार और टेलीविजन तक सीमित नहीं है। डिजिटल मीडिया ने महिलाओं के लिए अवसरों का दायरा और बड़ा कर दिया है, और आजकल मोबाइल फोन तो एक जरूरत सी बन गई है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और ये हर किसी के पास उपलब्ध भी है। आज एक महिला फोन के माध्यम से अपनी कला और हुनर को दुनिया के सामने भी रख रही हैं और अपने विचारों को हजारों लोगों तक पहुंचा रही हैं, जो कि एक सशक्त माध्यम है। मतलब आज किसी महिला को अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए किसी बड़े संस्थान का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसके हाथ में मौजूद तकनीक भी उनके लिए मंच बन सकती है। आने वाले समय में मीडिया के क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार और काम के नए अवसर बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे कि लेखन है, डिजिटल कंटेंट,

वीडियो निर्माण, फोटोग्राफी जैसे अनेक क्षेत्र में महिलाओं के द्वार खुल रहे हैं, नए नए रास्ते खुल रहे हैं जिसमें वो अपना करियर भी बना सकती है और साथ ही साथ अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा भी सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि महिलाएं समय के साथ साथ तकनीक को भी समझें और लगातार नई चीज़ों को सीखते रहें, क्योंकि आज के समय में हुनर के साथ तकनीकी ज्ञान भी सफलता की चाबी है। सखियों, ग्रामीण और छोटे शहरों की महिलाओं के लिए भी डिजिटल मीडिया ने नई राह खोली है। आज वे अपने क्षेत्र की कला, संस्कृति, खान पान, हस्तशिल्प को दुनिया तक पहुंचाती हैं और इससे न केवल उनकी पहचान बनती है बल्कि इससे स्थानीय संस्कृति और प्रतिभा को भी नई पहचान मिलती है, लोगों तक वो जन जन तक पहुंचती हैं। हालांकि सखियों, अवसरों के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे महिलाओं को काम और परिवार के बीच संतुलन हर जगह तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि महिलाएं हर जगह दोहरी भूमिका में होती हैं। डिजिटल मीडिया में साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं, जिसका महिलाओं को डटकर मुकाबला करना चाहिए और उनसे घबराना भी नहीं चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य और वातावरण मिले, परिवार और समाज का सहयोग मिले, तभी वो आगे बढ़ सकती हैं। सखियों, मीडिया के क्षेत्र में महिलाओं का भविष्य उज्ज्वल और संभावनाओं से भरा हुआ है। जरूरत है शिक्षा, तकनीक, आत्मविश्वास और अवसर की। जब परिवार और समाज महिलाओं के साथ खड़े होंगे तो उनकी आवाज और भी मजबूती से दुनिया तक पहुंचेगी। मीडिया में महिलाओं का बढ़ता कदम सशक्त और समान भविष्य की मजबूत पहचान है। एक ऐसा आशियाना जहां सपनों को उड़ान मिले, आवाज को पहचान मिले और हर महिला को आसमान में उड़ने की आज़ादी मिले। और जब मीडिया के इस बदलते आसमान में महिलाएं अपनी पहचान का आशियाना बना लेती हैं

सखियों आशियाना बनते देखना हम सबका सपना होता है और इसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हमारी आंखें निभाती है। आंखों से अपना आशियाना बनते देखना सच में एक सपने जैसा होता है और आंखें हमारे जीवन का एक अनमोल माध्यम है जिनसे हम दुनिया की खूबसूरती को देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं। लेकिन कई लोग आंखों की रोशनी खोने के कारण इस सुंदर संसार को नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के जीवन में उजाला लाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है आंखें और इसी संदेश को जन जन पहुंचाने के उद्देश्य से हर वर्ष नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है जो कि हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। सखियों, नेत्रदान केवल एक दान नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति के जीवन में रोशनी लौटाने का महान संकल्प है और ऐसी ही रोशनी बिखेरती हैं हमारे जीवन में किताबें। और अगर बातें हो रही हो संस्कार की और किताबों का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किताबें सिर्फ कागज के पन्नों पर लिखे शब्द नहीं होते बल्कि हमारे बच्चों के व्यक्तित्व को गढ़ने वाली एक खूबसूरत सी दुनिया होती है। किताबें केवल बच्चों को पढ़ना नहीं सिखाती बल्कि उन्हें सोचना, कल्पना करना, प्रश्न पूछना और अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करना भी सिखाती है, मतलब बोलना सिखाती है। सखियों, जब बच्चा कहानी पढ़ता है तो वो केवल कहानी नहीं पढ़ रहा होता बल्कि वह अलग अलग पात्रों, परिस्थितियों और भावनाओं को समझना सीख रहा होता है। इसलिए सखियों कहा जाता है कि बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करना चाहिए कि बच्चों में किताब पढ़ने की आदत डालने के लिए सबसे पहले हमें खुद उनके सामने उदाहरण बनना चाहिए। अगर बच्चा ये देखेगा कि माँ बाप किताब पढ़ते हैं या घर के बड़े किताब पढ़ते हैं तो उनके मन में भी किताबों के प्रति रुचि पैदा होगी। क्योंकि सखियों, किताबों को पढ़ना केवल कहना बच्चों के लिए ये काफी नहीं है बल्कि हमें भी उनके साथ बैठकर ये करना चाहिए। और इसकी शुरुआत हम मनोरंजक तरीके से कर सकते हैं, जैसे उन्हें पहले किताबें और रंग बिरंगे चित्रों वाली कहानी की किताबें दे सकते हैं और कहानी के बीच बीच में उनसे कहानी से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं।

जिससे उनमें किताबों के प्रति रुचि जागेगी और इस तरह पढ़ना बच्चों के लिए बोझ नहीं बल्कि मनोरंजन बन जाएगा। सखियों, बच्चे की उम्र और रुचि के अनुसार ही उन्हें किताबें देनी चाहिए, जैसे छोटे बच्चों के लिए चित्रों वाली कहानियां, पंचतंत्र की कथाएं, लोक कथाएं तथा छोटी छोटी ज्ञानवर्धक किताबें अच्छी शुरुआत हो सकती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी रुचि के अनुसार विज्ञान, इतिहास, जीवनी, यात्रा, साहित्य की किताबें उनके पुस्तकालय का हिस्सा बन सकती है। और घर में अगर एक छोटा सा बुक कॉर्नर बना दिया जाए तो क्या बात है। बच्चों की पहुंच में अगर किताबें होंगी, साथ ही उनकी मनपसंद किताबें होंगी, तो वे उन्हें मन से उठाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे उन्हें उनमें किताबें पढ़ने की आदत बन जाएगी। और किताबें बच्चों की भाषा, ज्ञान और विचारों को भी मजबूत करती है। इसलिए सखियों, ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को हर समय मोबाइल देकर व्यस्त रखना आसान है, लेकिन किताब देकर उन्हें कल्पना की दुनिया में ले जाना उनके भविष्य के लिए कहीं ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि मोबाइल बच्चों को जानकारी तो दे सकता है, लेकिन किताबें उन्हें जानकारी देने के साथ साथ विचार करना भी सिखाती है। इसलिए तो कहा जाता है ना सखियों, किताबें खामोश जरूर होती हैं, लेकिन इसके पन्नों में छिपी कहानियां हमारी सोच को बोलना सिखा देती है। और शायद इसलिए आज बच्चों के हाथ में किताब देना, उनके हाथ में केवल एक पुस्तक देना या किताब देना नहीं, बल्कि उनके सपनों और भविष्य की चाबी सौंपना है। क्योंकि जब किताबों के पन्ने खुलते हैं तो बच्चों के सपनों की नई दुनिया भी खुलती है।

बिल्कुल हैरान परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी रेडियो सखी अभी आपके साथ है सखियों, और अभी जानकारी भी है। और जानकारी में आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, खुशहाल परिवार की धुरी है नारी। और कहा भी जाता है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में खुशियों का वास होता है। नारी केवल परिवार की ही एक सदस्य नहीं, बल्कि वह परिवार की भावनाओं, संस्कारों और रिश्तों को जोड़कर रखने वाली मजबूत कड़ी है। इसलिए ये कहना सही होगा कि खुशहाल परिवार की धुरी है नारी। सखियों, परिवार हमारे जीवन की पहली पाठशाला है, और नारी इस पाठशाला की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षिका होती है। माँ बच्चे को जन्म देने के साथ साथ उसे संस्कार, अनुशासन, प्यार और जीवन के मूल्यों की भी शिक्षा देती है। बच्चे की पहली भाषा, पहला व्यवहार और दुनिया को देखने का पहला नजरिया अक्सर उसे अपनी माँ से ही मिलता है। एक खुशहाल परिवार केवल धन संपदा से नहीं बनता, बल्कि परिवार में प्रेम, विश्वास, सम्मान, सहयोग और आपसी समझ का होना भी बहुत जरूरी है। और इन भावनाओं को बनाए रखने में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह परिवार के सदस्यों की जरूरतों को समझती है, रिश्तों को संभालती है और कठिन परिस्थितियों में परिवार का मनोबल को बढ़ाए रखती है। आज की नारी केवल घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती, बल्कि घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी को संभालती है। परिवार सखियों एक साझेदारी है। जिस तरह नारी परिवार के लिए अपना योगदान देती है, उसी तरह परिवार के सदस्यों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वे उनके सपनों, मेहनत और भावनाओं का सम्मान करें। इसलिए तो कहा जाता है कि नारी परिवार की ममता, शक्ति और संवेदना और संस्कारों का केंद्र है। वह घर को केवल घर नहीं रहने देती, बल्कि उसे प्यार और अपनत्व से एक परिवार का रूप दे देती है। नारी घर की नींव भी है, नारी घर की पहचान भी है। उसके स्नेह से घर महकता है और उसके संस्कारों से परिवार खुशहाल बनता है। क्योंकि जब नारी के स्नेह से जब घर आंगन महक उठे और रिश्तों में खुशियों की गुनगुनाहट हो, तो जीवन भी एक खूबसूरत सा गीत बन जाता है और फिर दिल यूं ही कह उठता है।

0: इसी खूबसूरत से गीत के साथ सखियों आज का हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, और अब अपनी रेडियो सखी खुशबू को दे इजाजत। नमस्कार।
1: गृहलक्ष्मी।

अभी हम सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले हम आपको आइए सुनवाते हैं फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का ये खूबसूरत सा गाना। आवाज है रूप कुमार राठौर की, जयदीप शाहनी के बोल हैं और इस गाने की धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने।

1942 अ लव स्टोरी फिल्म से ये गाना। इस गाने के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। किशोर कुमार और आशा भोसले की खूबसूरत आवाजों में आइए सुनते हैं फिल्म अधिकार का ये गाना। अनवर नाज के बोल हैं और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान।

है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत में. आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में डंकी फिल्म का ये गाना. स्वानंद किरकिरे के बोल हैं और धुन बनाई है प्रीतम ने.

फिल्म संगीत में चलते चलते आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म हमारी अधूरी कहानी का ये गाना, श्रेया घोषाल और अमी मिश्रा की आवाजें हैं। गीत के बोल लिखे हैं कुणाल वर्मा ने और धुन बनाई है अमी मिश्रा ने।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। इसके लिए आइए आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र पर।

нас. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान बना चुका है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में परिवर्तन संरचनात्मक है और तेजी से होते शहरीकरण, मध्यम वर्गीय का स्तर बढ़ने और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नए अवसर सृजित कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं में भारत के डिजिटल तंत्र का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री

कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उच्च अधिकारियों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पायलटों और चालक दल के सदस्यों के शरीर में मनोसक्रिय पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने वाला मोकाडोप टेस्ट सिस्टम और नागर विमानन आवश्यकताओं CAR में जरूरी बदलावों पर चर्चा हो रही है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और एयरलाइन ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। अब तक इसके 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतों की निगरानी कर रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। नॉर्वे में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की जा रही ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन किया। नॉर्वे की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता और हिंसा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAEC के साथ एकजुटता दिखाते हुए इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को खत्म करने की मांग की। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए

0: assistance of 2,500 rupees every month. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has expressed gratitude to India and President Draupadi Murmu for conveying Independence Day greetings to the people of Ukraine. President Murmu yesterday extended her greetings to the people of Ukraine on the occasion of the country's 35th Independence Day. In men's cricket, host Sri Lanka were 108 for 2 against India in the second innings of the Colombo Test when reports last came in. India enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in the first innings. Resuming the penultimate day 265 for 8, Sri Lanka managed to add only 25 runs. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशभर के युवाओं को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत कल होगा खेलो इंडिया संवाद। कनाडा के वाणिज्य मंत्री ने जमशेदपुर एनएमएल में वैज्ञानिकों से किया संवाद। महत्वपूर्ण धातुओं के पुनर्चक्रण पर भारत कनाडा के बीच सहयोग पर चर्चा। परीक्षा विवादों के बीच जेपीएससी जेएसएसपी की सेवा शर्तों की होगी समीक्षा। 3 सदस्यीय समिति गठित। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, खनन एक्ट संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी झारखंड सरकार। और दिसंबर में सरायकेला खरसावां में होगी चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर शतरंज चैंपियनशिप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रतिनिधिमंडल ने दिया न्योता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। यह खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के बाद युवा प्रतिभागियों, माय भारत के स्वयंसेवकों, स्थानीय खिलाड़ियों और जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय स्तर पर संवाद होगा। कनाडा के उच्चायोग के वाणिज्य मंत्री एड जेगर ने आज जमशेदपुर स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला का दौरा किया। इस दौरान भारत और कनाडा के बीच अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस दौरान महत्वपूर्ण धातुओं के रिसाइक्लिंग पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने प्रयोगशाला में नवीन तकनीकों का अवलोकन किया और युवा वैज्ञानिकों से संवाद भी किया। राज्य सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति में कार्मिक और वित्त विभाग के सचिव सदस्य होंगे। समिति दोनों आयोगों की संवैधानिक और वैधानिक स्वायत्तता बरकरार रखते हुए अपनी अनुशंसाएं सरकार को सौंपेंगी। मुख्यमंत्री ने समिति गठन को मंजूरी दे दी है। भारत में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका यूपीआई आज 10 वर्ष का हो गया है। इस अवसर पर जमशेदपुर के दुकानदारों ने यूपीआई की सुविधा पर खुशी जताते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। साक्षी के दुकानदार ललन कुमार गुप्ता के अनुसार क्यूआर कोड से कुछ ही सेकंड में भुगतान हो जाता है। इससे नकदी और खुले पैसे की समस्या कम हुई है।
2: मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है ना। हम जैसे छोटे दुकानदारों को इससे बहुत फायदा हुआ है। पेमेंट में पहले होता था, खुदरा में बहुत समस्या आता था, 5 रुपए 10 रुपए ऐसे कस्टमर चले जाते थे। जो अब है कि पेमेंट करके जाते हैं, उधारी का समस्या और खुदरा का सबसे बड़ा जो टेंशन था वो खत्म हो गया है, तो बहुत फायदा हुआ है।
1: भारत में यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर खूंटी के लोगों और कारोबारियों ने इसे डिजिटल भुगतान में बड़ा बदलाव बताया है। स्थानीय लोगों के अनुसार सब्जी दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक क्यूआर कोड के जरिए भुगतान आसान हुआ है। इस अवसर पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया।
3: छुट्टे का प्रॉब्लम होता है तो यूपीआई के माध्यम से वो आसानी से हम भुगतान कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप सब्जी खरीदने जाएं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, भारत में हर कोने में सुदूरवर्ती गांवों में भी यूपीआई चल रहा है, तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है। आम लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है।

0: खासकर जो दुकानदार हैं, छोटे व्यवसायी हैं, वो काफी खुश हैं।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी 18 प्रखंडों में सखी मंडलों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी की पहल से महिलाओं को अपने उत्पाद सीधे बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। इससे ग्रामीण महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जिला प्रशासन ने लोगों से स्थानीय महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियां खरीदने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlert और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड सरकार केंद्र के MMDR एक्ट में किए गए संशोधनों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकती है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य के खनिज हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी और लोकतांत्रिक स्तर पर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि याचिका का मसौदा तैयार है और अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर सहमति जताई है। सरायकेला खरसावां आदित्यपुर में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे और अवैध प्लॉटिंग की तैयारी के मामले में अंचल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। गम्हरिया के अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि निरीक्षण में कोई पक्का या अवैध निर्माण नहीं मिला, लेकिन जमीन की साफ सफाई किए जाने की बात सामने आई।
2: राजस्व निरीक्षक और अमीन को निर्देशित किया जाके स्थल निरीक्षण किया गया है। अभी वहाँ पे कोई निर्माण नहीं कराया गया है, लेकिन साफ सफाई जैसा दिख रहा है उसके विशेष जांच करके और उस पे सरकारी जमीन पे बोर्ड लगाने का काम तुरंत किया जाएगा।
1: रांची में SSP के निर्देश पर चलाया जा रहे ऑपरेशन मुस्कान 2.0 के तहत पुलिस ने गुम और चोरी हुए 111 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। नवीन पुलिस केंद्र में आयोजित समारोह में बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए। पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने बताया कि तकनीकी सेल और थाना पुलिस ने समन्वित कार्रवाई करते हुए तकनीकी विश्लेषण के जरिए मोबाइल फोन को ट्रैक कर बरामद किया।
3: पिछले एक महीने में 100 से ज्यादा टोटल 111 मोबाइल रिकवर किए गए हैं। उसमें अलग अलग मीन्स का यूज किया गया है। जो रांची पुलिस की मोबाइल रिकवरी सेल है उसकी मदद लेते हुए टोटल 100 से अधिक लॉस्ट मोबाइल्स को रिकवर किया गया है। सबसे पहले जो हमारा अगर किसी का मोबाइल खो जाता है तो तुरंत ही आप लोग CIR पोर्टल पर रजिस्टर करिए, और पोर्टल पर रजिस्टर करने के साथ साथ आप दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप पुलिस स्टेशन आके अपने लॉस्ट मोबाइल की रिपोर्ट आप लिखवा सकते हैं।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,52,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये प्रति किलो है। दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के नोनीहाट में जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर के घर रसोईया का काम करने वाले युवक की मौत के मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। युवक का शव पंखे से लटकता मिला। मृतक के चाचा के आवेदन पर विधायक समेत परिवार के 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने कहा कि मौत को अभी हत्या या आत्महत्या नहीं माना जा सकता। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में सरायकेला खरसावां जिला शतरंज संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को दिसंबर में सरायकेला खरसावां में प्रस्तावित चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर शतरंज चैंपियनशिप के आयोजन की जानकारी दी। भारतीय शतरंज संघ और झारखंड शतरंज संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने वाली यह प्रतियोगिता स्मृति शेष पद्मश्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती को समर्पित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशभर के युवाओं को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत कल होगा खेलो इंडिया संवाद। कनाडा के वाणिज्य मंत्री ने जमशेदपुर NML में वैज्ञानिकों से किया संवाद। महत्वपूर्ण धातुओं के पुनर्चक्रण पर भारत कनाडा के बीच सहयोग पर चर्चा। परीक्षा विवादों के बीच JPSC

एसएसपी की सेवा शर्तों की होगी समीक्षा। 3 सदस्यीय समिति गठित। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, खनन एक्ट संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी झारखंड सरकार। और दिसंबर में सरायकेला खरसावां में होगी चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर शतरंज चैंपियनशिप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रतिनिधिमंडल ने दिया न्योता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी हम सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं गिरिजा देवी।

अभी हम सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार थी गिरिजा देवी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा।

अभी हम सुन रहे थे सुगम संगीत, इसके अंतर्गत हम सुन रहे थे कुछ गजलें। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे मिड डे न्यूज और ठीक इसके बाद हम सुनेंगे दोपहर समाचार। इसके लिए आइए आपको ले चलते हैं दिल्ली केंद्र पर।

0: Emancipation Movement. The memorial will honor the 31 Satyagrahis who were killed by Portuguese soldiers in 1955 while trying to enter Goa with demand for inclusion in India. The India Meteorological Department IMD has said that subdued rainfall activity is likely to continue over peninsula India during the next week. Heavy rainfall will prevail over Bihar, Chhattisgarh, eastern Uttar Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and northeastern states during the next 2 days. The Met Department has also predicted thunderstorms with lightning and gusty winds likely to prevail over Uttarakhand, eastern Rajasthan, Andhra Pradesh and Andaman and Nicobar Islands till Saturday. Parts of Delhi are expected to witness generally cloudy sky with possibility of very light to light rain tomorrow. Flood concerns have resurfaced in Odisha with the Mahanadi swelling following rainfall in its upper catchment areas in Chhattisgarh. We have more from a correspondent.
1: In Odisha, the flood situation remains a concern in several areas despite water levels in major rivers showing a receding trend. About 6,70,000 cubics of water reached Mundali in Cuttack following rainfall in the upper catchment areas, raising the possibility of a rise in Mahanadi levels. The Baitarani has flooded again in Bhadrak, with Chandbali witnessing its third flood. More than 1 lakh people remain affected across 6 districts with 79 rescue teams deployed. The state government has said presently no flood situation in the Salandhi, Subarnarekha and Brahmani rivers. The IMD has issued no rainfall warning for Odisha today but has forecast heavy rain tomorrow and very heavy rain at isolated places this weekend. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: In men's cricket, host Sri Lanka were 179 for 3 against India in the second innings on the fourth day of the second test in Colombo when reports last came in. Earlier, India enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in the first innings. Resuming the first innings at 265 for 8 this morning, the host managed to add only 25 runs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. Chief Minister Rekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries, and Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with tradition fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad, Eid Miladun Nabi, been celebrated in various parts of the country. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया, 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
3: India today stands as the fastest.
4: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
3: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
2: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा

0: बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
1: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन
2: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
1: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
0: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
4: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत, माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
5: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सिलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिन जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल।

0: हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट तथा आईसीएआर, एआईईए पीजी और एआईसीई पीएचडी 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दासगुप्त के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरुणमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दीं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाक पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में

0: अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की आगरा स्थित एडीआरडीई द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण।

ताजी हवा में फूलों की महक हो, पहली किरण में चिड़ियों की चहक हो। जब भी खोले आप अपनी पलकें, उन पलकों में बस खुशियों की चमक हो। आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती, रेडियो सखी सुप्रीता के साथ।

शान की आवाज में अभी हम सुन रहे थे फिल्म प्रेम रतन धन पायो से गाना। इरशाद कामिल के बोल थे और इस गाने की धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने। अगला गाना लीजिए सुनिए फिल्म दिलवाले से। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, प्रीतम के बोल हैं और इस गाने की धुन बनाई है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम जय भारती. कार्यक्रम जय भारती में लीजिए अगला गाना जो हमने लिया है, सुनिए फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से. लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है जतिन ललित का.

कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत लीजिए सुनिए फिल्म कयामत से कयामत तक से। उदित नारायण और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाजें हैं, मजहूर सुल्तानपुरी के बोल और संगीत है आनंद मिलंद का।

0: अभी हम सुन रहे थे फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल प्रगति मंच की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया डायलॉग को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले से 2-2 कॉलेजों के युवा हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को समझना और युवा नेतृत्व के जरिए विकसित भारत के निर्माण में उनके विचारों को शामिल करना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोगों से आग्रह किया है कि यदि उन्हें कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले या उसका संदेह होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचित करें। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए एक गंभीर आघात है। उन्होंने बेटियों के सपनों, अधिकारों और सुरक्षित भविष्य की रक्षा के लिए एकजुट होने और बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संसद द्वारा पारित खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को राज्य और देश हित में बताया है। श्री दास ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद के सहयोग से चल रही राज्य सरकार केंद्र द्वारा पारित विधेयक का दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक से अवैध खनन पर शिकंजा कसेगा और वैध खनन से राजस्व में वृद्धि होगी।
2: मैं कोयला, बालू, पत्थर, सिंडिकेटों के द्वारा आज पूरे राज्य में लूट मच रहा हूं।
1: भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत आज चतरा के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर से हुई। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने मां भद्रकाली का आशीर्वाद लेकर यात्रा को आगे बढ़ाया। उन्होंने छात्र और आम लोगों से भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए एकजुट होने की अपील की। साथ ही श्री महतो ने कहा कि पेपर लीक और भर्ती में अनियमित

0: महिलाओं के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मोबाइल से चंद सेकंड में होने वाला भुगतान न खुले पैसों की चिंता और न ही लंबी प्रक्रिया। भारत के डिजिटल भुगतान व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने 10 वर्ष का सफर तय कर लिया है। जामताड़ा के दुकानदारों ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर न केवल खुशी जताई है बल्कि केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है।
1: पहले लोगों का लेन देन जो है नोट के माध्यम से हुआ करता था, लेकिन जब से यूपीआई चालू हुआ है आज 10 साल हो चुके हैं उसको। ये मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूपीआई की वजह से लोगों के साथ पैसे लेन देन में दिक्कत नहीं होती है। कहीं भी जाइए आप, अगर आपके पास पैसे ले जाने में तो संकट रहता है, लेकिन यूपीआई है तो आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख कहीं भी लेन देन कर सकते हैं। आपको कैश ले जाने की आवश्यकता नहीं है।
0: राजधानी रांची समेत राज्यभर में आज पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी है। झारखंड समेत देशभर में आज मदर टेरेसा की 116वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने वर्ष 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और गरीब बीमार तथा वंचित लोगों की सेवा को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य बनाया। वर्ष 1979 में उन्हें मानवीय सेवा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी हम सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
0: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
0: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है

0: जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाशगंगा किसी दूधिया नदी की तरह स्तर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे, और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
1: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं। और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखा ही नहीं देता।
0: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में, जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
1: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
0: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गांव है लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ ना शोर है, ना ऊंची ऊंची इमारतें और ना शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाशगंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
1: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गांव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
0: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
1: अजीत जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गांवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है। यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
0: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ, विशेषकर हनले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है।
1: जी,
0: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
1: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
0: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब हनले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
1: जी अजीत जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
1: श्रोताओ, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
1: जी,
0: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
1: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों अजीत जी, अब समापन किया जाए?
0: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
1: जी,
0: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
1: जी,
0: हनले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति

0: शक्ति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है। बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
1: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हलने को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
0: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
1: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
4: आह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
6: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में।

0: कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
1: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात,
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
4: जी मैम। यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य है तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह।
0: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
4: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए

0: हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अरावली की कहानी एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी, शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया।

0: गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
1: माँ माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है।
2: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
3: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
2: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
3: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
0: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
3: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
4: जी हाँ।
3: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
5: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
4: हाँ, उपाय बताइए।
3: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
6: ग्राम सभा?
5: ठीक है।
6: हाँ हाँ, ठीक है।
3: समझे? और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
4: हाँ, तैयार है।
6: ठीक है।
3: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
7: जी, हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
8: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
3: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
9: वो कैसे?
10: क्या गड्ढा बनाना है?
11: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है,
5: फिर इसकी क्या जरूरत है?
9: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
3: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
5: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ।
11: हाँ हाँ, हमें भी बताओ।
3: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
5: सिंचाई टैंक?
3: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े, इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
10: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
4: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
0: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@cieet.in

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो रहे हैं। वक्त है प्रोग्राम रांची मेलोडीज का।

मीठी सी खुशबू गुलाब के साथ, थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ, आप सभी मुस्कुराते रहिए अपनी रेडियो सखी सुप्रीता के साथ। प्रोग्राम रांची मेलोडीज में, जिसमें बातों और गीतों के साथ है सावन की ढेर सारी बातें और सावन के कुछ गाने।

श्रोताओं, सावन का ये मौसम कुछ याद दिलाता है, किसी के साथ होने का एहसास दिलाता है। फिजा भी सर्द है, यादें भी ताजा है। ये मौसम तो किसी खास का प्यार दिल में जगाता है।

सावन के महीने की बात करें तो इसका महत्व प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। पुराणों में लिखा गया है कि समुद्र मंथन इसी महीने में हुआ था। यह महीना भक्ति के महीने के साथ ही जीवन का भी महीना है। इसमें किसान नए फसल उगाते हैं और प्रकृति भी मेहरबान रहती है। कुल मिलाकर यह मौसम पूरी सृष्टि के लिए खुशहाली लेकर आता है और प्यार तो इसमें पर्याप्त रहता है।

सावन खुद तो आया है, साथ में त्योहार भी लाया है। देखकर ये सावन की नजाकत मन खुशियों से भर आया है। क्यों? क्योंकि भाई बहन का सबसे प्यारा त्योहार सावन जो लाया है। जी हाँ, भाई बहन का एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा रिश्ता जो सभी रिश्तों से ऊपर है। इसमें रूठना, मनाना, फिर रूठना और फिर से मान जाना, इसलिए तो धागों से इस रिश्ते को हम बांधते हैं।

तुम्हारे मुंतजर रहते हैं सावन के हंसी झूले, किया करती है याद अक्सर तुम्हें बरसात सावन की।

सावन के मौसम की बात करें श्रोताओं, तो इस मौसम में धरती नई सी दिखने वाली चादर ओढ़नी शुरू कर देती है। ऐसा मौसम जिसमें हमारी संस्कृतियां घुली हुई हैं। बहनों, नजर उठाकर जहां भी देखेंगे या श्रोताओं, अब जहां जहां भी देखेंगे हर तरफ पृथ्वी स्नान में डूबी नजर आएगी। जगह जगह बिखरे पानी से लबालब तालाब अपने अल्हड़पन की कहानी सुनाएंगे। नई पत्तियां चमकते हुए तनकर पहला सलाम कर रही होंगी। यही तो खूबी है इस हरे भरे सावन की।

0: अभी हम सुन रहे थे रांची मेलोडीज, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया डायलॉग को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले से दो दो कॉलेजों के युवा हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को समझना और युवा नेतृत्व के जरिए विकसित भारत के निर्माण में उनके विचारों को शामिल करना है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत 3 दिवसीय आयोजन कल से शुरू होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजे गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संसद द्वारा पारित खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को राज्य और देश हित में बताया है। श्री दास ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद के सहयोग से चल रही राज्य सरकार केंद्र द्वारा पारित विधेयक का दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक से अवैध खनन पर शिकंजा कसेगा और वैध खनन से राजस्व में वृद्धि होगी। राजधानी रांची समेत राज्यभर में आज पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजधानी समेत विभिन्न जिलों में भव्य जुलूस निकाला गया। इस दौरान नाते पाक पेश की गई और पैगंबर हजरत मोहम्मद की जिंदगी, उनकी शिक्षाओं तथा इंसानियत, भाईचारे और अमन शांति के संदेश को याद किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि कुछ घंटों में चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी हम सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बढ़ते कदम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सुनेंगे भेंटवार्ता। विषय है अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस सदर अस्पताल रांची, साथ ही साथ अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर आधारित कार्यक्रम। भेंट वार्ताकार हैं आशीष कुमार, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अबुआ स्वास्थ्य योजना। भेंट करता है कमलेश कुमार मिश्रा और प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
2: नमस्कार, बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। कार्यक्रम के आज के इस अंक में हम बात करेंगे रांची सदर अस्पताल में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। हम बात करेंगे अबुआ स्वास्थ्य योजना की। हम बात करेंगे कैसे आज मुश्किल वक्त में सदर अस्पताल रांची हम सबके साथ है। और आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ रांची सदर अस्पताल से आयुष्मान भारत के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आशीष रंजन जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सदर अस्पताल रांची में दिन प्रतिदिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, किस तरीके से लोगों का विश्वास आज सदर अस्पताल रांची में बढ़ता जा रहा है और वो कौन कौन

0: स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो आम लोगों को दी जा रही हैं। आशीष जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू
0: आशीष जी। जैसे कि आज का हमारा विषय ही है कि हम आज अपने, यूं तो सभी जानते हैं कि आज अपने राज्य में जब एक बेहतरीन इलाज की बात करते हैं, पूरे देश में सदर अस्पताल रांची की बात होती है कि जिस तरीके से सदर अस्पताल अपने आप को मेंटेन करके चल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है और लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाने का काम कर रहा है, इसके लिए आप सभी पहले तो बधाई के पात्र हैं। और आज उन्हीं सुविधाओं को हम अपने श्रोताओं तक अपने कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही आज हमारा विषय है जो अबुआ स्वास्थ्य योजना है वो किस तरीके से आयुष्मान भारत में ही कनेक्ट करता है, और आप आयुष्मान भारत को देख रहे हैं, आप उसके स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, तो इन तमाम बिंदुओं पे आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब सदर अस्पताल की बात करते हैं तो आज वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आम लोगों के लिए वहां पे उपलब्ध है।
1: जी, पहले तो थैंक यू सदर अस्पताल के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। आज के डेट में सदर अस्पताल में ना सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहले और आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें तो सदर अस्पताल में पूर्व में आप एक मदर और चाइल्ड फैसिलिटी हुआ करता था, लेकिन आज सदर के पास ऑर्थोपेडिक्स है, सदर के पास आज इतना ICU है, न्यूरो सर्जरी हम कर रहे हैं, ऑन्कोलॉजी की जो पेशेंट बाहर जाते थे, रांची से बाहर जाते थे, वो सारे पेशेंट का इलाज निशुल्क हमारे अस्पताल में आयुष्मान और अबुआ स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत हो रहा है। और एक और अपडेट इसमें देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत जल्द हम कैथ लैब का काम ऑलरेडी संचालित है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ऑलरेडी कार्य प्रकृति पे है। तो ऐसी सुविधाएं जिसके लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, रांची से बाहर या रिम्स में कतार में लगनी पड़ती थी, उससे कुछ हद तक, मैं रिम्स से कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुत हद तक निजात मिल पाएगी सुविधाएं बढ़ने से।
0: निश्चित तौर पे, क्योंकि रिम्स तो वो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है तो वहां पे तो बहुत क्राउड होता है। ऐसे में अगर आपके शहर पे सदर अस्पताल इस तरह की सुविधा दे रहा है तो लोगों को एक सुविधा मिल जाती है।
1: बिल्कुल।
0: किस तरीके से आप लोग, क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, मैनेजमेंट काम करता है, हम बहुत जगह अस्पताल देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से सदर अस्पताल रांची दिन प्रतिदिन अपनी चीजों को बेहतर कर रहा है और जब पेशेंट से भी हम मिलते हैं तो उनके चेहरे पे भी खुशी मिलती है, तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, आप लोग किस तरीके से सदर अस्पताल रांची को मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं?
1: सर, सबसे पहली चीज है कि किसी भी अस्पताल में एक लीडर, जो हमारे लीडर DC सर और सिविल सर्जन सर, DS सर, इनका एक विजन है कि अस्पताल में मरीजों को, जो हमारे पास आए मरीज, उनको निजी अस्पताल में भटकना ना पड़े। अगर उनकी ये सुविधा, क्योंकि जो सदर अस्पताल में आ रहे हैं बहुत, उसके 90% लोग आयुष्मान या अबुआ के से लाभार्थी हैं, तो अगर उनको सुविधा एक जगह मिल जाएगी तो उनको निजी अस्पताल में भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज कि अगर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं हमारे यहाँ और वो कतार में लगे रहते हैं, तो वो अगर वो सुविधाएं उनको हम एक जगह मुहैया करा पाए और उनका समय को बचा पाए, जिससे उनको भी एक अच्छा रिस्पांस मिलता है। रही बात सर्विसेज बढ़ाने के लिए, सही कहा आपने कि एक सर्विस को स्टार्ट करने के लिए बहुत चीज की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन बहुत बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो उसी के क्रम में जब हम कोई भी डिपार्टमेंट को स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने कुछ दिन सुना होगा, एक साल पहले न्यूरो सर्जरी, 6 महीने से 7 महीने हुए न्यूरो सर्जरी स्टार्ट किया, तो हमने एक विजन लेके चला था कि हमने एक इंटरव्यू निकाला, डॉक्टर्स को नियुक्त किया कि और केस बेसिस पे नियुक्त किया, वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बताई कि हमें उनको इम्प्लांट, जैसे आपको पता होगा कि एक न्यूरो सर्जरी होता है तो उसमें इम्प्लांट्स होते हैं, तो इम्प्लांट्स का अरेंजमेंट करना, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर आप करें तो जीरो से एक डिपार्टमेंट को खड़ा करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें हमने उनसे बात करके पहले उनसे सारी जानकारी प्राप्त की, फिर हमारी टीम ने उस सारी जानकारियों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप में जो भी काम होता है वो रेट कॉन्ट्रैक्ट से होता है, आप ऐसे उठ के मजार से हम ले नहीं सकते, तो हमारी टीम ने उस सारे का रेट कॉन्ट्रैक्ट निकाला। अब जो मरीज आया, रहा कि मरीज को ये बताना कि हमारे यहाँ ये सुविधाएं हैं, तो हमारी टीम उस वे में काम की कि हाँ, सदर अस्पताल में आप जाएंगे तो आपको ये सुविधाएं मिलने लगेगी। तो एक विजन है जो हमारी राज्य सरकार का है कि मरीज को कहीं भटकना ना पड़े, मरीज को अपने संस्थान से कहीं रेफरल ना होना पड़े। अगर मरीज सदर में आए तो उनको गुणवत्ता पूर्व, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक मरीज आता है, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। अगर मरीज में एक बार दिमाग में ये बात आ जाती है कि हम यहाँ आएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, तो आधा ठीक तो ऐसे हो जाता है। तो सबसे बड़ा चीज होता है एक अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स और पाराकर्मी, तो हम इस कमी को दूर करना चाहते हैं। डॉक्टर्स अगर खुद से पेशेंट्स को

0: देखते हैं, समय देते हैं, तो चीजें अच्छी जाने लगती है। मैनेजमेंट का काम, बैकएंड जो ऑफिस बोलते हैं हम उसको, उनका काम होता है कि डॉक्टर्स को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, तो हमारी टीम उस पर मिलकर काम करती है। उसमें बहुत हद तक जो सबसे बड़ा रोल होता है हमारे उपायुक्त महोदय का, सिविल सर्जन महोदय का, और जिला अस्पताल का संचालन के लिए उपाधीक्षक महोदय का।
1: मैं एक बात को रखना चाहूंगा, और कि जब पहले कि अगर हम आज से कुछ वर्षों पहले की हम बात करें, सो लोगों का वो भरोसा नहीं हो पाता था कि सरकारी अस्पताल में हम जाएंगे और हम इलाज कराएंगे। लोगों को लगता था कि भाई हम पैसे दे देंगे लेकिन बाहर दिखा लेंगे। लेकिन आज जो परिदृश्य है, आज जिस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं पे काम कर रही हैं, तो एक जो माइंडसेट था वो तो बिल्कुल बदला है। और ये एक
0: बिल्कुल
1: बहुत बड़ा उदाहरण है कि लोग इस भरोसे से जाएं कि नहीं, मुझे तो सदर अस्पताल में जाके इसका इलाज कराना है। तो ये जो
0: बिल्कुल
1: चेंजेस, ये चेंजेस कैसा आप देख पा रहे हैं सदर अस्पताल में?
0: सर, इसमें दो तरीके देखेंगे। पहले, सदर अस्पताल से डॉक्टर जुड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। हमको आज की डेट में सदर अस्पताल से, आप देखे होंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर जुड़ना चाहते हैं, अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो एक, जब डॉक्टर्स का भरोसा सदर पे हुआ तो मरीजों का भरोसा हुआ सदर पे। दूसरा, जब सदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोला कि कुछ साल पहले देखिए सदर अस्पताल 21-22 में 200 बेड का था, आज 25-26 में होते खत्म होते होते, नए साल स्टार्ट होते, 850 बेड का हो गया,
1: 850 बेड हैं अभी सदर अस्पताल
0: सौ
1: में।
0: बेड। और आज के डेट में जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो इस बात की देखेंगे तो सदर अस्पताल में 850 बेड में 800 से ज्यादा बेड ऑक्यूपाइड है। तो
1: यानी ये
0: सुविधाएं बढ़ रही हैं। चीजों को एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। जब हमने ऑनकोलॉजी वार्ड, कैंसर वार्ड स्टार्ट किया तो हमने एक डॉक्टर्स को अपॉइंट किए, उसके बाद हमने 14 बेड से स्टार्ट किया, 14 बेड से फिर वो हम 30 बेड पे गए, 30 से 40 पे गए, और आज के डेट में कैंसर के 120 बेड है। और ऐसी स्थिति है कि कैंसर में बेड मिलाना दिलाना मतलब फुल्ली पैक चलता है।
1: ये एक बहुत बड़ी बात है, मींस कि शहर में कैंसर का इलाज हो रहा है, वो भी इतने कम दरों में, मतलब इतने कम दर, क्या नहीं के बराबर दर पे आपका इलाज
0: इनफैक्ट
1: हो रहा
0: हम ये कहेंगे कि उनके पास अगर आयुष्मान या भुआ स्वास्थ्य कार्ड है तो हम उनका निःशुल्क इलाज हो रहा है।
1: है। आप
0: तो
1: इसे थोड़ा और डिटेल में आशीष जी मैं चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात आपने बताई कि 120 बेड्स हैं और आज मतलब बेड की कमी हो जा रही है, यानी लोगों का वो भरोसा कैंसर जैसे बीमारी पे अगर सदर अस्पताल में जगह है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
0: सर, कैंसर की सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि कैंसर का इलाज हमारे कुछ सेलेक्टिव हॉस्पिटल्स में ही थे, और वो इलाज अपने हिसाब से करते थे, और रिम्स में भी कैंसर का था, लेकिन रिम्स ओवरबर्डन है, रिम्स में पूरे राज्य, इनफैक्ट दूसरे राज्यों से मरीज आ रहे हैं।
1: बिलाते हैं, बिल्कुल।
0: तो हमारे पास जब ये हमने इस विजन को लेकर स्टार्ट किया कि हम अपने यहाँ कैंसर के फैसिलिटी करें, तो हमने बोला कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमने डॉक्टर की इंटरव्यू निकाली, डॉक्टर गुंजेश हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। तो जब हमने इनकी बहाली की एक विजन के साथ कि 14 बेड से स्टार्ट करते हैं, जब 14 बेड से आज वो तीन ओपीडी उनकी रहती है तो ऐसी रहती है कि ओपीडी में कतार रहती है लोगों की, उनकी ओपीडी स्टार्ट होती है और रात के 9-9 बजे रात तक ओपीडी चलती है। लोग बाहर से कीमो के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं, और इनफैक्ट कीमो के साथ साथ सर्जरी के लिए हमारे पास ऑनको सर्जन, लोग बाहर जाते थे, एम्स रांची से बाहर गए या रिम्स में गए या रिम्स से प्रतीक्षा कर रहे हैं सर्जरी कराने के लिए। तो आज के डेट में इस स्थिति पे है कि लोगों को वो प्रतीक्षा से कुछ हद तक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम हो जाता है, लेकिन कुछ हद तक निजात तो मिल पा रहा है कीमो का, पेशेंट्स को कीमो के लिए रांची से बाहर या कहीं और जा रहे हैं या निजी अस्पतालों में जा रहे हैं, उनको वहां उसकी शुल्क देना पड़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ वो आते हैं तो आयुष्मान से उनको इलाज निःशुल्क, या अबुआ स्वास्थ्य कार्ड से, अबुआ आयुष्मान दोनों से मैं ये कहूंगा निःशुल्क हो रहा है, उनको किसी प्रकार की राशि का दया नहीं हो रहा है।
1: नहीं, बिल्कुल। इन दोनों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे ताकि हमारे श्रोता इस बात को समझ सके, लेकिन मैं इस बात, आपने जो बात कही उस पर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँ कि मैंने ये खुद देखा कि बाहर से, वो विलोर से, मैं वहां पे सदर अस्पताल किसी काम से गया था और वहां पे मैंने देखा कि वो व्यक्ति बाहर से लौट कर, अब विलोर से वो लौटे थे और फिर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कैंसर का यहाँ सदर अस्पताल में कंटिन्यू किया। मैंने उनसे बात की कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी का कोई इशू था, उन्होंने दो चीजों को बताया जो समझ में आया कि एक बदलाव नजर आ रहा है। एक तो उन्होंने बताया कि बाहर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वहां पे खर्च कर सकते थे,
0: बिल्कुल
1: तो जाके भी उनको वापस आना पड़ा क्योंकि वो उनके दायरे में था ही नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: दूसरा कि जो वो यहाँ पे आए और जब एक समय बिताया, पैसे से तो उनको हेल्प हो गया क्योंकि उनके उनको अबुआ स्वास्थ्य योजना का लाभ मिला हुआ था,
0: बिल्कुल
1: लेकिन उन्हें बताया कि जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं वो उनके लिए भगवान के समान है क्योंकि उनकी पत्नी में बहुत फर्क आ चुका और पहले से बहुत स्वस्थ है।

0: तो इसमें एक चीज हमें और समझनी होगी, जैसे कोई रांची लाभार्थी हो या ग्रामीण एरिया से आता है,
1: जी
0: वो पहले उनको आयुष्मान दे दे या उनका इलाज आयुष्मान से हो जाएगा, वो राज्य बाहर चलेगा, लेकिन जाने आने का खर्च, रहने का खर्च, वो अतिरिक्त भार उनके परिवार, एक मरीज जब बीमार होता है ना, उसका पूरा परिवार बीमार हो जाता है। अगर हम उसकी सुविधाएं उनके नजदीक क्षेत्र में ही करा दें, या अगर आज के डेट में सदर अस्पताल से सिर्फ सदर रांची जिले के पेशेंट नहीं आते हैं, आज के डेट में यहाँ वेस्ट बंगाल का मरीज बहुत हद तक, आप देखोगे कैंसर में बिहार के मरीज हमारे यहाँ आ रहे हैं, और झारखंड के सटे हुए जितने जिले हैं, या झारखंड हम कहें तो मैक्सिमम बहुत सारे जिले से पेशेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं, और इस उम्मीद से आ रहे हैं कि भाई हमको रांची से, झारखंड से बाहर नहीं जाना
1: बाहर
0: पड़ेगा,
1: नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए
0: और
1: हर
0: उनको
1: चीजें
0: ये
1: आसान
0: है ना
1: होंगी।
0: कि इलाज इलाज तो निःशुल्क हो ही रहा होगा, हो सकता है वहां पे भी आयुष्मान से हो जाए, लेकिन जाने आने की चीजें में उनका जो भाड़ा का खर्चा होता है
1: बहुत
0: वो एक
1: खर्च है,
0: बच रहा है,
1: रहने
0: एक
1: का
0: परिवार
1: खर्च
0: के
1: है,
0: रहने का खर्च है। बिल्कुल
1: केयर करने के लिए ज्यादा आदमी बाहर नहीं रह सकते हैं, झारखंड में है अपने घर के पास में, तो वो आना जाना कर सकते हैं, तो बहुत चीजों का। मैं एक बात को और समझना चाहूंगा, क्योंकि हम आज दो चीजों को लेकर चल रहे हैं आपसे डिटेल में, हम लोग अब स्वास्थ्य पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुविधाओं पे बात कर रहे हैं। हमने देखा कि आपके यहाँ पे डायलिसिस भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इसके बारे में बताएं।
0: सर, हमारे यहाँ 10 बेड का डायलिसिस यूनिट है, जिसमें 4 शिफ्ट में, चाहे एक डायलिसिस 4-4 घंटे की होती है, 4-4 शिफ्ट में कर रही है, और अच्छे से वो मरीजों का लाभ मिल रहा है उनको, निःशुल्क है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पूरे झारखंड में सबसे कम न्यूनतम दर पे, अगर जिनके पास, एक तो मैक्सिमम लोगों के पास आयुष्मान कार्ड
1: आयुष्मान
0: है,
1: है,
0: अगर नहीं भी है तो उनको मिनिमम दर में जिनको वो निःशुल्क जांच के साथ सब चीज मिल जाता है, सुविधाएं मिल जाती है, तो लोग आते हैं। और हमारे यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं, उनका ओपिनियन भी हो जाता है, फिजिशियन है, उनकी देखरेख में हो जाता है, तो एक अच्छा टीम वो है जिससे उनको रियल टाइम में डायलिसिस की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: साथ ही पहले में, क्योंकि एक चीज था जो हमेशा शिकायत रही लोगों की, वो रहते थे कि जो जांच होता है तो जांच का जो रिपोर्ट है वो बहुत बढ़िया नहीं आ पाता है, जब हम लोग सरकारी अस्पतालों की बात करते थे, लेकिन आज सदर अस्पताल में लैब को आपने वेल इक्विप्ड किया है।
0: बिल्कुल सर, उसमें मैं बताता हूँ, हमने लैब को सब, किसी भी अस्पताल का ना बेस अस्पताल का उसका लैब होता है, पर अस्पताल में जांचें होंगी तो सही रियल टाइम में जाता है, हमने इसको अपग्रेड किया। आज जैसे आप निजी अस्पतालों में देखते होंगे ना, रिपोर्ट आया उनके व्हाट्सएप पे, या निजी लैब में देखते होंगे कि सैंपल कलेक्ट किया, उनके लैब के व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आ जाता है, यही चीज को हमने सदर पे इम्प्लीमेंट किया। अगर कोई ओपीडी में मरीज टेस्ट कराता है तो उनके व्हाट्सएप पे उनको रिपोर्ट चला जाएगा, आईपीडी में अगर मरीज गया तो पेशेंट को कहीं नहीं जाना है, अटेंडेंट के पास लैब टेक्नीशियन आता है, समय पे रिपोर्ट लेता है, और हमने उसका एक यूजर क्रेडेंशियल वार्ड को दिया हुआ है, वो अपना लॉगिन करता है, उनका रिपोर्ट डाउनलोड कर लेता है, तो एक तो टाइम की बचत, दूसरा गुणवत्तापूर्व। एक मैं इसमें और अपडेट करूंगा कि पहला सरकारी अस्पताल का लैब है जो एनएबीएल अप्रूव्ड है, आपने सुना होगा एनएबीएल मानक में सबसे बड़ा मानक होता है, जो बहुत निजी लैब के पास ही होता है, सिर्फ सदर अस्पताल रांची में ऐसा अस्पताल है जिनका अपना लैब एनएबीएल अप्रूव्ड है।
1: तो इससे एक नेक्स्ट लेवल जो हम कहते हैं कि एक सेटिस्फेक्शन लोगों को मिलता है कि हाँ भाई मेरा रिपोर्ट अच्छा हमें मिल रहा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वो सदर अस्पताल प्रोवाइड कर रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सो कैसे आप लोग अश्योर कर रहे हैं, आज ईएनटी की हम बात कर ले तो वो भी आपके अस्पताल में है, गायनों की बात कर ले वो भी
0: बिल्कुल
1: आपके
0: बिल्कुल
1: अस्पताल में है,
0: बिल्कुल
1: स्पेशलाइज और क्या क्या चीजें हैं सदर अस्पताल में?
0: स्पेशलाइज्ड में, जैसे सुपर स्पेशलाइज्ड में हम बात करें कि कैंसर की इलाज हमारे अस्पताल में है, किडनी से संबंधित इलाज हमारे है, गैस्ट्रो से संबंधित इलाज हमारे यहाँ है, कार्डियोलॉजी में अभी इलाज हो रहा है, सिर्फ एक सर्जरी जो प्रक्रियाधीन है, हमारा प्रयास है कि 3 से 4 महीनों में उसको भी आरंभ कर ले, उसके बाद पीडियाट्रिक्स से संबंधित सारा इलाज है हमारे यहाँ, तो सर्जरी से लेके सारा है, न्यूरो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, तो ये सारी सुविधाएं सदर अस्पताल में उपलब्ध है।
1: एक चीज आशीष जी, आप, मैं चाहूंगा कि आप वो भी हमारे श्रोताओं को बताएं कि बहुत सारे हमने प्रचार देखे या लोग भी सुनेंगे आभा कार्ड के बारे में, और हमने देखा कि सदर अस्पताल में भी एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो आ रहे हैं तो हमने कहा कि भाई आप लाइन पे नहीं लगे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि हमें लाइन पे लगने की जरूरत है नहीं, हमने तो अपना अपॉइंटमेंट लगा लिया सदर अस्पताल में। सो ये क्या है,
0: स्कैन एंड शेयर बोलते हैं हम उसको, एबीडीएम के अंतर्गत, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत ये आता है, जिसमें एक है कि आप आएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास था, हमारे यहाँ QR कोड है, इसको हमने डिजिटलाइज अपने वेबसाइट पे भी डाला है, आप उसको स्कैन करेंगे, आप उसमें अपना डिटेल्स ऑटोमेटिकली भरा रहेगा आपका, और आपको एक टोकन नंबर आ जाएगा, तो आपको क्यू में नहीं लगना है, आप जाएं, आप काउंटर में अपना टोकन नंबर बताएं, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। हम लोग इसका अपग्रेड वर्जन में भी जा रहे हैं कि आपको प्रिस्क्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन

0: बुकिंग करेंगे और आप डायरेक्ट जिस डॉक्टर से दिखाना है, जैसे सर्जरी या मैं दिखाना है आपको, आप सर्जरी ओपीडी में जाएंगे, अपना टोकन नंबर उनको बताएंगे, वो डायरेक्ट आपको एडवाइस कर देंगे। तो बीच के चैनल्स को, हडल्स को, जैसे उनको क्यू में नहीं लगना पड़े, डॉक्टर्स के पॉइंट ऑलरेडी उनको पता चल जाएगा कि अपॉइंटमेंट नंबर मेरा कितना है, उस हिसाब से वो जा सकते हैं। अभी हम, क्योंकि हमारा अस्पताल सरकारी अस्पताल है, बहुत लोग एडुकेटेड उस लेवल पे नहीं होते, इसीलिए हमने ये दोनों सब सुविधाएं अपने पास रखी है कि जिनको क्यू में लगना है क्यू में करा ले। लेकिन आज के डेट में जानकर आपको ताज्जुब होगा कि अगर हमारे यहाँ 1500 पीडी है तो 1250 लोग स्कैन एंड शेयर के माध्यम से आ रहे हैं, जिससे उनका टाइम बच रहा है, जिससे सरल तरीके से हो पा रहा है,
1: परेशान नहीं होना है, लाइन खड़े नहीं रहना है,
0: बिल्कुल
1: उनको पता है कहाँ पे जाना है, या उनको एक आइडिया है कि मेरा टोकन नंबर है तो मैं इतने बजे तक जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा।
0: जैसे हमारे यहाँ मिनिमम टेस्ट का या शुल्क लगता है ओपीडी में, हमने स्कैन एंड पे का भी ऑप्शन दे दिया है कि मरीज को ऐसा कोई बरगला ना सके कि हाँ इसमें पेमेंट कीजिए, इसमें पेमेंट कीजिए। सरकारी क्यूआर कोड है, आप जैसा स्कैन करेंगे सदर हॉस्पिटल रांची का, आपको क्यूआर आ जाएगा, आप पेमेंट के समय में आप डालें और ऑटोमेटिकली वो खाता में जाएगा, आपको वेरीफाइड हो जाएगा कि आप सरकारी खाते में पैसा पेमेंट करें, जो मिनिमम से मिनिमम है।
1: ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आपने बताया, तो जहां तक मुझे इसमें जानकारी कि ये एक तरह का आपका डिजिटल डाटा बेस भी है कि आपका जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, वो भी एक जगह पे आ जाती है आपको अलग से।
0: इसीलिए वो आभा कार्ड की जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो आभा कार्ड वही होता है, जैसे आप आभा ऐप डाउनलोड करेंगे, आपने उसमें क्यूआर अपना प्रिस्क्रिप्शन बनाया, डॉक्टर्स जैसे आपको एडवाइस करेंगे ओपीडी में, तो वो जैसे वो सेव करके सबमिट करेंगे ना, तो आपका ई प्रिस्क्रिप्शन ऑटो जनरेटेड हो जाएगा, जो रिकॉर्ड कीपिंग बोलते हैं। कोई मरीज अगर एडमिट होता है और एबीडीएम कंप्लाइंट सॉफ्टवेयर वो अस्पताल यूज कर रहा है, जो कि अभी हम लोग रांची में आयुष्मान योजना के अंदर बहुत सारे अस्पताल को एबीडीएम कंप्लाइंट सॉफ्टवेयर के लिए बाध्य, मतलब बाध्य नहीं कहूंगा मैं, बोलूंगा कि उनसे अनुरोध किया है
1: कि आप इसको
0: यूज करें, कि मरीजों का रिकॉर्ड एक तरह से डिजिटलाइज हो जाए, जैसे डिजी लॉकर है, तो हमारा डिजी लॉकर में क्या होता है कि हम अपना सारा डॉक्यूमेंट उसमें सेव किए हैं, उसी तरह ये आभा कार्ड है, आभा नंबर जनरेट होता है, वो आभा नंबर में सारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। आप किसी भी अस्पताल में, भगवान ना करे अगर आपको जरूरत पड़ती है जाते हैं, आप उनको अपना आभार कार्ड देंगे, वो आपसे एक ओटीपी लेंगे आपका, और वो एक्सेस कर लेंगे कि आपने लास्ट में कहां दिखाया था और उसने क्या क्या एडवाइस दिया। तो किसी भी डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पास्ट हिस्ट्री, कि उनको उस समय क्या एडवाइस हुआ था, कोई एलर्जी तो नहीं है, जिससे टाइम बचेगा और डायग्नोसिस इजी ग्रो में हो जाएगा।
1: यानी इस जगह पे लोगों को भी अवेयर होना होगा, एक
0: बिल्कुल
1: अच्छी सुविधा है। जब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की भी हम बात करते हैं और जो आभा कार्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये अगर मान लीजिए किसी को बनाना है, क्योंकि आपने, जैसे हम सभी जानते हैं कि हर कोई इतना सक्षम नहीं है कि हो सकता है कि वो एंड्रॉइड यूज ही कर रहा हो या एंड्रॉइड से कर ले।
0: हमारे उसके लिए दो चीज है, आभा कार्ड से इलाज नहीं होता, आभा कार्ड आपका रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। आप अगर आप खुद से नहीं बना पाते तो आप किसी भी निजी सरकारी अस्पताल या किसी भी अस्पताल में जाएंगे ना, सूचीबद्ध आयुष्मान अस्पताल, वहां जाके आप उनको सिर्फ, वहां आयुष्मान मित्र रहता है या कंप्यूटर ऑपरेटर्स रहते हैं, आप उनको बोलेंगे हमको आभा कार्ड बनाना है, वो हाथों हाथ आपको बना के आपका आभा कार्ड दे देगा। बहुत सरल है और विद इन अ मिनट आपका आभा कार्ड जनरेट हो जाएगा, और ये हर लोगों के लिए है, जैसे आयुष्मान है, आप अगर आप आयुष्मान कार्ड बनाते हैं तो उसमें भी आभा कार्ड नंबर आ जाता है, तो अगर आप आयुष्मान लाभार्थी हैं तो आप कृपया अपना आयुष्मान कार्ड बना लें। इसकी प्रतीक्षा ना करें कि हम, मेरा आयुष्मान जब हम एडमिट होगा तब हम आयुष्मान बनाएंगे, ये आप पहले से बना के रख लें कि भगवान ना करे या खुदा ना खास्ता आपको वहां जाना पड़े तो आपके परिजनों के पास वो कार्ड हो कि हाँ इलाज मेरा इससे करवा सकते हैं।
1: बिल्कुल। एक तो आज हम अपने श्रोताओं को बताएं कि कार्यक्रम बढ़ते कदम में हमारे साथ आशीष रंजन है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है और आयुष्मान भारत देख रहे हैं, और ये तमाम जो कोशिशें हैं सदर अस्पताल की, या हम सरकार की बात करें, सिविल सर्जन की बात करें, उपायुक्त की बात करें, उसका ही एक परिणाम है कि आज सदर अस्पताल रांची एक उदाहरण के तौर पे लोग उसे देख रहे हैं कि वो आम लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं आशीष जी आपसे अब ये समझना चाहूंगा, जो बहुत जरूरी है और बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को इससे फायदा हो रहा है, वो है अबुआ स्वास्थ्य योजना।
0: बिल्कुल।
1: तो ये पहले तो मैं, क्योंकि अबुआ स्वास्थ्य योजना भी स्वास्थ्य के लिए है और जो कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, और आयुष्मान भारत योजना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो थोड़ा
0: केंद्र और राज्य सरकार दोनों
1: की तरफ से चलाई जा रही है, दोनों का सहयोग है, थोड़ा इसे आप समझाएं कि कब हम आयुष्मान भारत के अंतर्गत आते हैं और कब हम अबुआ स्वास्थ्य में चले।
0: अबुआ आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप जैसे राशन कार्ड होल्डर हैं या राशन कार्ड के लाभार्थी हैं तो अपना आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार आयुष्मान में 5 लाख तक का लाभ मिल रहा है,

0: अब वह स्वास्थ्य के अंतर्गत आपको वही 10 लाख का अतिरिक्त लाभ मिलता है, जो आप झारखंड में होगा आप देखते होंगे कि 15 लाख तक का लाभ। तो अब वह स्वास्थ्य आने से जो 5 लाख तक का लाभ था वो बढ़कर 15 लाख में चला गया।
1: यानी
0: तो आज के डेट में सबसे बड़ी चीज का फायदा ये हुआ कि कीमो ड्रग जो पहले 1 लाख 2 लाख 3 लाख में होता है, तो एक जैसे किसको 6 कीमो कराना है, 5 लाख का स्लैब था, तो सरकार ने ये देखा कि जब अगर इनको 6 कीमो कराना तो 5 लाख तो 2 बार में खत्म हो गया। तो सरकार ने उस वे में सोचा कि अगर इसको 10 लाख का टॉपअप लग जाएगा अबुआ स्वास्थ्य के तहत, तो इसका कीमो का पूरा पैकेज कम्प्लीट हो जा रहा है, उसका निःशुल्क लग रहा है। तो इससे बहुत लाभ मिल रहे हैं लोगों को राज्य सरकार की इस योजना से।
1: यानी इसको इस तरीके से समझे कि अगर पहले किसी को किडनी से संबंधित बीमारी थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और मान लीजिए कि उसका खर्च अगर 7 लाख हो रहा था तो 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत देता, बाकी 2 लाख उसे देना पड़ता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन जब राज्य सरकार ने अपना एडिशनल उसमें अबुआ स्वास्थ्य योजना ला दिया, तो अब वो क्या हो गया कि अगर 7 लाख के अगर 10 लाख भी खर्च हो रहा है,
0: बिल्कुल
1: 15 लाख तक भी खर्च हो रहा है, तो वो सब उस कार्ड के अबुआ स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आ जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए कोई अलग से कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, आपका आयुष्मान कार्ड से ही इलाज निशुल्क हो जाएगा,
1: वो उसी पे आगे क्या रिफर हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो कितना इससे एक लाभ नजर आया राज्य में, आप सदर अस्पताल में?
0: मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ना कि कैंसर मरीज को उनका इम्यूनोथेरेपी जो होता है ना, जो कैंसर फोर्थ स्टेज के पेशेंट्स होते हैं उनका वो आप बंद नहीं कर सकते हैं, और एक इंजेक्शन जो कीमो उनका जो चलता है वो मोटा मोटी 4 से 5 लाख 2 लाख जैसे जैसे ड्रग्स होते हैं उस हिसाब से चलता है। तो और वो ऐसा है कि हर वीकली वीक में एक बार, महीने में 4 बार लग रहा है, तो अगर उनका 1.5 लाख का भी मान लेते हैं तो 5 लाख तो 3 बार में खत्म हो गया। तो अगर ये अगर पैकेज जुड़ गया और उसका कोर्स कंप्लीट हो गया, तो एक मरीज को जो 5 लाख में लिमिट था आज वो निशुल्क निश्चिंत होकर वो कर रहा है कि मेरा 15 लाख है, मेरा इलाज तो निशुल्क हो जाएगा। तो उनके दिमाग में भी एक माइंडसेट है कि मेरा 5 लाख खर्चा हो गया तो 10 लाख है मेरे पास।
1: बिल्कुल। यानी एक तो बहुत बड़ा बदलाव इससे ये भी है कि जो एक लोगों, एक तो बीमारी लोगों को मारती है, बीमारी के बाद जो एक आर्थिक प्रेशर उनके अंदर आता है कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, और वो तो आधा वहीं पे बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में अबुआ स्वास्थ्य योजना एक बहुत बड़ा मददगार साबित हो रहा है कि वो उन सब चीजों से उनको फ्री कर दिया।
0: बिल्कुल।
1: आशीष जी, इसमें थोड़ा सा इसको और ऐड करते हैं ताकि लोगों की जानकारी मिले। जब आज हम सदर अस्पताल की बात कर रहे हैं, हमने अबुआ स्वास्थ्य की बात की है, एक योजना है मुख्यमंत्री गंभीर राहत योजना,
0: गंभीर बीमारी योजना।
1: हाँ, गंभीर बीमारी योजना। तो फिर ये क्या है इसका लाभ?
0: जिनके मैं इसमें सरल कर देता हूँ, गंभीर बीमारी योजना उसके लिए है कि कोई ऐसा जैसे आयुष्मान में या इसमें आपने देखा होगा इसमें अबुआ स्वास्थ्य योजना में पैकेज का निर्धारण किया हुआ है। ठीक। इस पैकेज के अलावा अगर कोई मरीज को दवा पड़ती है जो हमारे पैकेज में आयुष्मान या गंभीर बीमारी योजना में नहीं है, तो उससे वो लाभ मिल सकता है। दूसरा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, अबुआ और आयुष्मान में तो राशन कार्ड लाभार्थी है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है और वो सरकार ने बोला कि 8 लाख का आय से उनका कम है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो सरकार ने ये योजना अभी चला उस वे में रखी हुई है कि जिनके पास ये नहीं है, आप उस हिसाब से आपको अपने जिले के सिविल सर्जन के माध्यम से इतना का आवंटन मिल सकता है।
1: तो इसमें कहाँ तक पैसे उपलब्ध होते हैं?
0: इसका 5 लाख तक राज्य सरकार के जिला सिविल सर्जन के पास अधिकार होता है, 5 से 10 लाख तक राज्य के राज्य में जसास करके हमारे है वहाँ से मिलता है, और अगर उससे ऊपर की खर्च होती है कैबिनेट में जाता है अनुमोदन के लिए।
1: ये भी एक बहुत बड़ी राहत है।
0: बड़ी राहत।
1: यानी वो लोग जो लाल कार्ड धारी नहीं है या वो लोग जिनके पास में राशन नहीं है, वैसे लोग को अगर ऐसी कभी जरूरत पड़ जाती है तो फिर ये मुख्यमंत्री गंभीर राहत योजना उनको मदद पहुंचाती है। क्या एक मैसेज आप राज्य के लोगों को देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग बढ़ते कदम कार्यक्रम में आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप?
0: सबसे बड़ा मैसेज मेरे लिए होगा कि अगर आप आयुष्मान अबुआ के लाभार्थी हैं तो कृपया अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनाए, उसकी प्रतीक्षा ना करें कि जब जरूरत हो तब बनाए, बना के रखने में कोई बुराई नहीं है। अगर कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ती है निश्चिंत होकर इसको यूज करें। अगर कोई भी आदमी आपसे जांच के क्रम में राशि की मांग करता है, आप निशुल्क नंबर है 1-1-4-5-5-5 निशुल्क फोन कर सकते हैं। आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका, अगर आप उस नंबर पर फोन करेंगे कि आपको जो बीमारी हो रही है बताएंगे, तो आपको निःशुल्क इलाज हो जाएगा।
1: एक बार नंबर आपको और रिपीट कर दे।
0: 1-4-5-5-5 इस ये नंबर टोल फ्री नंबर है, इसमें निशुल्क है। आप उसको कॉल करेंगे, आप अपनी हो रही तकलीफों के बारे में बताएंगे, तो आपसे निकटतम जो भी सूचीबद्ध अस्पताल होगा वो आपको उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा देगा। आप वहाँ इलाज करा सकते हैं। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके इसके संबंधित जानकारी

0: प्राप्त कर सकते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो राज्य के लोग हैं यूं तो वो सारे लाभ उठा रहे हैं। कभी आपको कोई परेशानी हो, ये टोल फ्री नंबर भी है, सदर अस्पताल है, आयुष्मान मित्र है, आप जाएं, जानकारी लें, किसी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी

0: मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, ये योजनाएं आज आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। कार्यक्रम के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान नए विषय के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की, अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बढ़ते कदम, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के माध्यम से आज के विभिन्न सभाओं में प्रसारित शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 5:02 का समय होगा युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युव वाणी का। प्रस्तुतकर्ता होंगे गौरव कुमार पांडे। पांच बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे श्रमिक साथियों का कार्यक्रम श्रमिक लोक। प्रस्तुति होंगी प्रभु शरण की। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 का समय होगा कार्यक्रम खेती बाड़ी का। प्रस्तुति होंगी प्रभु शरण की।

6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। प्रस्तुति होंगी प्रभु शरण की। 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर आप सुनेंगे विधानसभा सभा समीक्षा। 7:20 का समय होगा कार्यक्रम आदिवासी अखरा का। आज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मुंडारी भाषा में। प्रस्तुतकर्ता होंगे कौरव कुमार पांडे।

7:45 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का। 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:30 का समय होगा सुर्खियों में। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या।

9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:15 का समय होगा उर्दू में समाचार का। नौ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय। 10 बजे आप सुनेंगे समन्वित रूपक। 10:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये थी आज की विभिन्न सभाओं में शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भूत बंगला के इस खूबसूरत से गीत के साथ। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने, आवाजें हैं निकिता गांधी और अरिजीत सिंह की।

आइए अब सुनते हैं सैयारा फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने, शब्द रचना इरशाद कामिल के हैं, धुन बनाई है तनिष्क बख्शी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म परम सुंदरी से। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत दिया है सचिन जिगर ने। आवाजें हैं सोनू निगम और कृष्णा कली साह की।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं फिल्म पति पत्नी और वो से, जिसे लिखा है कुमार ने, आवाजें हैं अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ की।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं रेड्डी फिल्म से ये खूबसूरत संगीत। संगीत से सजाया है प्रीतम ने, आवाजें हैं केके और तुलसी कुमार की।

0: इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया डायलॉग को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले से दो दो कॉलेजों के युवा हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को समझना और युवा नेतृत्व के जरिए विकसित भारत के निर्माण में उनके विचारों को शामिल करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में भी राष्ट्रीय खेल दिवस पर कल खेलेगा भारत जीतेगा भारत विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्यालयों में 27, 29 और 30 अगस्त को कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर पत्रकारों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में पत्रकारों की सरकारी संस्थानों में एंट्री को लगातार सीमित किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजधानी समेत विभिन्न जिलों में भव्य जुलूस निकाला गया। इस दौरान नाते पाक पेश की गई और पैगंबर हजरत मोहम्मद की जिंदगी, उनकी शिक्षाओं तथा इंसानियत, भाईचारे और अमन शांति के संदेश को याद किया गया। झारखंड समेत देशभर में आज मदर टेरेसा की 116वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के बास केंद्रीय पंचायत के राजापुर स्थित सेंट टेरेसा पब्लिक स्कूल में मदर टेरेसा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान लोगों ने स्कूली बच्चों से मदर टेरेसा की जीवनी से सीख लेते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने की अपील की। मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि कुछ घंटों में पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी संभावना है, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ध्वनि तरंगों की ताल पर इस समय आप हैं आकाशवाणी चाईबासा के साथ एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम विवरण 5:05 पर होगा आज का गुलदस्ता प्रोग्राम और 5:30 बजे सुनिएगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम। छह बजे मुख्य समाचार होते हैं। 6:02 पर आज होगा हो अखरा। 6:30 बजे महिलाओं का कार्यक्रम सुनिएगा मनोरमा। 7 बजे प्रादेशिक समाचार होते हैं, उसके बाद जिले में आजकल। 7:15 बजे कार्यक्रम आपकी पसंद और 8 बजे रजनीगंधा।

समाचार संध्या का प्रसारण होता है 8:45, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 बजे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, 10 बजे इस केंद्र से होगा गज़लों का हमारा कार्यक्रम महफिल, 10:30 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम सुरों के रंग में, 11 बजे हिंदी समाचार, 11:05 पर इंग्लिश न्यूज़, और आज की सभा संपन्न होगी रात्रि 11:11 पर। तो ये था इस सभा का कार्यक्रम।

0: गुलदस्ता। इस दैनिक कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं एक ही गायिका लता मंगेशकर की आवाज।
1: सुनो सजना पपीहने, सुनो।
0: आए दिन बहार के कार्यक्रम का आगाज इस फिल्म के गाने से।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम गुलदस्ता में आज आप सुन रहे थे एक ही गायिका लता मंगेशकर की आवाज़। ये आकाशवाणी चाईबासा है, शाम के 5:30 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मोटे अनाज की खेती, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, साथ ही आनंद लेंगे नागपुरी लोकगीत का और सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता। तो किसान भाई बहनों, मोटे अनाज की फसलों में ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और कंगनी आ जाते हैं। इसकी बुआई जून जुलाई का महीना मोटे अनाज की बुआई के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इनके लिए गर्म और शुष्क जलवायु सबसे अच्छी होती है। यह कम बारिश वाले क्षेत्र में भी आसानी से उग जाते हैं। हल्की दोमट या बलुई भुरभुरी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जिसमें पानी का निकास अच्छा हो। खेत की 2-3 बार अच्छी जुताई करके मिट्टी को समतल और भुरभुरा बना लें। बुआई से पहले खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद या जैविक खाद का इस्तेमाल करना काफ़ी फायदेमंद होता है। किसान भाई बहनों, जो की फसल भी एक बेहतरीन विकल्प आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। जौ की खेती ठंडी और गर्म दोनों जलवायु में की जा सकती है। नवंबर से दिसंबर का समय इसकी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर आप इसकी सही किस्म और तकनीक अपनाएं तो जौ की खेती से बेहतर उत्पादन और अच्छा मुनाफा मिल सकता है। किसान भाई बहनों, गेहूं और चावल की तुलना में सस्ते होने के साथ साथ उच्च प्रोटीन, फाइबर, विटामिन तथा आयरन आदि की उपस्थिति के चलते पोषण हेतु बेहतर आहार होते हैं। मोटे अनाजों में कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है। मोटे अनाज कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में सहायक हैं, जैसे मधुमेह और मोटापे की समस्या। ज्वार, बाजरा और रागी की खेती में धान के मुकाबले 30% कम पानी की जरूरत होती है। 1 किलो धान के उत्पादन में करीब 4,000 लीटर पानी की खपत होती है, जबकि मोटे अनाजों के उत्पादन में नाम मात्र के पानी की खपत होती है। मोटे अनाज खराब मिट्टी में उग जाते हैं। ये अनाज जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। ये ज़्यादा या कम बारिश से प्रभावित नहीं होती। इसकी खेती में यूरिया और दूसरे रासायनों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए ये पर्यावरण के लिए बेहतर है। मोटा अनाज हर मौसम, हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम है और ये अधिक पोषक भी होता है। तो किसान भाई बहनों, अभी हमने आपको जानकारी दी मोटे अनाज की खेती। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आनंद लेते हैं नागपुरी लोकगीत का रुणा देवी और साथी के स्वरों में।

जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से

0: गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: किसान भाई बहनों, इन संदेशों के बाद जानकारी लेते हैं सुअर पालन एवं देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सेलाई देवगम।
2: किसान भाई बहनों, आज हम आपको जानकारी देंगे सुअर पालन एवं उसकी देखभाल किस तरह से करते हैं। और आज मिलते हैं,
3: नाम सेलाई देवगम है, गांव फारपुर है, जिला सरायकेला है और ब्लॉक सरायकेला है।
2: अच्छा।
3: और पोस्ट ऑफिस मेरा पटनमरा पड़ता है
2: जी। तो सेलाई जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार।
3: जोहार।
2: तो सेलाई जी, आप अभी सुअर पालन किए हुए हैं?
3: जी हाँ
2: जी। तो आप जब सुअर पालन शुरुआत किए, तो इसकी शुरुआत किस तरह से की आपने?
3: शुरुआत हम ये चीज किए हैं कि सरकारी तरफ से तो मिला नहीं, अपना तरफ से ही हम पूंजी लगा के
2: सुअर पालन की।
3: जी हाँ।
2: अच्छा, तो आप सुअर पालन किए तो आप अपना पूंजी लगाए?
3: जी हाँ।
2: तो आप अपना पूंजी लगाए तो कितना पूंजी का जरूरत हुआ आपको?
3: पूंजी का जरूरत हुआ तो मैक्सिमम 5 साल पहले हम जो खरीदे थे उस टाइम तो सुअर का भी कम दाम हुआ करता था।
2: अच्छा।
3: है ना, तो 2500 ऐसे कुछ दाम हुआ करता था, तो एक टुका 2500 या 2000 ऐसे ही हुआ करता था।
2: अच्छा। तो आप 5 साल से सुअर पालन कर?
3: जी हाँ
2: जी। तो एक का 2500 आपको पड़ा या 2000, तो उस समय में आप अपने घर पे कितना सुअर लेके आए थे?
3: उस टाइम शुरुआत में हम 2 लेके आए थे शुरुआत पे।
2: अच्छा। है ना, 2 सुअर लेके आए?
3: जी हाँ
2: जी।
3: तो फिर उसके बाद में जब 8-9 महीने के बाद में उन लोगों को हम बेचने लगे।
2: अच्छा।
3: तो दोनों का मैक्सिमम 35,000 या 40,000 रुपये मैक्सिमम हो गया था।
2: अच्छा।
3: 9 महीना के अंदर पे।
2: 9 महीने के अंदर पे।
3: जी
2: हाँ। मतलब वो उस लायक हो गए थे कि आपको अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त हो गया।
3: प्राप्त हो गया
2: जी। तो हाँ। आप जब सुअर लेके आए तो उसके रहने की व्यवस्था किस तरह से की आपने?
3: रहने का व्यवस्था एक छोटा सा साइड पे हम उन लोगों के लिए घर बना दिए थे।
2: अच्छा।
3: ये मतलब ऐसा कोई मिट्टी का कभी नहीं बनाए थे, खाली बांस का खाली ग्राउंड बना दिए थे।
2: अच्छा।
3: है ना, चारों साइड से ग्राउंड कर दिए थे, उसके बाद एक थोड़ा सा तिरपाल से थोड़ा सा ऊपर से छांव के लिए बना दिए।

0: छत छत टाइप का बना।
1: हाँ हाँ बस उतना ही जी। उसके बाद में फिर वही पर उन लोगों को रहने के लिए जगह दिए।
0: अच्छा।
1: उसके बाद में सुबह शाम उन लोगों को थोड़ा सा निकालने के लिए भी थोड़ा सा टाइम भी देने लगे
0: जी।
1: हाँ
0: अच्छा, तो जब आप सुअर घर पे लेके भी आ गए तो उसके बाद जो उनका खान पान तो उनका होना ही जरूरी होता है
1: जी। हाँ
0: तो उनका खान पान मतलब कैसा था उनका खान पान?
1: खाना पीना उन लोगों के लिए एक थोड़ा सा मेहनत तो होता ही है मैडम, है ना
0: जी? बिल्कुल।
1: क्या कि सिंपल सा बात यही है कि थोड़ा सा मेन चीज होता है उन लोगों का पर्सनल एक तो दान का जो एक तो भूसा होता है ना।
0: अच्छा,
1: जो जैसे
0: अच्छा।
1: हम लोग दान जो हम लोग यह करके हम लोग पिसाते हैं जो उसका
0: जी जी हाँ, भूसा जो रहता है,
1: होता
0: जी, जी,
1: है वो एक तो उन लोग का फेवरेट चीज होता है।
0: अच्छा।
1: उसके बाद में और एक तो मेन चीज होता है जैसे हम लोग खाना वाना जो थोड़ा बहुत जुटा उड़ा जो हम लोग फेंक देते हैं वो सबका, और जो खाना बनाते हैं उसका जो पानी होता है वो सबका बारे कभी उन लोगों को भी उन लोगों को मिक्स करके देना पड़ता है।
0: अच्छा, जो चावल का जो माड़ पानी जिसे
1: माड़ पानी बोलता है वो चीज भी उसको मिलावट करके दे देते हैं। और एक तो प्लस हो गया जैसे हम लोग हांडिया बनाते हैं आदिवासी लोग जो उसका जो मेरा होता है वो सबकी थोड़ा सा मिलावट करके अगर दे देते तो और अच्छा खासा उन लोगों का जो मतलब चारा बन जाता है। और ऊपर से प्लस हो गया ना जो शरीर के ऊपर में भी उन लोग का बॉडी फिटनेस हो जाता है।
0: हो जाता है इन्हीं मतलब खान से खाने से। हाँ, हाँ। तो ये पानी उन लोगों को कितनी बार आप देना पड़ता है? उन लोगों
1: पानी मैक्सिमम उन लोगों का 3 टाइम देना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: जिस टाइम उन लोगों को खाने मिलता है ना
0: हाँ,
1: उसी टाइम
0: हाँ।
1: उन लोगों को खाने के बाद में थोड़ा सा उन लोगों को डालना पड़ता है।
0: डालना पड़ता है यानी कि 3 टाइम सुबह
1: दोपहर और शाम को।
0: जी जी। तो सुअर को जब आपने घर बना दिया तो लाइट की भी व्यवस्था मतलब की होगी?
1: लाइट
0: तो की अंधेरे पे रहते हैं वो?
1: नहीं, लाइट का तो उन लोगों का व्यवस्था नहीं हो किए हैं।
0: अच्छा।
1: अंधेरा में रहना पड़ता
0: है। अच्छा अच्छा। तो फिर इसमें कोई रोग वगैरह लगते हैं क्या?
1: रोग तो लगता ही है लेकिन आज तक में तो अजीज मेरे ऊपर में तो आया नहीं है।
0: अच्छा अच्छा।
1: है ना? हाँ।
0: और अगर रोग लग जाता है तो कैसे ठीक करते हैं?
1: उसका रोग लगता है तो सुनने में तो हमको आया भी था कि
0: हाँ।
1: मेडिकल जाना पड़ता है कि दवाई के बारे में तो हमको वो चीज़ तो मालूम नहीं है, है ना? तो मेडिकल जाने से वो चीज़ को बोलने से
0: मेडिकल से दवाई मिल
1: जाता है
0: जी। हाँ। जी। ऐसे तो हम लोग जो पशु चिकित्सक हैं उनसे भी सलाह लेके कर सकते हैं
1: जी।
0: जी जी। तो ये तो हो गया खान पान वगैरह। तो आपने जो 2 सुअर लाया था तो 2 सुअर से मतलब और कुछ मतलब सुअर प्राप्त हुए थे क्या?
1: हाँ।
0: अच्छा, कितने तो, 2 से कितने हो गए थे?
1: 2 से फिर से पहले से 2 से वो करवाए थे।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, तो उससे ज्यादा हम ज्यादा नहीं वो किए थे
0: जी। लेकिन इससे अच्छा खासा मुनाफा हुआ
1: हो रहा था मतलब हो ही रहा है अभी भी।
0: अच्छा।
1: कोई बात नहीं, उससे जो तो हम हानि भी नहीं जा रहा मतलब हाँ, लॉस नहीं जा रहा
0: हाँ, तो अभी भी है आपके?
1: अभी हाँ ये है।
0: अभी कितने हैं?
1: अभी एक ही टू है।
0: एक ही टू है।
1: उस टाइम थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा घर और भी थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा लोनपुर में मतलब लोनपुर क्या कि घर का सिचुएशन थोड़ा सा आगे पीछे होता ही रहता
0: है
1: ना
0: जी, जी,
1: तो उसी में थोड़ा घाटेबाड़ी हो गया तो इसलिए हमने कि चलो इस बार एक ही टूर रख लेते हैं।
0: हाँ,
1: उसके बाद में जब इसी में अगर हो जाता तो डबल कर देते हैं।
0: डबल कर देते हैं जी। तो आपने जब सुअर पालन मतलब अभी आप एक रखे हैं तो आगे का कुछ सोचे हैं कि आपको?
1: हाँ, ये चीज़ तो हम लोग का आगे तक भी चलते ही रहेगा तो आगे तक में भी हम वही चीज़ भी सोचे हैं कि आगे तक और थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे बोल के सोचे हैं तो टाइम के हिसाब से हम वो चीज़ नहीं वो कर पा रहे
0: कर पाते। तो अच्छा सलाई जी, अभी बताइए कि आप पहले आपने खरीदा था 2,250 में तो अभी मार्केट में सुकर का क्या मतलब प्राइस है?
1: मतलब छोटा में?
0: छोटा में
1: अभी छोटा में मैक्सिमम 1-2 का 5,000 रुपये पड़ रहा है।
0: 1 का 5,000
1: जी,
0: यानी आज से 5 साल पहले जो 2,000 का था
1: हाँ।
0: अभी वो 1 का 5,000 मिलता है
1: जी।
0: तो बड़े बड़े जब हो जाते हैं सुकर तो 1 किलो में कितना उसका मूल्य है?
1: 1 किलो का अभी मैक्सिमम मार्केट में जितना भी जो बेच रहा है उन लोगों का 400 या 350 ऐसे 1 किलो का मार्केट में उन लोगों का मीट बेच रहा है ना?
0: बेचा रहा है। हाँ। अच्छा,
1: तो पहले तो 5 साल पहले तो उतना तो नहीं हुआ करता था,
0: है
1: ना? 100 रुपया 70 रुपया ऐसे बेच रहा था, अभी तो 300 450 400
0: अभी भी
1: बढ़ रही है ना हर चीज में।
0: हाँ जी, तो हर चीज में हर किसी का मूल्य तो बढ़ ही रहा है।
1: हाँ, हाँ।
0: जी। तो और इस सुकर पालन में अगर देखा जाए तो हर मतलब पशुपालन या फिर बत्तख पालन मुर्गी पालन सब में कुछ ना कुछ ध्यान देने की जरूरत ही है। तो क्या क्या ध्यान देना पड़ता है सुअर पालन में?
1: सुअर पालन में ध्यान तो मेन चीज क्या है ना, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। सिंपल सा बात बताते रहे, एक तो सबरे उसको थोड़ा बहुत घर से उसको निकालना पड़ता है, एक तो प्रेस्टिक क्लीन
0: जी जी
1: है ना, प्रेस्टिक क्लीन निकालना पड़ता है, ज्यादा नहीं उसका टाइम भी नहीं देना, आधा घंटा के लिए उसको।
0: अच्छा अच्छा।
1: एक तो घर में उसको बाथरूम नहीं करना है, बाहर में उसको
0: बाहर करवाना है,
1: एक थोड़ा सा रनिंग उसको करवाना है, इधर उधर उन लोग तो दौड़

0: तो करता ही है ना,
1: करता ही
0: तो मतलब उसको शरीर में सुरक्षा के लिए
1: जी जी जी जी,
0: उसके बाद में फिर अंदर करवाना है, उसके बाद में टाइम के हिसाब से उन लोगों को देना है कि मान के चलो 8 बजे उसको, जैसे टाइम उसको आदत किया गया है, मान के चलो 10 बजे हो 9 बजे हो, उसी हिसाब उसको एक बार दे दिए हैं, उसके बाद 12 बजे के जगह में अगर आपको 1 बजे देना है वो उसी हिसाब से दे दिए हैं, 12 बजे उसको नहीं निकलने का है, शाम को फिर 4:30 बजे हो जैसे भी हो उसको टाइमली एक बार और शाम को निकाल दीजिएगा
1: जी जी जी,
0: उसके बाद फिर बाहर में वो चीज करवाएगा बाथरूम वगैरह, उसके बाद फिर शाम को उसको अंदर करके खाना उना खिला के फिर बंद कर देना है
1: जी। बस उतना ही। अच्छा, ठंड में कुछ विशेष ध्यान देना पड़ता है क्या?
0: ठंडा में उन लोगों का सुविधा एक तो देना तो है ही है, लेकिन हम तो दिए हैं ऐसा कैपेसिटी उन लोगों को कि जैसे अभी जो धान का जो भूसा होता है जैसे वो यह सब, वो सब हम उसका घर में रख देते हैं।
1: अच्छा,
0: ठंडा ना लगे बोल के
1: जो बांस से उसका छोटा सा घर बनाया है उस पे जमीन पे बिछा देते हैं
0: जैसे धान का भूसा होता है ना, वो चीज हम डाल देते हैं उसके ऊपर में, वैसे में वो अपना सेफ्टिक में डाकू करके सो जाता है।
1: जी। और उसपे कुछ बोरा वगैरह
0: नहीं, हाँ, वो सब तो नहीं वो करते हैं।
1: अच्छा, तो उसमें उसको उतना गर्मी
0: उसमें
1: जाता है।
0: हाँ, उसमें उसका भूसा होता है ना, उसे ऑटोमेटिक उसका गर्मी का महसूस हो ही जाता है।
1: तो अगर हमारे और भी किसान भाई आपको सुनकर अगर सुकर पालन करना चाहेंगे तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: खेती बाड़ी में भी खुद पैसा तो है ही है, इसमें जैसा मेहनत करिएगा ऐसा पैसा भी आता है और ऐसे अपना जो दान भी मिलेगा बोला जाए तो।
1: और ये खुद का जॉब है,
0: खुद का जॉब है, जैसे काम करेगा ऐसा मिलेगा,
1: मतलब मेहनत का फल मीठा होता है जैसे बोलते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं खासकर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है, बस इसमें थोड़ी मेहनत की जरूरत है,
0: थोड़ा सा 19-20 तो होता ही है
1: जी जी। और अगर लॉस हो गया तो निराश होकर बैठना नहीं है, फिर से मतलब शुरुआत करनी है उसकी जी जी। तो सलाई जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद
0: जी। थैंक यू सर।

किसान भाई बहनों, कार्यक्रम के अंत में आप आनंद ले रहे थे कुर्माली लोकगीत का संतोष महतो और साथी के स्वरों में। और इस लोकगीत के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को दे विदा। जोहार।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया डायलॉग को संबोधित करेंगे। मेरा युवा भारत माई भारत झारखंड के निदेशक ललिता कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य के 16 महाविद्यालयों में युवाजन प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में युवाओं को विकसित भारत और 2036 ओलंपिक को लेकर अपने सुझाव देने का मौका मिलेगा। युवा QR कोड के जरिए अपने सुझाव साझा कर सकेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर परीक्षा सुधार समिति से JSSC के प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार को तत्काल हटाने और उनकी भूमिका की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने सरकार से परीक्षा सुधार समिति में स्वच्छ छवि वाले पारदर्शी और ईमानदार सदस्यों को शामिल करने और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता की CBI से जांच की मांग दोहराई है। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की आंदोलनकारी छात्रा अमीषा प्रसाद ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आज रांची में प्रेस वार्ता में आंदोलनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर झूठे मुकदमे दर्ज कर छात्रों और युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। अमीषा ने झूठे मुकदमे में छात्रों को फंसाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। राजधानी रांची समेत राज्यभर में आज पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजधानी समेत विभिन्न जिलों में भव्य जुलूस निकाला गया। इस दौरान नात ए पाक पेश की गई और पैगंबर हजरत मोहम्मद की जिंदगी, उनके शिक्षाओं तथा इंसानियत, भाईचारे और अमन शांति के संदेश को याद किया गया। पलामू पुलिस ने नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सतबरवा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 39 पर वाहन जांच के क्रम में एक चारपहिया वाहन से 121 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

करताल तेला ताबन मी से यूर उलेब।

0: परमतन रे गड़ा बिंग को पाठ हुए तैन को मनसा सबा सान सकम आ मटको इमन नमतन आगुतन रे बीरबुरु रन कुले बालू को मितम भरमुके लिखा चा बकाए थे काकला बेटेंग ताबा को मिसे मिसे दुको तेगा कुल सुता अबा निकाते गो एगोनो को तबु हो बना हेरो परो बुंगाले रे रेदो दूसी अची बिसी को एते बु पोचा पारची हुआ हेरो परो बुंगाले बुंगा के तयम दो गाड़ा बिंग को तायन को उन्डो बीरबुरु रन कुले बालू को रियो बोरो गमंग गिसिर को मन मोलोंग को एते आतम एड़ाना हेरो परोब केन तायम दो गितिल उड इंदी उड सारुआ अकुमन वा आदिंग रे आगु इसिन जोम दाई युआ का हेरो परबा कने ते नीना को आगु जोमे रे वा रे बिंग मार मार को मन हुजु बोलुआ हेरो परो बुंगाले तायम इनंग बाबा चाउली होलोंग लुपु के ते लाडे जोमे ते एक तीर नमुआ का अदाने ते मांडाय रे मुंडुए को मेनिया इनका गे हेरो परोब रिया मान मामारांग को का अटकार चिरगिल तरे दूसिये को ताइन तलाव ते दुकु दुरिया दोड़ा को रे यू कां जुतिया बोरो टाइने इनामें ते हो जाति रे जन्मकान साबिन हागा मिसी को हेरो परोब रिया महत्व को मोलोंग रे बु सोलोंग जोम होनांग एसुरा सिके आउरे हेरो परोबे ने ते उन चिकन रे काबू जमिया मेंतिया पीछे रे मिडो कहानी मिना मादे ए होमो पारे टाइकेन दिपिलेंग मुसिंगे कुमुतने आइये बुरु दाना रे उत ओमोना कना ते आया हो हरे ले काजी इतने उत जोम सनांग इतने मेंतिया इंते चनम मुसिंग सीता उत अलांकिंग सिनो इना आइये बुरु दानांग इंतारे उट किंग नेलेतना नामकेट गया किंग मिंदो इंता मिडो बादु होरोतान टाइकना ते बादु होरोतान ने दो किंग ये दो मादे दो दानांग रे उकुईने ने तो सुरमी इंता सेन जपा उट हलांग ते मिंदो बादु में का हलांग इची इतने रो तभी इतने ए तिकिंग उपदूर तेने रो ओ तेने नियो उदूर रुए तेने इनका तिकिंग उपदूर तेन रे ये उद दो पास पादा तो ओकड़ा किंग काटाते इनता मादे पाते पिल ले इंदा इना मादे साप ताप किडे ते हाउर हमबुत तेप किडे गोचा किडे ए इंदा आकिंग इनका किंग रोपो तन रे बादु दो मेंदो को बादु सुरमी दो बादु रो दंगेट किए दिरिंग रे बादु को रो की नेल की ते मादे मिन मादे ए हेर ओ मिन किरे इंता इनका काजी किरे ते में दा यु किरे इन इंता ते के हेरो प्रो रिया दो उट रिया कहानी दो चबाइन
1: चीगे बो अयुम तेन तेकिना ना हेरो परोप रिया ममारांग हेरो परोप चीना में ते बो मनतिंगे आटकर इतो बनोरे दो जार जमोर कच्चा दुम कच्चा यम टिंडिंग रे को अचुए किने इना बो आटकर कडा चीना में ते हेरो मेना तना इंदो मार अबुए हुदेरन हो को इना एतवा खातिया दरकारा चिना ची अपना परब रे ममरंग या गौरव का मदाना एंदे दो हुते दो यदा तत बराबरी लिखा कच्ची के मरन दो अयरपा दो इलाबो ने इन अटकर इंगुल छड़ेबो अयम लिया।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471311।

0: 1-800-666-9697, टोल फ्री नंबर 1-444-99 या 1-800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिंग पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: ठीक है ना दबो अयुम तन ते की नाटक करें कुल साड़ी जगत तन ते की नबो पोरो प्रिया जी हेरो पोरो रे उट का को जमिया चिना मनते हेरो पोरो बंगाले इनांगा मेना बो अटकार केडा मिंदो हेरो पोरो रे अबु बुद्धा के को बंगई चिना मनते इनो मिडो काजी मिना इंदुनेन बुद्धा चिना मनते बो बंगई मनती आबु अयुम केडा एन लिखागे अयरपा नेन चासरे चिलिके चिलिके ओकोन ओकोन को दिंगत मिना ची उरी मेरम को सीम सुकुरी को जीव जंतु को आ मेंतिया को बु अटकर केडा एंते सीधे मन योगे ते अबू चासरिया पैटी में ना हाथी ते सीउतेन विधि कुम काते कि ना उरी को तिया सीयु ची उरी कुलो तेके सीयु उपदियो तन तेकना चास उपदियो तन तेकना इंदो उरी को मान मनाती चिना मिनते उबना मिना उबो अयुम केडा नेलेकते अबु पोरो प्रिया मान मनाती मिना इना अड़ी बिड़ें केर दो डांडिया को हाथी रे को काले लो तन होयो सजा एमिया इन में त्याते का दुआया मोगिने चीगिन जगह लो तेकि मत अयरपा दो इलाबू अयुम लिया इलाने दूरेंगे।

सभी बहनों को बसंती का जोहार, नमस्कार। आप सभी बहनों का स्वागत है कार्यक्रम मनोरमा में। उम्मीद है इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और बहनों, बारिश के मौसम में हम सभी को सेहत के प्रति अधिक सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस मौसम में नमी अधिक रहती है। नमी और पसीने के कारण बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे हम बीमारियों के चपेट में आते हैं। और बहनों, इस मौसम में बालों की देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हम अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। बारिश का मौसम चिपचिपा होता है, हवा में बहुत अधिक नमी होती है और परिणाम स्वरूप बालों के झड़ने टूटने में अधिक वृद्धि होती है, यानी कि बालों का झड़ना टूटना अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में बालों की देखभाल अधिक करनी होती है। और बहनों, हम देखते हैं कि इस मौसम में रूसी भी अधिक होने लगती है। बालों को नुकसान से बचाने के लिए शुरुआत में चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें। गीले या उलझे हुए बालों में जोर से कंघी करने से बचें, इससे बाल टूटते भी हैं और झड़ते भी हैं। अपने बालों को बारिश से बचाएं। बारिश का पानी गंदा होता है और अम्लीय भी होता है, जो आपके बालों के लिए हानिकारक हो सकता है। गीले बाल होने पर सबसे ज़्यादा भंगुर होते हैं, इसलिए बारिश में बाहर जाने से बचें। अगर जाते हैं तो अच्छे हेड कवर प्रोटेक्शन के साथ। और बहनों, इस मौसम में अपने बालों को हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर धोएं। और बालों में शैम्पू करने से पहले 20-25 मिनट पहले नारियल का तेल लगाएं। इससे आपके बालों की प्री कंडीशनिंग में मदद मिलती है। और जब भी आप शैम्पू करें तो आप कोशिश करें अच्छे शैम्पू का ही आप प्रयोग करें। इससे हमारे बाल को नुकसान होने से बचते हैं। तेल बालों को चिकना बनाता है और धोते समय बालों द्वारा पानी के अवशोषण को कम करता है और गीले बालों को बांधने से भी बचे। इससे बाल तो टूटते हैं ही, साथ ही फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। इसलिए आप ज़रूर इस बात का ध्यान दें। अगर रूसी की समस्या बढ़ जाती है तो त्वचा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। बालों को स्वस्थ रखने में आहार की भी अहम भूमिका होती है। अपने आहार में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मछली, अंडे, अखरोट, पनीर और दालें जरूर शामिल करें। इसके अलावा फल और सब्जियां बालों को चमक प्रदान करती है। एंटीऑक्सीडेंट आपके बालों और सिर की त्वचा को स्वस्थ बनाने में भी मदद करते हैं। बहनों, अगर हम थोड़ा सा ध्यान बारिश के दौरान अपने बालों पर करें तो हमारे बाल स्वस्थ, सुरक्षित और चमकदार बने रहेंगे। चलिए, बातें तो यूं ही होते रहेंगी, आगे भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इसके पहले हम सुनते हैं ये ज़रूरी संदेश।

0: कोई चैंपियन नहीं आया अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: So girls, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
2: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
5: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1

0: 9899 या 1-800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे कुछ जरूरी संदेश। इन संदेशों के बाद आइए अब हम आनंद लेते हैं इस गीत से।

0: बहनों, अभी आप आनंद ले रहे थे चोरी चोरी फिल्म के इस गीत से, जिसे स्वर दिया था मन्ना डे और लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के बाद आइए अब हम सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में भेंट वार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका विषय पर। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि वे घर की प्राथमिक जल प्रबंधक और उपयोगकर्ता होती हैं, और पानी के प्रति सबसे अधिक महिलाएं ही जागरूक रहती हैं, और गांवों की महिलाएं तो पानी के लिए दूर दराजों तक पैदल चलती हैं ताकि घर तक पानी ला सके और घर के सारे कामकाज आसानी से हो सके, क्योंकि घर के सारे काम पानी के बिना नहीं चलते हैं। इसलिए महिलाएं पानी की अहमियत को समझती हैं। तो श्रोताओं, चलिए आज इसी सिलसिले में आपकी मुलाकात करवाते हैं संगीता जी से, और उनसे हम जानकारी लेंगे कि वे जल संरक्षण के लिए किस तरह के उपायों को अपनाती हैं, या पानी का बचत किस तरह से करती हैं या करनी चाहिए। संगीता जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जोहार।
2: जोहार।
1: संगीता जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जल का संरक्षण क्या है और ये क्यों जरूरी है।
2: सरल शब्दों में कहें तो जल संरक्षण का मतलब जल की खपत या जल की बर्बादी को कम करना और पानी को सही तरीके से उपयोग करना है। संसार के प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर या फिर कीड़े मकोड़े, सभी का जीवन आधार जल ही है, और जीवन जीने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
2: पानी की दुनिया के सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। पानी के बिना हम फसलें नहीं उगा सकते, कपड़े नहीं धो सकते, घर की साफ सफाई नहीं कर सकते, खाना भी नहीं बना सकते और जीवन भी नहीं जी सकते। इसलिए पानी या जल का संरक्षण बहुत जरूरी है। यदि हम पानी का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे और अपनी आदतों में थोड़ा सा भी बदलाव कर लें तो पानी की बर्बादी से रोका जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा।
2: यदि हम पानी की बचत को करते हैं तो यह भी जल संग्रह का ही एक रूप है। बूंद बूंद की बचत से एक बड़ी बचत हो सकती है। तो इस प्रकार से पानी की बचत ही जल का संरक्षण है।
1: संगीता जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। जल का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। यदि पानी ही ना रहे तो संसार से जीवन ही समाप्त हो जाएगा। मनुष्य भले ही एक दिन भोजन ना खाए चलेगा, लेकिन पानी के बिना एक दिन समय बिताना बहुत कठिन होता है। तो संगीता जी, आप बताएं कि पानी की बर्बादी को कैसे रोका जा सकता है।
2: जी, पानी की बर्बादी को हम कई तरीके से रोक सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें अपने घरों के नलों की ही जांच कर लेनी चाहिए, कहीं इससे पानी तो नहीं टपक रहा है। यदि नल का पानी टपक रहा हो तो तुरंत उन्हें ठीक करा लेना चाहिए। इससे बेवजह पानी का बहाव नहीं होगा और पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, और जितनी पानी की ज़रूरत हो उतना ही पानी का उपयोग करना चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जरूरत से ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं या फिजूल में पानी की बर्बादी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल,
2: पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी खोलना चाहिए, और नहाने के लिए अधिक पानी का बर्बाद नहीं करना चाहिए। हो सके तो बाल्टी में भर कर नहाना चाहिए, इससे हम पानी की खपत को कम कर सकते हैं। और बर्तनों को धोते समय भी हमें बाल्टी में पानी भर लेना चाहिए, इससे भी पानी की खपत को कम कर सकते हैं। और यदि हम नल चलाकर बर्तन धोते हैं तो इससे जरूरत से ज़्यादा पानी की बर्बादी होती है।

0: पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी की बचत के बारे में भी सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और कभी कभी लोग ब्रश कर रहे होते हैं या नहाते समय शरीर में साबुन लगा रहे होते हैं और नल को खुला छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे पानी बहुत अधिक बर्बाद हो जाता है। नल का उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, इससे पानी की बचत होती है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने संगीता जी, ऐसा लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आपको आवश्यकता हो तभी आप नल खोलें, और हो सके तो बाल्टी या मग में लेके पानी का इस्तेमाल करें, तो इससे हम कम पानी को खर्च करते हैं और इससे पानी का बचत भी हो जाता है। तो अच्छा संगीता जी, आप ये बताएं कि पानी को इस्तेमाल करने के बाद भी अगर पानी कुछ साफ रह जाता है तो हम उस पानी को किस तरह से फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: हाँ, उस पानी को हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे दाल चावल सब्जियों को हमें सीधे नल के बहते पानी में नहीं धोना चाहिए, या भगोने या चौड़े बर्तन में पानी भरकर धोना चाहिए, और धोने के बाद उस पानी को बाल्टी में अलग कर देना चाहिए। अब इस पानी को घर के किचन गार्डन या गमले में लगी सजावट की पौधों में डालकर उसका सदुपयोग करना चाहिए, और साथ ही पौधों को पोषण युक्त पानी भी मिल जाएगा। इसके अलावा जब हम कपड़े धोते हैं और 2-3 बार साफ करने के बाद अंत में जब साफ पानी रह जाता है तो उस पानी को भी नहीं फेंकना चाहिए। उस पानी से हम वॉशरूम, बाथरूम और टॉयलेट साफ कर सकते हैं। साफ ताज़ा पानी की जगह इस बचे हुए पानी का उपयोग करने से बचा पानी से घर के आंगन को भी धो सकते हैं। तो इस तरह से इस्तेमाल में लाई गई पानी को फिर से हम इस्तेमाल करके पानी की बचत कर सकते हैं। आज के समय में पानी की कमी की संभावना पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, इसलिए हमें जल संसाधनों के संरक्षण के तरीकों पर विचार करने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल सही संगीता जी, यदि आज हम जल का संरक्षण नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ी को काफ़ी मुश्किलें होंगी, इस पर सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। संगीता जी, जल संरक्षण में महिलाएं किस प्रकार से मुख्य भूमिका निभाती हैं, इस पर आप थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएं।
0: जी, जल संरक्षण में महिलाएं मुख्य सूत्रधार हैं, क्योंकि दैनिक घरेलू कार्यों के लिए दैनिक जल प्रबंधन की प्राथमिक उपयोगकर्ता महिलाएं ही होती हैं। घर के कामकाज के लिए पानी की सबसे अधिक आवश्यकता महिलाओं को होती है, इसलिए वे जल प्रबंधन और उसके सही उपयोग को सबसे बेहतर समझती हैं। पानी के लिए महिलाएं मीलों दूर भी जाकर पानी को ढोकर लाती हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं पारंपरिक तरीकों से, जैसे तालाबों की सफाई, मेड़बंदी और वर्षा जल संचयन के माध्यम जल स्रोतों का पुनरुद्धार कर रही हैं, और महिलाएं सामुदायिक स्तर पर पानी के सही उपयोग, स्वच्छता और संरक्षण के सही तरीकों के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ा रही हैं। गांव की महिलाएं जल सखी या वाटर वॉरियर्स के रूप में समूह बनाकर जल संरक्षण के लिए काम कर रही हैं, जैसे हैंडपंपों की जांच करना और जल स्तर को बढ़ाना, और आजीविका समूह जैसी पहल के माध्यम से महिलाएं जल आधारित छोटे उद्यम जैसे सब्जी बागवानी और वृक्षारोपण के जरिए जल स्तर सुधारने का काम कर रही हैं। इस तरह से हम देखें तो जल संरक्षण में महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
1: जी संगीता जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और बहुत ही अच्छी ये बातें कहीं कि आज के समय में महिलाएं जल संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और संगीता जी, आपने अपना कीमती समय देते हुए इतनी

0: अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। जोहार।
1: जोहार।
2: बहनों, अभी आप भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका विषय पर और इस विषय पर जानकारी दे रही थी संगीता। इस जानकारी के बाद आइए अब हम कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये गीत।

बहनों, इसी गीत के साथ ही आज का हमारा मनोरमा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बसंती को दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम मनोरमा। यह आकाशवाणी चाईवासा है एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले में आजकल। कीजिए थोड़ा इंतज़ार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
6: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
5: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे, और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल, डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल खेलो इंडिया डायलॉग को करेंगे संबोधित। राज्य के 16 महाविद्यालयों के युवा प्रतिनिधि वर्चुअल संवाद में होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा खनन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की छात्रा का प्रशासन पर आंदोलनकारी छात्रों को परेशान करने का आरोप। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पहुंची कोडरमा। राजधानी रांची समेत राज्यभर में सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकला ईदे मिलाद उन नबी का जुलूस। हजरत मोहम्मद के संदेशों को किया गया याद। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का राज्य में दिख रहा असर। गढ़वा और पलामू समेत 6 जिले में कल भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे

0: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया डायलॉग को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महाविद्यालयों के युवा हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को समझना और युवा नेतृत्व के जरिए विकसित भारत के निर्माण में उनके विचारों को शामिल करना है। मेरा युवा भारत माई भारत झारखंड के निदेशक ललिता कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य के 16 महाविद्यालयों में युवा जन प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में युवाओं को विकसित भारत और 2036 ओलंपिक को लेकर अपने सुझाव देने का मौका मिलेगा। युवा QR कोड के जरिए अपने सुझाव साझा कर सकेंगे।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का जो थीम है, हम 100 दिन उस कार्यक्रम को चला रहे हैं। स्पोर्ट्स में युवाओं को इन्वॉल्व करके कैसे उनको नशा मुक्त किया जाए, इस विषय पे युवाओं को आइडियाज को लिया जाएगा। हमारे झारखंड में कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मुख्यतः IIM रांची, संत जेवियर्स कॉलेज रांची और BIT मिश्रा रांची और IIT धनबाद और NIT जमशेदपुर, इसमें भी कार्यक्रम हो रहे हैं।
0: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य गठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। श्री दास ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में राज्य में DMFT फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने खनन प्रभावित जिलों के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के अलॉटमेंट को अतिरिक्त 30% बढ़ा दिया है, इसके बावजूद खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
2: उसमें अभी भी राज्य के खाते में 7,915 करोड़ रुपए की राशि बची, बाकी की राशि में भी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की राशि में इसमें भी घोटाला हो।
0: JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की आंदोलनकारी छात्रा अमीषा प्रसाद ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आज रांची में प्रेस वार्ता में आंदोलनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर झूठे मुकदमे दर्ज कर छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। अमीषा ने झूठे मुकदमे में छात्रों को फंसाए जाने की निंदा की है।
3: 285 काम संख्या के अंतर्गत मुझे कहें कि मैंने आपको इसलिए उठाया। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा संविधान है जिसमें विदाउट नोटिस किए विदाउट वारंट दिए आप किसी भी व्यक्ति को उठा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है ना कि आप हमारे उस सपने को रौंदने का काम करते हैं, युवाओं की आवाज को दबाने का काम करते हैं।
0: भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत आज चतरा के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर से हुई। यह यात्रा चतरा से हजारीबाग होते हुए कोडरमा पहुंची। इस दौरान हजारीबाग के पद्मा, इटखोरी, चौपारण, बरही, सिंहवारा होते हुए कोडरमा पहुंची, जहां कई स्थानों पर छात्रों ने स्वागत किया और प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार की मांग का समर्थन किया। कोडरमा से देर शाम यात्रा गिरिडीह के लिए रवाना होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची में उम्र से संबंधित विसंगतियों की सुनवाई और निष्पादन नियमानुसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने कहा कि कोई विदेशी नागरिक हथियान अथवा वंशावली में छेड़छाड़ कर स्वयं को भारतीय नागरिक अथवा किसी परिवार का वंशज दर्शाकर मतदाता सूची में शामिल होने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना संबंधित ERO को अवश्य दें। उन्होंने एक ही माता पिता की एक से अधिक संतानों के जन्म और उम्र से संबंधित दस्तावेजों की विसंगतियों को भी दूर करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मोबाइल से चंद सेकंड में होने वाला भुगतान, न खुले पैसों की चिंता और न ही लंबी प्रक्रिया। भारत के डिजिटल भुगतान व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI ने 10 वर्ष का सफर तय कर लिया है। सिमडेगा चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव दीपक अग्रवाल रिंकू ने UPI के 10 वर्ष पूरे होने पर खुशी जताई है और केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है।
4: सरकार के द्वारा UPI पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। व्यापारियों के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी पहल है। व्यापारियों को भी

0: कई तरह के फायदा है। एक तो जो कैश कैरी करना पड़ता था व्यापारियों को और हर समय सुरक्षा को लेकर उनमें चिंता का एक बना रहता था माहौल, वो दूर हुआ है और जो लेन देन है उसमें भी पारदर्शिता आई है।
1: राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईदे मिलाद उन नबी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजधानी रांची के अलावा पाकुड़ और पलामू समेत राज्य के विभिन्न जिलों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य जुलूस निकाला गया। इस दौरान पैगंबर मोहम्मद के संदेश को याद किया गया। मौलाना आजाद कॉलेज रांची के प्रोफेसर अब्दुल्ला कासमी खातिब ने बताया कि हजरत मोहम्मद के बताए मार्ग पर हमें चलने की जरूरत है।
2: 40 साल में आपने अपने नबी होने का ऐलान किया और अल्लाह के आदेश से आप मक्का छोड़कर मदीना चले आए। इस तरह 23 साल में इस्लामी तालीमात को कंप्लीट किया, लेकिन सबसे बड़ी जो तालीम है हुजूर की वो अखलाक है, मानवता है। तब आप पूरी इंसानियत के लिए मोहसिने कायनात कहे गए। हमको इस सीरत के इस पहलू को फॉलो करना चाहिए।
1: ईद मिलाद उन नबी के मौके पर गिरिडीह में आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला। शहर के विभिन्न इलाकों से मोहम्मदिया जुलूस निकाला गया जो नगर भ्रमण करते हुए बरवाडी मैदान पहुंचा। जुलूस में नगर विकास मंत्री सुदवी कुमार भी शरीक हुए और लोगों को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी।
3: गिरिडीह के लोगों को तमाम बहुत सारी शुभकामनाएं। जुलूस से मोहम्मदी में घरवाड़ी करबला में तमाम लोग जमा होंगे और आज के दिन नबी की तमाम जो हिदायतें हैं वो याद करते हुए आने वाले दिन को और बेहतर करने की कोशिश करें।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में रक्षाबंधन पर्व के सिलसिले में आज पुलिसकर्मियों और समाज के बीच भाईचारे तथा विश्वास का एक खूबसूरत संदेश देखने को मिला। चक्रधरपुर थाना परिसर में गैर सरकारी संगठन एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन करंजो की ओर से रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर विश्वास और भाईचारे का संदेश दिया। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 30 अगस्त तक गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग और कोडरमा जिले में कहीं कहीं पर गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 28 अगस्त को चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल खेलो इंडिया डायलॉग का करेंगे संबोधित। राज्य के 16 महाविद्यालयों के युवा प्रतिनिधि वर्चुअल संवाद में होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा खनन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की छात्रा का प्रशासन पर आंदोलनकारी छात्रों को परेशान करने का आरोप। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पहुंची कोडरमा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकाला गया ईद मिलाद उन नबी का जुलूस। हजरत मोहम्मद के संदेशों को किया गया याद और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का राज्य में दिख रहा असर। गढ़वा और पलामू समेत 6 जिले में कल भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: लातेहार जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे बोकाखाड़ गांव में सशस्त्र सीमा बल द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान 18 परिवार के मुखिया के बीच कृषि उपकरण का वितरण किया गया। इस दौरान सशस्त्र सीमा बल 32वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश सिंह ने कहा कि
2: वहाँ पे जो कार्यक्रम चलाया हम लोगों ने स्वास्थ्य की थोड़ी चिकित्सा व्यवस्था की थोड़ी कमी थी वहाँ, तो वहाँ मेडिकल सिविक एक्शन कैंप लगाया गया था जिसमें हमारे डॉक्टर साहब ने

0: लगभग आज 100 मरीजों का इलाज किया है। उस गांव के तो लोग थे ही, आसपास के गांव के भी कुछ लोग थे, इसको मिला के इतनी ज्यादा नफरी हुई।
1: भारत सरकार द्वारा खान खनिज विनियोग संशोधन विधेयक का लातेहार जिले में भी विरोध जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कमेटी ने इसे काला कानून बताया है। इसके विरोध में आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है। 27 अगस्त को धरना प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया गया है। राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने कहा कि
2: भारत सरकार के द्वारा जो खान खनिज विनियोग विधेयक में संशोधन विधेयक लाया गया और जिस प्रकार से हड़बड़ी में इसको बिना चर्चा किए हुए लोकसभा से 5 मिनट के अंदर पारित कर दिया गया, दूसरे दिन 13 तारीख को राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में जिस प्रकार से ये बिल पारित हुआ, इसके लिए भारत सरकार ये आवश्यक भी नहीं समझी कि हम इस पर विस्तृत चर्चा कराएं।
1: इस मुद्दे पर कांग्रेस ने आंदोलन की बात कही है। मनिका विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह ने इसे झारखंड को कमजोर करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि
3: खनिज संपदा पर जो उन्होंने बिल पास किया है एकदम संघीय ढांचा पर कुठाराघात है, क्योंकि लोकतंत्र में सब लोगों का अधिकार है, छोटा से छोटा इकाई बना करके उनको अधिकार शक्ति दिया गया है, लेकिन इन्होंने शक्ति को सेंट्रलाइज कर दिया है, जो एकदम लोकतंत्र के लिए खतरा का संकेत। क्योंकि मान लीजिए किसी भी राज्य को करने के लिए उनका अपना अधिकार था, लेकिन अदब किस्म का इन्होंने जो किया है, इसके विरुद्ध में हम लोग जो है 27 तारीख को जिला मुख्यालय में धरना देंगे, इसके बाद राज्यपाल के यहाँ हम लोग चलेंगे, इसके बाद प्रखंड मुख्यालय में, और इसी तरह क्रमबद्ध हम लोग का चलता रहेगा जब तक कि वह बिल वापस नहीं लेंगे।
1: लातेहार जिले के उपायुक्त संदीप कुमार ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध नियमित रूप से सघन जांच अभियान चलाना जरूरी है। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड स्थित ITI का लाभ युवाओं को नहीं मिल रहा है। 10 करोड़ की लागत से बना यह संस्थान आज शोपीस बनकर रह गया है। यहां प्रशिक्षकों की कमी के कारण 120 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया बंद कर दी गई है। इस संस्थान में कार्यरत 10 कर्मचारी सीयू प्रोटेक्शन फोर्स NGO के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें भी पिछले 3 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
4: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये आकाशवाणी चाईबासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। पेशे खिदमत है आपकी पसंद कार्यक्रम आगाज़ फिल्म कसूर के इस नगमे से, आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की। इस गीत को सुनना चाहते हैं पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला साधना और सुमेध दामोदर, चाईबासा से मधुलकरा नताशा बेबी, भोलाराम मधुर, जीवन विश्वकर्मा, विनोद कुमार पवन और मीना पवन।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: தான் சுயம் இனி கட்டுப்பாடு. பாரதிய சேனா.
1: दलाल अवैध फिल्म का गीत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति से सुनना चाहते हैं. बड़ा बाम्बो सुपाही साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, निशा प्रकाश, ललित प्रधान और देवेन. रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा. नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गवानकर, श्वेता सुमित और ध्वनि

सफर कोई समझा नहीं। सरायकेला से निकिता, सुजाता, भारती, शिवम, उत्तम, उज्जवल, मिंटू, राधा, समीर, रानी, उत्पला और डालिमा। बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री, मानस और प्रतीक। इनकी फरमाइश पर ये आवाज़ किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है सफ़र।

दिल एक मंदिर। अब सुनते हैं इस फिल्म का शीर्षक गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। सुनना चाहते हैं बेडी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, प्राची हार्दिक और तनु कर्मकर। नागपुर से लियाजर अब्राहम, उज्जैनी एलन, ग्लोरी एलेक्स, जोजफ, अविनाश, सिद्धार्थ और हीरामन शेंडे। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

0: डॉन। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत आशा भोसले और साथियों से। सुनना चाहते हैं धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, सरोज और शानू ध्रुवंशी, बादुरी गांव से कैलाश को दादा, नारायण, कृष्णा, मोहन, बसंत और ज्योति को दादा, ग्राम गिलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, रमेश बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा।
1: आज वो दौर आ गया है कि हम अच्छी से अच्छी चीज से भी थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, लेकिन ये आशा जी की आवाज है जिससे लगातार सुनते रहने पर भी हम सब लोगों का लगाव बढ़ता ही जाता है। हमारी आशा जी जिनकी गायकी में हजारों रूप लेकिन व्यक्तित्व का रूप एक, जैसा अंदर वैसा बाहर, गुस्सा है तो गुस्सा, प्यार है तो प्यार, दिल जितना बड़ा उतना ही साफ।

दूसरा आदमी, यह है इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। सुनने की ख्वाहिशमंद है टाटा कॉलेज चाईबासा से डॉक्टर धर्मेंद्र रजक, डॉक्टर भाग्यश्री कर, श्रीमती रामपति देवी, आशा कुमारी और गुनू बाबू। चांडिल से तुलसीदास महतो और औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश।

कोयला। इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाज़ें कुमार सानू और प्रीति सिंह की सुनना चाहते हैं। मेन रोड सोनुआ से गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, देवाशीष, गुलशन, पिनाक प्रधान, तनुश्री और नील पानी प्रधान। ग्राम पजौनिया जालौन से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और सत्येंद्र चंसौलिया। न्यू कॉलोनी टुंगरी से पंडित आर के पाठक, अनीता मिश्रा, रिया और प्रिया पाठक।

रात्रि के 8 बज चुके हैं और पेश है फरमाइशी नगमों का हमारा दूसरा कार्यक्रम। इसमें सबसे पहले ये सुनते हैं फिल्म सरफरोश का ये नगमा। फनकार हैं जगजीत सिंह। सुनना चाहते हैं जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया। रायपुर से जावेंद्र कुमार ध्रुव, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा और चांडिल से तुलसीदास महतो।

महबूब की मेहती। आप सुन रहे हैं इस फिल्म का गीत। गुलकारा हैं लता मंगेशकर। सुनना चाहते हैं लुधियाना से अमरजीत सोनम कौर और परमजीत तादिबा कौर, रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू सईद, वसीम और वलीउल्लाह नूरजहां, मंझारी से बसंत बेकुरा, हेमंत पात्रू, सुलोचना पान, कौशिक, दीपक, रिंकी, रूपाली और पीताम्बर।

उपकार। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। फनकार हैं मन्ना डे। सुनना चाहते हैं सरायकेला गांव कीता से राधा कृष्ण गोप, अमित, अंकित और सुमित गोप। रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और अधिबा तिवारी। बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर।

अब आइए सुनते हैं फिल्म कुर्बानी का ये नगमा, आवाज़ें अमित कुमार और कंचन की। सुनना चाहते हैं मोहाली से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, ज़िला स्कूल चाईबासा से गौतम होनहागा, धनंजय शंकर, परशुराम, संजय, दामू मिश्रा और ललित, डबवाली से बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी।

मुकद्दर का सिकंदर, यह सुन का गीत आवाज़ किशोर साहब की। सुनना चाहते हैं मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजोरिया। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता।

कलाकार यह स्मरण का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में सुनना चाहते हैं। राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम, संगीता, रुद्र और रिद्धि गुप्ता। ग्राम कोयरा से पौंडे बोपाई, रेशनल कश्मीरा, यशमती और मीनाक्षी बोपाई।

0: कठिन है प्रश्न ये भैया आए
1: कर्मा। यह है अश्विन का गीत, आवाजें दिलीप कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की। सुनना चाहते हैं अमला टोला चाईवासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक और अक्षत प्रसाद। भिलाई से श्रीमती प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री अशोक और दीपक श्याम कुंवर। उमर खेर महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर, सरिता सिद्धांत और प्रिंस गवानकर।

0: खूबसूरत। यह इस फिल्म का गीत बादशाह और आस्था की आवाज़ों में सुनना चाहते हैं आदित्यपुर से नंदलाल गागराई, सुरेश लक्ष्मी और सरस्वती गागराई, अमरावती से कमरुल्लाह, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया और मुस्तफा खान।
1: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपने

0: ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये
2: आंधी। यश फिल्म का गीत संजीव कुमार, सुचित्रा सेन, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। सुनना चाहते हैं ग्राम अमजोरा पुखरिया से शिवा गोप, शिवांश प्रेम, कपिल, संगीता, लिपि और दीपाली को। जवाहर नगर दुर्ग से आरती कामरे, वैभव विशाल, विपुल और भव्य कामरे।
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

किताब। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं इस फिल्म का गीत, पद्मिनी और शिवांगी से। सुनना चाहते हैं रायगढ़ से शिव कुमार चौहान और संक्रांति चौहान, असुरा से सुखदेव गोप, रणवीर गोप, मकेश्वरी, सरोज और निशा गोप, न्यू कॉलोनी टुंगरी से सुशील कुमार सिंह, संध्या देवी और पंडित आर के पाठक।

इस नगमे के साथ ही समाप्त होता है आज का रजनीगंधा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी चाईबासा FM के 101.7 MHz पर 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 977-98-51-31-6807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 977-97-09-10-7500। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
3: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
4: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया।
0: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध

0: तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
2: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
3: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खुसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का

सिख है जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोर्दोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: displayed, drawing thousands of devotees who offered prayers and sought blessings. Similar gatherings were held at major shrines and mosques in different parts of Kashmir. Devotees prayed for peace, harmony and prosperity in Jammu and Kashmir and for the well-being of people across the world. Meanwhile, Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Umar Abdullah greeted people on the occasion. Ishfaq Shah, Akashwani News, Srinagar.
1: The President, Vice President and Prime Minister have greeted people on the occasion of Onam and Eid-e-Milad. The Indian Institute of Creative Technologies, IICT, and Netflix have announced scholarships for 100 students to support next generation of Indian storytellers. Under this scholarship scheme, students will be provided up to 80% financial support across six professional programs, comprising 2 one-year diploma programs and 4 six-month certificate programs. The announcement has come after Prime Minister Narendra Modi held a meeting with co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, earlier this month. In men's cricket, hosts Sri Lanka reached 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after receiving follow-on from India in the second and final test in Colombo. Sri Lanka now lead by 16 runs. Earlier in the day, the visitors enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in their first innings. India had declared their first innings at 503, powered by centuries from Dhruv Jorel and Devdutt Padikkal. The visitors are currently leading the two-match series 1-0. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in the Himalayan nation. Bihar and Uttar Pradesh step up preparedness amid possible rise in water levels of rivers after flash floods in the neighboring country. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. And in men's cricket, India tighten grip on Colombo test as host Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. That is all in the news at 9. Good night.
2: Aadab, ye Akashwani hai. खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। नेपाल तिब्बत सरहदी इलाके में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से 46 अफराद की मौत हो गई, 100 से ज्यादा भारतीय शहरियों समेत तकरीबन 500 अफराद लापता हैं। बचाव और राहत कार्रवाई तेज कर दी गई है। भारत ने नेपाल को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। पड़ोसी मुल्क में अचानक सैलाब आने के बाद दरियाओं में पानी की सतह में मुमकिन इजाफे के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में अमन इस्तेहकाम के तहत अपने अहद को दोहराया है और पीचिंग में सरहद के मामले पर 25वें दौर की बातचीत में 8 नुकाती इत्तेफाक राय पर रजामंदी जाहिर की है। आज ओनम और ईद मिलाद उन नबी जोशो खरोश के साथ मनाए गए। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट में भारत ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 229 रन बना लिए थे। अब खबरें तफसील से। नेपाल में आज सुबह भोटेकोशी दरिया में अचानक सैलाब आने से तिब्बत सरहद के नजदीक रसुवा खित्ता इसकी जद में आ गया। तकरीबन 500 अफराद के लापता होने की इत्तला मिली है। इनमें 100 से ज्यादा भारतीय शहरी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी अहलकारों ने बताया है कि सैलाब से मुतासर इलाकों से अब तक 46 लाशें मिली हैं। इन अहलकारों ने बताया कि मुतासर इलाकों के मुख्तलिफ हिस्सों से कम अज कम 93 अफराद को बचाया गया है। नेपाल के सियाहती बोर्ड के मुताबिक लापता अफराद में गैर मुल्की सयाह और नेपाली शहरी शामिल हैं। हुक्काम ने कहा है कि लापता अफराद में कम से कम 105 भारतीय शहरी और 37 गैर मुकीम भारतीय अफराद शामिल हैं। इनमें से बेशतर लोग तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। हुक्काम के मुताबिक लापता गैर मुल्की शहरियों में कई मुल्कों के अफराद हैं। इनमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलेशिया, जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड शामिल हैं। नेपाल के वजीर आजम बालिंदर शाह ने मुतासर जिलों के हुक्काम और विफाकी अरकान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग में सूरत हाल और बचाव और राहत कार्रवाई का जायजा लिया। मुतासर लोगों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी

0: से हमने अपनी दो टीम्स तो ऑलरेडी जो गंडक का जो रिवर बेसिन है वहां पे हमारी दो टीम्स डिप्लॉय हो गई हैं, और इधर यूपी में जो पार्ट हिट करने का है कुशीनगर इलाका, तो वहां पे हमने अपनी टीम्स डिप्लॉय करेंगे। ऑलरेडी हमारी 9 टीम्स बिहार में डिप्लॉयड हैं और तकरीबन 11 टीम्स यूपी में भी डिप्लॉयड हैं।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल और नेपाल के अवाम से आज आए जबरदस्त सैलाब के सबब होने वाली तबाही के सिलसिले में हमदर्दी का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सदर जमहूरिया ने मुसीबत की इस घड़ी में नेपाल के साथ यकजहती का इजहार किया है। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने और बाहमी ताल्लुकात को सेहतमंद और मुस्तकिल पेशरफ फराहम करने का एक माहौल कायम करने के अपने अज़्म की तौसीख की। सरहद के सवाल पर भारत और चीन के खसूसी नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात का 25वां दौर कल पीचिंग में मुनक़िद हुआ। चीन के खसूसी नुमाइंदे CPC सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर और गैर मुल्की उमूर के मरकजी कमीशन के दफ्तर में डायरेक्टर वांग ई और भारत की जानिब से खसूसी नुमाइंदे और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने भारत चीन सरहद के सवाल पर खुशगवार और इंतहाई अमीक तबादला ख्याल किया और 8 नुकाती नतायज और इत्तफाक राय तक रसाई हासिल की। दोनों मुल्कों ने सरहद के सवाल के हल के लिए एक खाके पर मुजाकरात में पेशरफ्त करने के अपने अज़्म को उजागर किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK के इलाके के लोगों को बुनियादी हुकूक से मुबैना तौर पर महरूम रखे जाने के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी कार्रवाई और ज़रूरी रसद की नकलो हरकत पर बंदिशों के बावजूद खित्ते में मुजाहरे हो रहे हैं। रावलकोट और POJK के दीगर हिस्सों में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। वहाँ मुजाहरीन पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से मुबैना तौर पर नाफिज की गई बंदिशों की मुखालफत कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इल्जाम लगाया है कि जरूरी अशिया ले जाने वाली मोटर गाड़ियों को पट्टन के मकाम पर रोका जा रहा है। कमेटी ने हिरासत में लिए गए सरगर्म कारकुनों को रिहा किए जाने, तालीम और हिफ्जान सेहत से वाबस्ता तशवीश पर इकदाम करने और बकौल उसके नकलो हरकत पर सरकार के दबाव को खत्म किए जाने का मुतालबा भी किया है। जम्मू कश्मीर में आज पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा का एहतमाम किया गया। इस तरह इस साल की श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा बाजाबता तौर पर खत्म हो गई। स्वामी विश्वात्मा आनंद सरस्वती जी महाराज की सरबराही में पवित्र जुलूस पुंछ में दशनामी अखाड़ा मंदिर से शुरू हुआ और मंडी में वाक़ श्री बूढ़ा अमरनाथ जी मंदिर रवाना हुआ। तकरीबन 25 किलोमीटर की यात्रा में मुल्क भर से आए सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। जुलूस से कबल अखाड़ा मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना और हवन का एहतमाम किया गया। यात्रा शुरू होने से कबल वैदिक मंत्रों के जाप और भक्ति नारों के दरमियान छड़ी मुबारक को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 अहल फैजियाब होने वाली ख्वातीन को मंजूरी के खतूत सौंपे। इनमें से 2500 खतूत एक बाकायदा तकरीब में दिए गए। इस स्कीम के तहत अहल ख्वातीन को हर माह 2500 रुपये महीने का माली तआवुन मिलेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये स्कीम ख्वातीन की फलाह बहबूद, बाइख्तियारी और वक़ार के तईं एक अहम कदम है। उन्होंने ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की अहमियत को उजागर किया और मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में उनके सही मकाम को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे उन तमाम ज्यादा मुसाफिरों वाले रेलवे रूट्स को 4 लाइन के रूट बनाने की जानिब पेशरफ्त कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब वैष्णव ने कहा कि तकरीबन 11000 किलोमीटर पर फैले 7 रूट्स ऐसे हैं जहां मुसाफिरों की तादाद बहुत ज्यादा है और यहां मुल्क के रेलवे ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा पाया जाता है। मुसाफिरों की ज्यादा तादाद वाले ये 7 रूट्स हैं दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी। जनाब वैष्णव ने बताया कि ये रूट्स रेलवे ट्रैफिक के तकरीबन 41% का अहाता करते हैं जबकि ये रेलवे नेटवर्क के 16% पर मुश्तमिल हैं। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने आला तालीम के महकमे और स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे के सीनियर अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक मीटिंग की ताकि जारी की गई हिदायत के सिलसिले में होने वाली पेशरफ और जारी स्कीमों पर अमल आवरी का जायजा लिया जा सके। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब जोशी ने बरवक्त अमल आवरी और मौसर जायजे की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही हर सतह पर

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है परिचर्चा, भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: हिमालय की ऊंचाइयों पर खींची एक ऐसी रेखा जिसे दोनों देश अपने अपने नक्शों में अलग अलग तरह से देखते हैं, एक ऐसी सीमा जो सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है बल्कि सुरक्षा का सवाल है, संप्रभुता का सवाल है, विश्वास का सवाल है और शायद एशिया की भविष्य की राजनीति का भी सवाल है। भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती हुई वैश्विक शक्तियां, लेकिन इनके रिश्तों का सबसे संवेदनशील बिंदु है सीमा। साल 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में पैदा हुआ तनाव, गलवान की हिंसक झड़प, भारी सैन्य तैनाती और कई वर्षों तक चला गतिरोध, इन सब ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति केवल सीमा तक सीमित मुद्दा नहीं है। सीमा पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर व्यापार पर पड़ता है, कूटनीति पर पड़ता है, राजनीतिक विश्वास पर पड़ता है और पूरे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा बदल जाती है। अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचौक सहित 2020 के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर समझौते के बाद दोनों देशों के बीच बीजिंग में हुई भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस मुलाकात का केंद्रीय बिंदु यही रहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के विकास का मुख्य आधार है। आज की चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या 25वें दौर की ये बातचीत सीमा विवाद के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस आधार तैयार कर पाई है या फिर ये प्रक्रिया केवल विश्वास की बहाली तक सीमित है। इस गंभीर और रणनीतिक मुद्दे पर

गहन विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार सेवानिवृत्त और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल अशोक कुमार, आपके साथ शुरू

0: एक स्ट्रेटजिक डायरेक्शन दोनों कंट्रीज के लोगों को, डिसीजन मेकर्स को दिया गया कि हमें इस मुद्दे को सुलझाना है। और उसके बाद पिछले जो 24वें मीटिंग हुई थी एसआर रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पहले जो अर्ली हार्वेस्ट वाले ऑप्शंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो मुद्दों पर जहाँ पर ज्यादा विवाद है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि सिक्किम का इलाका और हिमाचल प्रदेश का इलाका और उत्तराखंड इलाका, ये तीन जगह ऐसे हैं जहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है भारत और चीन के अप्रोच में। इतना ही नहीं, यहाँ पर जहाँ विवाद है भी उस पर भी भारत अपने क्लेम के मुताबिक उन जगहों पर उसकी मौजूदगी है, जबकि चाइना का सिर्फ क्लेम है। और केवल उत्तराखंड में बाराहोती का मामला ऐसा है जहां पर उसमें ग्रेजिंग के दौरान में अक्सर हर साल आता है और फिर उसके बाद में वापस चला जाता है। इसके पहले दोनों देशों ने अपने नक्शे भी एक्सचेंज किए थे, दोनों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर के मिडिल सेक्टर माना जाता है, उसके नक्शे एक्सचेंज हुए थे और दोनों ने अपनी पोजीशन डिलिनिएट की थी। तो वहां पर एकदम से क्लैरिटी है कि हम क्या क्लेम कर रहे हैं और चाइना क्या क्लेम कर रहा है, और गैप बहुत थोड़ा है जो रिजॉल्व किया जा सकता है। पहली बातचीत में हम वहां तक पहुंच चुके हैं, उस बातचीत के बाद में बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और इस बार चूंकि 12-13 सितंबर को इंडिया में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, तो काफी कयास लगाए जा रहे थे कि इस 25वीं मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा जिससे इस दिशा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन में कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन जब बातचीत खत्म हुई कल बीजिंग में, तो वहां पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो पहले लो हैंगिंग फ्रूट की बात हो रही थी उसको रिजॉल्व करने की, उसका भी जिक्र ना तो चाइनीज के स्टेटमेंट में आया ना भारतीय स्टेटमेंट में आया। मोटे तौर पर ये कहा गया कि 24वीं मुलाकात के बाद में दोनों देशों के बीच में प्रगति हुई है। ये चीज तो स्पष्ट नहीं है कि प्रगति किस किस फील्ड में हुई है, लेकिन पूरा टोन आप देखेंगे उस भाषा का, जो बातचीत के जो अंश बाहर सामने आए हैं, उसे लगा है कि दोनों देशों में एक आंतरिक इच्छा है कि इस मामले को स्ट्रेटजिक लेवल पर सुलझाया जाए। भारत ने ये चीज स्पष्ट मेंटेन किया है कि जब तक सीमाओं पर शांति नहीं रहती है, ये चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीतिक क्षेत्र हो या और भी कोई रिलेशनशिप का क्षेत्र हो, उसमें रिलेशंस स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और इसलिए उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम्स में जब WMCC की मीट होगी तो शायद इस दिशा में और प्रगति हो। मेरा मानना यह है कि दोनों देशों की तरफ इसको रिजॉल्व करने की इच्छा है, लेकिन दोनों की अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं और इसलिए इसका रिजोल्यूशन होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो विश्व में मौजूदा परिस्थिति चल रही है उसको देखते हुए मैं इस कदम को और जो स्टेटमेंट आए हैं उनको काफी पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ।
1: हर्ष जी, अगर आपसे समझना चाहें और अपने श्रोताओं को थोड़ा बैकग्राउंडर बताएं, तो 2020 में कन्फ्रंट्रेशन और गंभीर संकट रहा, 2024 में डिसएंगेजमेंट अरेंजमेंट्स की बात हुई, 2025 में डी एक्सकलेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अर्ली हार्वेस्ट जैसे विचारों पर संस्थागत चर्चा हुई, इस वर्ष यानी 2026 में बाउंड्री डिलिमिटेशन, राजनीतिक समाधान की दिशा में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत। क्या यह कहना सही होगा कि भारत चीन संबंध अब क्राइसिस मैनेजमेंट, स्टेबलाइजेशन, पॉसिबल रेजोल्यूशन की तीन स्तरीय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, या जैसा कि अभी जनरल अशोक बता रहे थे कि रेजोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करना अभी जल्दीबाजी होगी, क्या कहेंगे आप?
2: मुझे भी ऐसा लगता है कि रेजोल्यूशन तो अभी कुछ रेजोल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो क्राइसिस में ये संबंध थे और जो बॉर्डर इश्यूज जिस तरह से सेंटर स्टेज पर आ गए थे 2020 के बाद, उसके बाद ये सतत प्रयास मुझे लग रहा है भारत की तरफ से और चीन की तरफ से कि कैसे डीएस्केलेशन हो और उससे ज्यादा एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दोनों साइड्स में बने, क्योंकि संबंध जो भारत ने एक अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया था कि जब तक बाउंड्री में LAC में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, तब तक ये मानना कि भारत और चीन के संबंध एक नॉर्मल दो देशों के जैसे संबंध होते हैं उस तरह से हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया था 2020 के बाद, और लगातार इस बात पर भारत अड़ा रहा

0: हम बॉर्डर पर एक नॉर्मल सी नहीं देखेंगे तब तक जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है ये नॉर्मल नहीं होगी। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए स्टेबलाइजेशन बॉर्डर पर हो गया है, उसको देखते हुए एक कॉन्फिडेंस दोनों देशों से निकल कर आ रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं, और टॉप लीडरशिप दोनों देशों की ये चाहती है कि जो मुद्दे हैं खासकर बॉर्डर का जो मुद्दा है उसको पॉजिटिवली डील किया जाए। लेकिन रेजोल्यूशन अभी भी काफी दूर नजर आता है, क्योंकि रेजोल्यूशन के लिए कुछ जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो होने पड़ेंगे। एक तो दोनों देशों को स्ट्रेटेजिकली वो रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजिकली कंपैटिबल होने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम चीन की विदेश नीति को इस समय समझें, जैसा दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है और अमेरिका जिस तरह से अपने पार्टनर्स और एलाइज के साथ डील कर रहा है, उसको देखते हुए कहीं पर चीन को ऐसा लगता है कि अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पर खड़ा नजर आएगा तो उसके संबंध अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर हो पाएंगे। तो चीन ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो उस तरह का एक एग्रेसिव प्लेयर नहीं है जिस तरह का वो कुछ सालों पहले नजर आता था, एटलीस्ट पॉलिसी वाइज। तो उसको देखते हुए वो ये चाहेगा कि भारत भी कुछ कदम बढ़ाए और भारत और चीन के बीच में कुछ सामंजस्य बने जो एक स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में ला पाए। अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि क्या ये चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है या ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखते हुए, और उस टैक्टिकल एडजस्टमेंट पर भारत कितना विश्वास कर सकता है। क्योंकि भारत के साथ और भारत चीन संबंधों में एक बात जो लगातार होती रही है कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल मिसिंग रहा है। भारत क्यों और किन मुद्दों को लेकर चीन के ऊपर ट्रस्ट करे, ये बहुत बड़ा विषय है भारत चीन संबंधों में। और अभी तक मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं जहां पर भारत की तरफ से ये 100% कहा जा सके कि हम चीन को एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का 25th राउंड हुआ है टॉक्स का, ये उसी दिशा में संकेत दे रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं कि बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। और इसी बात को कमेंट भी किया दोनों इंटरलॉक्यूटर्स ने, वांगी ने और अजीत डोवल ने। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस बात के लिए एक दूसरे की तारीफ और प्रशंसा की कि दोनों देश कमिटेड हैं इस समय कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं और ये मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है पीपल टू पीपल टाइज के परस्पेक्टिव से। लेकिन क्या ये हमको एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है, मुझे लगता है ये कहना भी जरूरी।
1: जी हाँ, बिल्कुल जल्दीबाजी होगा ये कहना। मेजर जनरल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम थोड़ी बात सीमा प्रबंधन की करें तो LAC की अस्पष्टता और विभिन्न अवधारणाओं के कारण अक्सर लोकल फ्लैश पॉइंट्स बनते हैं। इस बातचीत में बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर जो सहमति बनी है, क्या वो 1993, 1996 और 2013 के द्विपक्षीय समझौतों के ढांचे को पुनर्जीवित कर पाएगी, या आपको लगता है कि एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की आवश्यकता है?
2: हमारे पास में 1993, 1996, 2005 और 2013 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डिसाइड हुए थे, उन्होंने बहुत हद तक दोनों तरफ की सेनाओं को ग्राउंड पर भी आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने से बहुत हद तक रोका है। 2020 के गलवान क्लैश में, हालांकि ये बहुत दुखद घटना हुई है, बावजूद इसके दोनों तरफ से किसी ने भी आर्म्स का, शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। हम लोगों ने तो रायट कंट्रोल इक्विपमेंट होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया था, चीन ने उनका इस्तेमाल किया, पहले से तैयार हुए लेजर्स का इस्तेमाल किया और इस तरह से हमको वहां पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मोटे तौर पर जहां पर भी चाइनीज ट्रांसग्रेशन होता है या दोनों तरफ के पेट्रोलों में क्लैश होता है, मोटे तौर पर वो चीज ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती है, धक्का मुक्की होती है, पुश होता है। बट फायरिंग के जैसे केसेस जो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दें, वो अभी तक सीमित रहा है। लेकिन गलवान वाला जो क्लैश था, उसने इन आत्मविश्वास के पॉइंट पर एक नया मेजरमेंट लाने की कोशिश की है और हमको जरूरत है कि हम अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और जो बॉर्डर पे क्लैश होते हैं उनको हैंडल करने के तरीकों में और पॉजिटिव डेवलपमेंट लाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे क्लैश होते हैं, अगर वहां पर कोई भी लोकल कमांडर बहुत मैच्योर नहीं है और अपने देश द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स को फुल्ली ऑनर नहीं करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को नहीं मानता है और इनएडवर्टेंटली या थोड़े से उग्रवादिता की वजह से गोली चल जाती है तो जाहिर है दूसरा पक्ष भी उसका रिस्पॉन्ड करेगा और वह मामला काफी तूल पकड़ सकता है। कभी कभी वो मामला टैक्टिकल लेवल से बढ़ करके स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट के लेवल तक जा सकता है। तो इसलिए अब जरूरत है कि हम इस चीज पर और संजीदगी से काम करें और उस संजीदगी को ग्राउंड पर उतारने का मेरी समझ से सबसे बढ़िया मॉडल ये है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनेट करें। बॉर्डर का जो रिजोल्यूशन है वो तो लॉन्ग टर्म इशू है, उसके अपने बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं, बट मेरा मानना यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर दोनों देशों में पॉलिटिकल विल हो तो उसको डिलिनिएट करना, ग्राउंड में आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं। लेकिन मुझे लगता है मौजूदा समय में दोनों देश के सबसे पावरफुल लीडर्स हिस्ट्री में एक साथ हैं, शी जिनपिंग का चाइना में कंट्रोल एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडिया में लोकप्रियता और जो पॉलिटिकल पावर है, अगर दोनों में एक पॉलिटिकल विल हो तो मेरे ख्याल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करके डिमार्केट करके आगे बढ़ना कोई असंभव सी चीज नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे दोनों देशों में विश्वास की कमी है और इसका जीता जागता उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था, उसमें चीन का कोई लेना देना नहीं था, बावजूद इसके चीन ने पूरा सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करना, सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, वहां पर कमांड कंट्रोल सेंटर एस्टेब्लिश करना, हर तरह की मदद पाकिस्तान को की। और इस समय ये माना जा सकता है कि जो वेपन सिस्टम चीन में है वो पाकिस्तान को भी अवेलेबल होंगे, सबमरीन चल रहे हैं, ढेर सारी चीजें हो रही हैं। और ऐसे में भारत का चीन के इंटेंशन पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दोनों देश डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक इस मुद्दे पर पॉजिटिव सिग्नलिंग हो सकती है, पोस्टरिंग हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकी बदलाव होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक छोटी सी मुझे आशा इसलिए दिखती है कि इस समय जो विश्व में बदलाव हो रहे हैं, जो ग्रुपिंग्स बन रही है डिफरेंट कंट्रीज की रीजनल सिक्योरिटी में, जो यूएस का अप्रोच चल रहा है और कभी कभी तो ब्रिक्स को नाटो के अगेंस्ट एक बुलवर्क भी माना जा रहा है, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया का एक साथ आना उसके विरोध में खड़ा हो सकता है। तो अगर एक इंटरनेशनल कंपल्शन हुआ और इस कंपल्शन को रशिया, चाइना और इंडिया तीनों के अपेक्स लीडर्स ने, यानी प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समझा, आपसी विश्वास को बढ़ाया और एकजुट हुए, जो उसका स्पाइरल बेनिफिट होगा वो आपसी संबंधों में भी होगा, वो रिश्ते को रिजॉल्व करेगा, इंडिया और चाइना के बढ़ते हुए रिश्ते इंडिया पाकिस्तान के बीच के डायलॉग को भी बेहतर कर सकते हैं, रशिया, चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप में अगर बेहतरी हुई तो उससे भी इंडिया चाइना के रिश्ते को फर्दर इम्पेटस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा समय में विश्वास की जो कमी है उस पर काम करना जरूरी है, साथ ही साथ LAC को डिलिनेट करना, उस पर काम होना चाहिए, बॉर्डर रिजोल्यूशन वो तो थोड़ा सा बाद में ही रखना पड़ेगा।
1: प्रोफेसर पंत, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं तब तक अन्य द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसके विपरीत चीन व्यापार और कूटनीति को सीमा विवाद से अलग रखने की बात करता है। 25वें दौर की इस बातचीत के बाद आपको क्या लगता है कि भारत अपनी इस लिंकेज नीति पर अडिग रहने में सफल रहा है?
0: मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने ये तो कन्विंस चीन को कर दिया है कि जो संबंध है भारत चीन के, इनको टुकड़ों में नहीं देख सकते, इनको अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटीज के तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो मुझे लगता है उसी का मतलब एक तरह से इस बात पर अग्री करने लगा है कि दोनों साइड्स को पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहिए और बाउंड्री का, और वो ही दूरगामी इंटरेस्ट है दोनों साइड के, वो पूरे कर सकता है। हमने ये भी सुना भारतीय NSA को, डोवल साहब को, ये कहते हुए कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारत और चीन दोनों पार्टनर्स हैं और जो एक प्रिडिक्टेबल फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप है ये महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए, और जिसका जिक्र भी हुआ कि दुनिया बदल रही है और उस बदलती हुई दुनिया में भारत और चीन अगर साथ काम करेंगे तो उससे बहुत कुछ बदल सकता है और फेवरेबली जो बदल सकता है, क्योंकि दोनों का इंटेंट काफी हद तक ग्लोबली अगर हम देखें उसमें मिलता है कि हम दोनों देश ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, दोनों देश रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंस है एक दूसरे के कमिटमेंट को देखें, और खासकर 2005 का जो अग्रीमेंट था पॉलिटिकल पैरामीटर्स का, गाइडिंग प्रिंसिपल्स का, जिससे कि फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सॉल्यूशन बनता, इसकी बात दोनों ने करी है, तो कहीं पर भारत अपनी इस बात से चीन को कन्विंस करने में सफल रहा है। पुराना जो ढर्रा है वो नहीं चल सकता कि हम बाउंड्री इशू है उस पर प्रोग्रेस ना दिखाएं, और दूसरी तरफ हम ट्रेड की और पीपल टू पीपल टाइज की और कल्चरल टाइज की, पॉलिटिकल सिमेट्री की बात करें। तो मुझे लगता है वहां पर जरूर ये प्रोग्रेस हुई है, लेकिन वो प्रोग्रेस अभी भी आधी है, क्योंकि रिटोरिकली दोनों देश एक साथ भले ही हों, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो प्रपोजल्स हैं वो अभी भी अलग अलग तरीके से इवेल्युएट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए बॉर्डर मैनेजमेंट की बात, इसीलिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की बात बढ़ चढ़ कर इस बार हुई, क्योंकि अगर बॉर्डर मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है तो उससे परसेप्शन भी इम्प्रूव होता है कि दोनों देश कमिटेड हैं लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन अगर बॉर्डर मैनेजमेंट वीक होता है, अगर वहां पर तनातनी बॉर्डर एरियाज पर चलती रहे और वो मीडिया कवर करता रहे, बार बार ये बताता रहे लोगों को कि कैसे सेनाएं हमारी आमने सामने खड़ी हैं, वो एक दूसरे के सामने लगातार आ रही हैं, तो उससे वो जो ऑलरेडी लो ट्रस्ट फैक्टर है, ऑलरेडी लो विश्वास है, वो और कम होता है। तो मुझे लगता है इस बात को एड्रेस करने की इस राउंड में जरूर कोशिश करी और एक बैलेंस आउटकम निकल कर आया। अब ये बैलेंस आउटकम क्या हमको एक सीरियस नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी के तौर पर आगे ले जाने की क्षमता दोनों देश रखते हैं, ये मुझे लगता है आने वाला समय।
1: मेजर जनरल अशोक जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारी पर थोड़ी बातचीत अगर की जाए तो चीन द्वारा एलएसी के पार थिएटर कमांड स्तर पर बुनियादी ढांचे जिनमें एयरलिफ्ट है, हेलीपैड्स है और कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने जवाब नहीं दिया, भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी सीमाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया है, लेकिन एक रक्षा विश्लेषक के रूप में आपके अनुसार क्या सीमा पर यह ढांचागत संतुलन भारत को कूटनीतिक मेज पर अधिक बार्गेनिंग पावर यानी सौदा करने की शक्ति प्रदान कर रहा है, क्या लग रहा है आपको?
2: इसको अगर आप देखेंगे तो एक दोनों तरफ के टेरेन को देखना आपको बहुत आवश्यक है। जो चीन की तरफ का टेरेन है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, और जबकि हमारे यहाँ बॉर्डर पे जाने के लिए हम ऊपर चढ़ाई करते करते जाते हैं। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि गलवान क्लैश के बाद में, या जब अक्टूबर 24 के बाद में फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ था, तो फोर्सेस को पीछे ले जाने वाली सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि जो चीन है उसका आर्गुमेंट था सेनाएं पीछे जाएं इक्वल डिस्टेंस में, जबकि अगर मान लो 20 किलोमीटर चीन की सेनाएं पीछे जाती हैं और 20 किलोमीटर हमारी पीछे जाते हैं, तो उसको 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे और हमको 2 दिन लग सकते हैं। और भारत का मानना यह था कि दोनों सेनाओं का विड्रॉल हो वो इक्वल रिस्पॉन्स टाइम के बेसिस हो, क्योंकि दोनों तरफ के टेरेन डिफरेंट है, तो एक तो वो रियलिटी होना जरूरी है। दूसरे क्या है कि चीन ने 2015 में थिएटर कमांड बनाया था, जो उसका वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कंप्लीट चाइना बॉर्डर जो इंडिया को देखता है उसमें बनाया गया है। इसमें कुछ एक खामियां भी हैं, बट बावजूद इसके उसके ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो सिंगल कमांडर के तहत सेंटर्ड हैं। हमारे पास उस समय एक समय ऐसा था कि जिसमें हमारा जो चाइना का बॉर्डर है उसमें नॉर्दर्न कमांड भी शामिल था, वेस्टर्न कमांड भी शामिल था, सेंट्रल कमांड भी शामिल था, ईस्टर्न कमांड भी शामिल था, और उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट हुए जिससे थोड़ा सा वेस्टर्न कमांड को जो हिमाचल प्रदेश का इलाका था वहां से करके उसको सेंट्रल कमांड के अंदर लाया गया, बट अभी भी 3 कमांड्स में वो बाइफरकेटेड है। उसके अलावा उसमें एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एयरफोर्स एंड उनकी भी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन अब जो थिएटर कमांड की बात इंडिया में चल रही है वहां पे कंप्लीट नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे एक सिंगल थिएटर होगा, तो वो भी फोर्सेस को ऑप्टिमाइज करेगा हमारे रिस्पांस मैकेनिज्म को बेहतर करने के लिए। दूसरा है कि हमने 2014 के बाद में पिछले 12 सालों में बॉर्डर्स में अभूतपूर्व सुधार किया है। अगर आप वहां पे जाएं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप उसी इलाके में आ रहे हैं जहां पर उसकी स्थिति 2013-14 में हुआ करती थी, चाहे वो अरुणाचल का इलाका हो, चाहे लद्दाख का इलाका हो। टनल्स बन गई हैं, रोड्स बन गए हैं, रोड्स चौड़े हो गए हैं, लेटरल कनेक्टिविटी बढ़ गई है, एयरफील्ड्स आ गई एकदम फॉरवर्ड एरियाज में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का भी बहुत जोर है। लेकिन ये है कि चूंकि हमने शुरुआत थोड़ी लेट की थी और इसलिए अभी हमको अपना फुल पोटेंशियल पाने के लिए और भी मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। जोजिला का में सुरंग बन रही है, अभी जल्दी ऐसा होगा कि हमारा बॉर्डर का एरिया जो है और बॉर्डर के लोग जो हैं वो सब लैंड रूट से कनेक्टेड हो जाएंगे, कोई मौसम के मोहताज नहीं होंगे और फोर्सेस को भी इस बेहतर कनेक्टिविटी से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूवमेंट करना इजी हो जाएगा। हमारा जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है फोर्सेस का, जैसे एयरफोर्स की लिफ्ट कैपेबिलिटी है, हम ओन एयरक्राफ्ट C-295 बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अगर लॉन्गर डिस्टेंस में भी फोर्सेस को शिफ्ट करना पड़ा तो वो सब भी संभव हुआ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट था जिसमें चीन को एडवांटेज मिला था, उसको गैप को खत्म करने के लिए इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपको याद होगा अगर आप वर्बैटिम पढ़ें, 2005 का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें ये भी कहा गया था दोनों देशों के बीच में कि किसी फ्यूचर बॉर्डर सेटलमेंट में वहां की जो सेटल्ड पॉपुलेशन है हम उसका ध्यान जरूर रखेंगे। और इसलिए भारत के बहुत जरूरी है कि वाइब्रेंट विलेजेस के माध्यम से अपने फॉरवर्ड एरियाज में, क्लेम एरियाज में लोगों को बसाए, लेकिन लोग तभी बच सकते हैं जब वहाँ बुनियादी ढांचा, एजुकेशन की फैसिलिटीज, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज और वहाँ पर उनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सेना को, सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी काफी काम हो रहा है, उसको और भी ज्यादा तीव्र दिशा देने की आवश्यकता है।
1: प्रोफेसर पंत, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की वर्तमान आर्थिक चुनौतियां, अमेरिका चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की मजबूत स्थिति, इन वैश्विक कारकों ने क्या बीजिंग को भारत के साथ वार्ता के लिए आने पर प्रेरित किया है, और साथ ही साथ क्या ये चीन का एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म रणनीतिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम, क्या लगता है?
0: जो आपका दूसरा सवाल है कि ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या स्ट्रेटेजिक रियलाइनमेंट है, मुझे लगता है इसका जवाब तो कुछ समय बाद ही मिल सकता है हमको, जब हमको ये समझ में आए कि ये एक क्लियर पता चले कि चीन क्या जो उसने पॉलिसी अप्रोच अभी लिया है, क्या इस पर वो अडिग रहेगा। क्योंकि चीन में हमने देखा है बहुत चेंजेस, बदलाव आते हैं और चीन की पॉलिसी से बदलाव आते हैं, और वो बदलाव ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो जो, जैसा भारत ने कहा है कि जो अग्रीड होता है उसको वो ओवरटर्न कर देते हैं। और इसीलिए जब जो गलवान इतना बड़ा शॉक हुआ, वो इसलिए हुआ कि ये तो एक अग्रीड था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर, जो अग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में था, उसको ओवरटर्न करके वहां पर जो गलवान वाला एपिसोड हुआ, तो उससे ट्रस्ट में बहुत बड़ी कमी आई। अब देखना पड़ेगा लगातार आगे आने वाले समय में कि किस तरह से चीन बिहेव करता है, क्या चीन अपनी पॉलिसीज पर अडिग रहता है, क्या चीन भारत के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ाने में कुछ गुड फेथ नेगोशिएट करता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका जिक्र पहले भी हो चुका है, देखिए समस्याएं और भी हैं चीन के भारत संबंधों में, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय में हुआ, चीन और पाकिस्तान के संबंध जिस तरह के हैं, चीन जिस तरह से इंडियन ओशन में प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है, वो सारी जो समस्याएं हैं अपनी जगह बनी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अपनी कोई रणनीतिक जो उसकी समझ है भारत के बारे में, भारत के बढ़ते हुए जिसका आपने जिक्र किया, भारत का प्रभुत्व है, प्रभाव है दुनिया में, वो बढ़ रहा है। और चीन के लिए बिल्कुल एक परेशानी का सबब होगा कि चीन जो अपना प्रभुत्व चाहता है इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत में, उसमें भारत जैसा देश अगर उसको चैलेंज करता है, तो चीन ताम दाम दंड भेद सब कुछ करके उसको कोशिश करेगा कि भारत एक सेकेंड टीयर पावर के तौर पर ही खड़ा रहे। मुझे लगता है इसलिए ये बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि चीन दूरगामी पॉलिसी अप्रोच भारत के लिए ले रहा है और वो अपने संबंधों को इस कदर ठीक करना चाहता है भारत के साथ कि बॉर्डर इशू जो भारत चीन संबंधों के कोर में है उस पर वो उसको टारगेट करके उसको सॉल्व करे। तो मुझे लगता है जो बदलाव आ रहे हैं दुनिया भर में वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, चीन के अंदर भी समस्याएं हैं, चीन बाहर से भी थोड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से टारगेट कर रहा है, और मुझे लगता है उसको देखते हुए चीन को भी लगता होगा कि एक अच्छा मौका है कि भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार कर ट्रस्ट डेफिसिट जो है भारत के साथ उसको कम किया जा सकता है। लेकिन क्या ये हो पाएगा चीन से, और क्या भारत चीन को इस नजरिए से और अपना नजरिया भारत बदल पाएगा पूरी तरह से, ये मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा आगे आने वाली चीज पर।
1: श्रोताओं, शांति और समाधान में अंतर होता है। शांति का अर्थ है टकराव न होना, स्थिरता का अर्थ है टकराव की संभावना को कम करना, लेकिन समाधान का अर्थ होता है उस मूल समस्या को समाप्त करना जिससे टकराव बार बार जन्म ले सकता है। भारत और चीन के सामने आज शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वे सीमा विवाद को केवल मैनेज करेंगे, क्या वे इतिहास के इस लंबे अध्याय को धीरे धीरे समाधान की दिशा में लेकर आगे बढ़ाएंगे। इसका जवाब केवल बीजिंग या नई दिल्ली की एक बैठक में नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा सीमा पर ग्राउंड रियलिटी से, सैन्य तैनाती के फैसलों से, कूटनीतिक निरंतरता से और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति से। क्योंकि दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच शांति केवल द्विपक्षीय हित नहीं है, ये एशिया की स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक सकारात्मक समाधान देखने को मिलेगा। मेजर जनरल अशोक कुमार जी और प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी, चर्चा का विषय है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
0: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। चर्चा का विषय है।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश खिदमत है गज़लों का हमारा कार्यक्रम महफिल, जिसमें आज के फ़नकार हैं जगजीत सिंह।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नोवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए